ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। सवेरे के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व

0: मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरूद्व भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत की सुंदरता अत्यंत विविधतापूर्ण और मनोहारी है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी विविधता, संस्कृति और प्रकृति के अद्भुत संगम में निहित है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है।

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, आप सभी विघ्नों को दूर करने वाले बुद्धि और ज्ञान के दाता हैं। हम आपकी वंदना करते हैं कि हमारे जीवन के हर कार्य को सफल बनाएं और सारी बाधाओं को दूर करें।

यशोदा केवल एक साधारण माता नहीं रही, बल्कि उन्होंने ईश्वर को अपने पुत्र के रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं, उनकी मासूम शरारतों और दिव्य रूप का प्रत्यक्ष अनुभव किया। सौभाग्य उनके स्नेह, ममता और निष्कपट प्रेम का परिणाम माना जाता है। उन्होंने कृष्ण को केवल भगवान के रूप में नहीं, बल्कि अपने लाडले पुत्र के रूप में पाला, उन्हें दुलार किया।

एक दर्पण के समान माना गया है, जिसमें यदि मलिनता, अहंकार, लोभ और बुरे विचार जमा हो जाएं, तो उसमें सत्य और ईश्वर का सही प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तुलसीदास जी ये समझाते हैं कि मन की निर्मलता से ही जीवन में सद्गुण, भक्ति और सच्चे सुख का उदय होता है। आइए महाकवि तुलसीदास की इस रचना का आनंद लेते हैं।

राम नाम केवल एक उच्चारण नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक आधार है जो भक्त को ईश्वर से जोड़कर साहस धैर्य और सकारात्मक शक्ति प्रदान करता है। आइए श्री राम नाम की धुन से अपने जीवन को सार्थक बनाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुन पाते हैं कुछ महत्वपूर्ण विचार आज के चिंतन में। विषय है दयालु हृदय।
1: न तराजू में तौलिए दया हृदय का मोल, एक बूंद करुणा से ही भर जाए जग का खोल। मनुष्य का हृदय यदि दया से स्पंदित हो तो वह केवल धड़कता ही नहीं है, वह जगत को सुनता है, महसूस करता है और अपने भीतर अनगिनत कोमलताओं का एक शांत सरोवर संजो लेता है। दयालु हृदय वह दीपक है जो केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं हमारे भीतर भी प्रकाश फैलाता है। यह वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मानवता की राह दिखाती है। जब हम जीवन के मूल्यों की बात करते हैं तो दयालु हृदय का गुण हर युग में सबसे ऊंचा माना गया है। मानव जीवन की सबसे महान और पवित्र संपत्ति उसका दयालु हृदय ही है। दया वह शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है, उसे संवेदनशील, कोमल व उदार बनाती है। दया कोई साधारण भावना नहीं है। जब मनुष्य में दया का भाव जागृत होता है तब उसका व्यक्तित्व और भी मधुर और आकर्षक बन जाता है। दुनिया में शक्ति, संपत्ति और ज्ञान भले ही बहुत मूल्यवान हो लेकिन एक दयालु हृदय का मूल्य सर्वाधिक होता है, क्योंकि इसका संबंध सीधे आत्मा से होता है। यह सच है कि दयालुता दुनिया की सारी समस्याएं नहीं मिटा सकती लेकिन यह इंसानियत को जीवित रखती है और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब एक व्यक्ति का हृदय दयालु होता है तो वह अपने

0: दयालु व्यक्ति कड़वाहट के बीच में भी मिठास ढूंढ लेता है और कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों का सहारा बन जाता है। एक छोटा सा दयालु कर्म कई बार किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। एक मुस्कान, एक सहारा, एक सद्भावना भरा शब्द, ये चीजें नजर में छोटी लगती हैं पर मन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हृदय की दयालुता एक गुण नहीं बल्कि जीवन का दृष्टिकोण है। इसका सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह निस्वार्थ होती है। दयालु हृदय दूसरों की पीड़ा पहचानता है, चाहे वह शब्दों में व्यक्त हो या आंखों में छिपी हो। दयालु हृदय दूसरों की पीड़ा समझकर बिना कहे भी पीड़ा को बांट देता है। कुछ अच्छे शब्द भी दया की ऐसी छाया बन जाते हैं जो किसी के मन का बोझ हल्का कर देते हैं। इससे न केवल सामने वाले को राहत मिलती है बल्कि देने वाले के मन में भी शांति और संतोष भर जाता है। यदि हर मनुष्य के भीतर थोड़ी सी दया की भावना जीवित रहे तो दुनिया स्वतः ही सुंदर बन जाएगी। दयालु हृदय का मूल्य शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह एक अनमोल खजाना है जो देने से बढ़ता है और बांटने में सुंदर बनता है। कहा भी गया है, जिस हृदय में दया बसी वाणी मधुर सुभाए, कठिनाई भी हारती जब मन में हो सद्भाए।
1: जी हाँ श्रोताओं, दया मनुष्य को संवेदनशील और कोमल बनाती है। दयालु हृदय का संबंध आत्मा से होता है और दया इंसानियत को जीवित रखती है। ऐसे अनमोल विचार आप सुन रहे थे आज के चिंतन में, प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया जा रहा था। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज आप जानेंगे गर्मी में गहरी जुताई में उपयोगी कृषि यंत्रों के बारे में। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
2: सभी किसान भाई बहन के कमा उनकी सुनीता बहन की घनी घनी राम राम। किसान बहनों ने आज खेती की बात नमन बात करांगा कि गर्मी की गहरी जुताई करना काले तम का की यंत्र न छे उनको उपयोग करी सको। भाई गेहूं की फसल कटी गई, खेत खाली छे, असम गर्मी का मौसम में गहरी जुताई करने को घनो लाभ छे। आना कई का किसान भाई ऐसा छे जो ट्रैक्टर में जंक्शन का माध्यम से खेत की गहरी जुताई इस्तेमाल करज न असा का यंत्र छे उनका बारा में जानकारी देवा कि एमपी प्लाउ छे जो गहरी जुताई का लेन उपयोगी छे और काफी जो किसान भाई को उपयोग करज। यो एक हल टाइप कृषि यंत्र छे आना जे कामो मोल्ड बोर्ड प्लाउ का नाम से भी एक अपन पहचान। एमपी प्लाउ को इस्तेमाल खेत की जो माटी छे उका पलटना का लेन होय आना खेत की जो पहली जुताई छे या प्राथमिक जुताई छे उका में को उपयोग होय। एमपी प्लाउ हल को उपयोग फसल की बुवाई का पहला खेत की जुताई में मिट्टी का हल्को भुरभुरो बनाना का लेन होय। चलाना का लेन 15 से 20 हॉर्स पावर को जो ट्रैक्टर छे उकी जरूरत पड़ेगा। आना बाजार में जो ट्रैक्टर प्लाउ मिलज ओके हम अनुमानित कीमत बताई रेल छे, यो मग्गू में बतावन पक्को खातरी नहीं है पर लगभग 28,500 से लेना ना लगभग 3,00,000 तक हुई सके। अब समसाइलर मशीन की बात करा तो या भी खेत की गहरी जुताई का लेने इस्तेमाल हो अने इनी मशीन की सहायता से एमपी प्लाउ डिस्क हैरो अने रोटरी ट्रिलर जैसा कृषि यंत्र छे एक ही तुलना में अधिक गहराई तक या खेत की जुताई करी सके। ट्रैक्टर के साथ जोड़ना पे चलाई सकान अन सब साइलर मशीन की सहायता से 2.5 फीट तक गहरी नाली को निर्माण हुई सके। आना एकाम बारिश को जो अतिरिक्त पानी छे वो भी एक तो करी सकान। आना खड़ी फसल का नुकसान भी नहीं होतो ही। सब साइलर मशीन की अनुमानित कीमत अगर बतावा तो 80,000 से लेना ना ये 1.5-2 लाख या 2 लाख तक हुई सके। कल्टीवेटर की बात करा तो कल्टीवेटर का भी ट्रैक्टर से जोड़ी ने चले सकान ये खेत की गहरी जुताई का लेन उपयोगी छे। आना माध्यमिक जुताई जो उपकरण छे या बीज रोपण छे या उका पहला मिट्टी का जोती न उका बारीक चूर्ण में बदली दे मजे की कर दे। आना इन्नी मिट्टी का जब भुरभुरी हुई जाए तो या वावणी का लेन तैयार हो जाए। कल्टीवेटर से कई कार करी सकान जो अपनी जो ढेला बटेली मुक्की छे या

0: कड़क मिट्टी छे ओके परत नक तोड़ी दे, खेती का काम करे मिट्टी तैयार कर दे, अपना जो खर पतवार छे उनको निकाली दे, निराई को काम कर दे, यू भी एक शामिल छे। हाँ, इन्हीं मशीन को सबसे प्रमुख कार्य छे कि खेत की गहरी जुताई करना। कल्टीवेटर की सहायता से खेत में फसल की वावणी का लेन पंक्ति न बनाणु, रेंगाली न खींचनु, आने कल्टीवेटर की चौड़ाई कम होने से किसान बहना जो फसल छे वो पौधा न खा बिना नुकसान पहुंचाए निराई को भी काम करी सके। बाजार में अगर देखा तो कई प्रकार का कल्टीवेटर हो, जेका में स्प्रिंग कल्टीवेटर, 7 टाइन कल्टीवेटर, 9 टाइन कल्टीवेटर, 13 टाइन कल्टीवेटर प्रमुख छे। कल्टीवेटर की अनुमानित कीमत की बात कर ले तो 12,000 या 13,000 से शुरू हुई न ये 1.5 लाख तक मिली सके। या एक मग्गुम कीमत छे, हम फिर से कहांगा कि खातरी करी न कीमत का आप देख जो। आज किसान भाई बहन से खेती की बात न मन गहरी जुताई का उपकरण न कसो उपयोग कर या बात करी। खेती की बात न मन एतरोज कहनुज राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। गर्मी में गहरी जुताई में उपयोगी कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, और आकाशवाणी इंदौर आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सुन सकते हैं, साथ ही गूगल पर आकाशवाणी इंदौर लाइव करके भी आप सुन सकते हैं। सवेरे के 6:40 होने वाले हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति।

ज्ञान तथा भक्ति में भेद संबंधी गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश होता है, अतः वो स्वभाव से ही अविनाशी, चैतन्य तथा निर्मल होता है। किंतु माया बड़ी बलवती होती है और जीव उसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं रख पाता। वो माया के वशीभूत होकर अपने आप बंध जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन के बीच ग्रंथि आ जाती है और जीव आवागमन के भंवर में पड़ जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार में वो गांठ दिखाई नहीं पड़ती और जो दिखे ही नहीं उसे खोलें कैसे। हरि कृपा से मन में यदि श्रद्धा का आविर्भाव हो तो धर्माचार और आस्तिकता के अवलंबन से निवृत्ति और विश्वास उपजता है।

श्री रामचरितमानस गान में अभी आप सुन रहे थे आज का प्रसंग। कलाकार थे कविता कृष्णमूर्ति। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 6:50 हो चुके हैं श्रोताओं, और ये वक्त है आपको आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का। तो आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे आपका पत्र कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपके पत्रों का जवाब देंगे कार्यक्रम प्रमुख राजेश जी। 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत। 9:00 लोक संगीत के कार्यक्रम में आनंदीलाल भावेल के गाए लोकगीत सुनिएगा। सुगम संगीत का समय रहेगा 9:15 का। कलाकार होंगी संध्या दवे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी किशोरी अमोनकर का गाया राग ललित सुनिएगा। समय रहेगा 9:30 का। 10:00 जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगी। 10:05 से 11:00 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन हम आपको सुनवाएंगे। और श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं हमें फोन करके। हमारे फोन नंबर होंगे 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर के श्रोता हैं और हमसे बात करना चाहते हैं तो STD कोड रहेगा 0731। समय रहेगा फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का 10:05 से 11:00 तक का।

युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5 बजे। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सजल जैन, आकाशवाणी 90 वर्ष प्रतियोगिता के विजेता से बातचीत। आरंभिक चर्चा होगी फकरुद्दीन अली अहमद जयंती पर और आर के नारायण पर की पुण्यतिथि पर चर्चा होगी। आज का क्रम में एक ही फिल्म के अंतर्गत बादशाह फिल्म के गीत आपको सुनवाए जाएंगे। 5:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे संध्या 6 बजे। 6:30 पर सुगम संगीत की कलाकार होंगी राजीव शर्मा। 6:45 पर लोक संगीत में सरला मिश्रा और संगीता पंडित के गाए लोकगीत सुनिएगा। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का समय होगा हमेशा की तरह संध्या 7:20 का। आज की बात होगी स्वयं सहायता समूह पर। रमा टेमले का कविता पाठ भी सुनवाया जाएगा, साथ ही वार्ता भी सुनिएगा और घरेलू व्यंजन जैसे क्रम भी होंगे। रात 8 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगा सुर्खियों में। 8:15 पर कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर सुनिएगा चित्रगीत। 9:30 बजे चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: श्रोताओ रात 10 बजे सुनिएगा रूपक, ढाई अक्षर प्रेम न्याय और ज्ञान। 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत में उस्ताद राशिद खां का ख्याल गायन होगा राग सरस्वती में। श्रोताओं हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आज सवेरे 7:20 पर आप सुनेंगे आपका पत्र कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में अगर आप भी अपनी भागीदारी देना चाहते हैं तो जल्दी से हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aapkapatrindor@gmail.com। इस मेल पर हमें जल्दी से मेल करिए और आपके पत्रों के जवाब देने के लिए आपके बीच होंगे कार्यक्रम प्रमुख राजेश जी। और साथ ही हम आपको याद दिला दें कि सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का समय रहेगा 10:05 से 11 बजे तक का, तो बिल्कुल फोन करना ना भूलें। और हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही होंगे 2710223 और 2710224। तो श्रोताओं ये तो थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 6:55 हो चुके हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मन्त्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदलानां निर्माणं जातं तथा प्रकरणम् अन्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति। एषा नीट परीक्षा अस्य मासस्य तृतीयदिनांके राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया आयोजिता आसीत्। नवदिल्ल्यां नीट परीक्षायाः निरस्तीकरण विषये वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः महानिदेशकः अभिषेक सिंहः अवदत् यत् राष्ट्रिय परीक्षण संस्था छात्रेभ्यः पुनः परीक्षाम् आयोजयिष्यति, सा च परीक्षा निष्पक्षरूपेण भविष्यति, पुनः परीक्षायै अतिरिक्त शुल्कं न भविष्यति इति। भारतं श्वः आरभ्य ब्रिक्स विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनस्य आतिथ्यं करिष्यति। अद्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः करिष्यति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् उपवेशनावधौ ब्रिक्स सदस्य देशानां विदेशमन्त्रिणः पारस्परिकहितस्य वैश्विक क्षेत्रीय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यन्ति इति। लोकसभाध्यक्षस्य ओम बिरला वर्यस्य नेतृत्वे एकं उच्चस्तरीयं भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलं भारत भूटान संबंधान सुदृढीकरणोद्देश्येन सह अद्य भूटानस्य यात्रां करिष्यति। 51 सदस्याः भूटान भारत संबंधानां विभिन्नेषु विषयेषु उभययोः प्रतिवेशीदेशयोः मध्ये सहयोगं संवर्धयितुं च चर्चां करिष्यन्ति इति अपेक्षा अस्ति। यात्रावधौ प्रतिनिधयः भूटान देशस्य राज्ञा तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा च सह मेलनं करिष्यन्ति। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः राज्यस्य जनान् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आह्वानं व्यावहारिक रूपेण प्रवर्तयितुं प्रार्थयत्। अनेन नागरिकेभ्यः इन्धनस्य उपभोगं न्यूनीकर्तुं अनावश्यकं स्वर्णक्रयणं परिहर्तुं च आग्रहः कृतः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः निर्देशं प्रदत्तवान् यत् मुख्यमंत्रिणः मन्त्रिणां अन्ये च जनानां संख्या तत्क्षणमेव 50% यावत् न्यूनीकर्तव्यमिति। असौ प्रार्थयत् यत् राज्ये गृहात् कार्यं कुर्वन्तु इति। महिलानां सुरक्षायै संस्थागत समन्वयं सुदृढीकर्तुं राष्ट्रिय महिला योगेन दिल्ली आरक्षकैः सह एकं उच्चस्तरीयं समीक्षोपवेशनम् आयोजितम्। उपवेशनावधौ राष्ट्रिय महिला योगस्य अध्यक्षा विजया राहतकर इत्येषा समन्वितस्य पीड़ित केन्द्रितस्य च दृष्टेः आवश्यकतायै बलं प्रदत्तवती। एषा अवदत् यत् महिलाभ्यः समयोचित समर्थनं न्यायं च सुनिश्चेतुं गृह हिंसा अधिनियमस्य अन्तर्गतम् आरक्षक यन्त्रस्य सुरक्षाधिकारिणां च मध्ये प्रभावी सम्पर्कः आवश्यकः अस्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प अद्य चीन देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायै बीजिंग नगरं सम्प्राप्स्यति। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य चीन देशस्य राष्ट्रपतेः शी जिनपिंग इत्यस्य च मध्ये बहुप्रतीक्षिते उपवेशने द्विपाक्षिक सम्बन्धानां अनेकेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति इति आशास्यते। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं द्वयशीति अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में कुछ स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
2: और
3: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी है। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगे।
2: सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुँचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान नहीं होगी वाहन रैली, कारकेड भी छोटा रहेगा। आज प्रदेश की 1,25,00,000 लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे 1,835 करोड़ रुपए। प्रदेश में 1,84,00,000 से अधिक मकानों की गणना पूर्ण और प्रदेश भर में गर्मी का कहर जारी। आज 12 जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में अपने स्थानीय दौरों के दौरान काफिले में वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 8 करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री और नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारियों की वाहन रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील पर लिया है। राज्य शासन द्वारा कल जारी आदेश में कहा गया है कि ईंधन की बचत और सादगी को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और पदाधिकारियों से भी न्यूनतम वाहनों के उपयोग की अपील की है, साथ ही आम लोगों से भी सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने का आग्रह किया है। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इन छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा, न ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप से संभाला है और यह सुनिश्चित किया है कि जनता पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। उन्होंने कहा कि भारत की तेल कंपनियों को हर दिन लगभग 1,000 करोड़ रूपये का नुकसान हो रहा है और कुल नुकसान करीब 1,98,000 करोड़ रूपये तक पहुंच सकता है।
2: एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36 हजार से बढ़ाकर 54 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कल फ्रांस के राजदूत थियरी माथू सहित इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के प्रतिनिधियों ने भेंट की। इस अवसर पर फ्रांसीसी राजदूत ने कहा कि मध्य प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांस की ओर से अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश उद्यमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। कॉन्क्लेव में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में फ्रांस की कंपनियों और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन सहित 8 अभिरुचि पत्र लेटर ऑफ इंटेंट प्रस्तुत किए गए। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनंतिम अनुमानों और चौथी तिमाही के जीडीपी के त्रैमासिक अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि 7 जून को अवकाश होने पर अनंतिम अनुमान पिछले कार्य दिवस पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रेस्को पद्धति के तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले दिन से बचत शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान 12 मई से 21 जून तक प्रदेश भर में संचालित होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन और व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कल आयुष विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी योग प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया। संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि
3: शरीर में योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं। आयुष विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर घर योग अपनाने के लिए घर घर योग, योग शिक्षक, चिकित्सालय, कॉलेज, स्कूल प्रदेश भर में लगने वाले हैं। इस दृष्टि से योग सखी, योग दूत इत्यादि प्रकार के कई समूह बना करके इस पे काम करने का निर्णय किया है। इससे आगामी 21 जून तक ये अभियान चला करके योग से बाकी कई सारे लोगों को जोड़ने का ये अभियान चल रहा है।
1: अब समाचार में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
5: ICCR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को महत्व देना पड़ेगा।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य जारी है। इस अभियान में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान, परिवार एवं अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। सचिव गृह विभाग और नोडल अधिकारी जनगणना शिल्पा गुप्ता ने बताया कि राज्य में जनगणना कार्य के लिए 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। इनमें प्रगणकों द्वारा व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्रित की जा रही है। 12 मई तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1,84,92,860 मकानों की गणना पूर्ण की जा चुकी है। रायसेन जिले में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का फील्ड कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खाते में 1,835,67,00,000 रूपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जून 2023 में शुरू की गई थी। इसमें अप्रैल 2026 तक महिलाओं के खातों में 55,926 करोड़ रूपये की राशि सीधे DBT के माध्यम से जमा की जा चुकी है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ ई रमेश कुमार ने बताया कि शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 में 4,000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सैन्य बलों में भर्ती के लिए निशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन के लिए समय सीमा में कार्य कर अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की कल समीक्षा करते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। उन्होंने चयनित 31 कन्या छात्रावासों को आदर्श छात्रावास बनाने संबंधी सभी निर्माण कार्य 30 जून तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता KGP-12 के 4 शावक कल सुबह एक मांद के पास मृत पाए गए हैं। शावकों का जन्म 11 अप्रैल को खुले जंगल में हुआ था। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि शावकों की मां पूरी तरह सुरक्षित, स्वस्थ और सामान्य स्थिति में है। कुनो में मौजूद अन्य सभी चीते भी स्वस्थ हैं और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। आज इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 में से 11 जिले लू की चपेट में रहेंगे। मौसम केंद्र ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। कल कई जिले लू की चपेट में रहे, वहीं निमाड़ में तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर और झाबुआ सहित 12 जिलों में लू का अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर साइंस कॉलेज रीवा में वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक और रचनात्मक अनुप्रयोग विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। डिंडोरी जिले के शाहपुरा में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 200 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। शासकीय राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह पब्लिक विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर छोटी बेटमा इंदौर में खेल विधाओं के लिए 200 सीटें स्वीकृत की गई हैं। इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन एवं चयन प्रक्रिया शारीरिक परीक्षण एवं बैटरी टेस्ट 15 जून तक क्रीड़ा परिसर में होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आपका पत्र कार्यक्रम।

0: सर 50,000 एडवांस।
1: पर इतना कैश तो हम नहीं लाए।
2: और आज बैंक भी बंद है।
3: इलाज है, डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ।
2: लेकिन
3: अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने क्योंकि RBI करना है।
4: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
5: और को भी सिखाओ।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आपका पत्र कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विजया जैन
1: और राजेश पाठक का
0: नमस्कार।
1: विजया जी, क्या बात है, आज तो विशेष दिवस है
0: जी,
1: और आज है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रदाता प्रशंसा दिवस
0: जी,
1: और इस दिवस को हम लोग याद करते हुए प्रसन्न रहें और तन से भी प्रसन्न रहें, मन से भी प्रसन्न रहें
0: जी,
1: और हम तो कहेंगे कि मन से प्रसन्न होकर
0: जी
1: आप खूब ढेर सारा मेल भेजें, अपना प्रतिक्रिया भेजें, और भेजने के लिए हमारा मेल है, वो पता आप बता दें।
0: हमारा मेल है आपका पत्र इंदौर gmail.com। अगर हमारे श्रोता अभी भी हमें मेल करना चाहते हैं तो हमने अभी आपको अपना मेल एड्रेस बताया है, आप जल्दी से अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें और हमें जल्दी से इस मेल पर भेज दें। जी, आज बहुत सारे मेल हमें मिले हैं, और मैं पहला मेल यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी।
1: पहले जी एक बार और उसको बता
0: जी जी, मैं एक बार मेल एड्रेस एक बार फिर सभी को बता देती हूँ। हमारा मेल एड्रेस है आपका पत्र @gmail.com इंदौर।
1: एक एक करके बताएं,
0: आपका पत्र @gmail
1: ऐसा,
0: ओके, APKAPATRA यानी आपका पत्र @gmail.com पर आप भेज सकते हैं। और श्रोताओं, आज
1: अपना पत्र जी, जो है जी, चाहे ईमेल के माध्यम से भेजिए या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए
0: जी,
1: और कई लिफाफे भी आए हैं
0: जी,
1: और कई पोस्टकार्ड भी आए हैं
0: जी,
1: तो और जो छूट गए हैं वो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9993290063, एक बार पुनः सुन लें, 9993290063। इस पर आप पिछले सप्ताह के जो भी आप कार्यक्रम सुने हैं और आगे क्या सुधार चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है अवश्य भेजेंगे
0: जी। राजेश जी, ये बहुत
1: सिलसिला शुरू करते हैं
0: जी। राजेश जी, बहुत अच्छी बात है कि श्रोतागण हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे माध्यम अब उनके पास हो चुके हैं, पत्र भी भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, हमने मोबाइल नंबर दिया है उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। और अब हम बिना किसी देर के यहाँ पर
1: एक ने बहुत अच्छा लिखा है
0: जी,
1: और ये लिखने वाले हैं, ये मैं बता रहा हूँ, सरोज चौक अमरावती से
0: जी, क्या लिखा है इन्होंने,
1: बेगम खान और हदिया खान जी ये लिखे हैं कि शब्द का भी तापमान होता है, ये शकुन भी देते हैं और जला भी देते हैं।
0: अच्छा, अरे बहुत अच्छी बात लिखी है,
1: शब्द का भी तापमान होता है
0: जी,
1: ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है।
1: तो हम तो ऐसा कहेंगे कि इस तपती गर्मी में
0: जी
1: आप हर प्रकार की प्रतिक्रिया
0: बिल्कुल
1: भेजें,
0: बिल्कुल
1: अपने माध्यम से, ताकि हम ये जो करीब करीब जो 40 मिनट का जो सफर है आपके साथ हम रूबरू हो रहे हैं, एक अच्छे अंदाज में ये सफर तय हो। तो अब सिलसिला शुरू करते हैं। ये पहला मेल,
0: पहला मेल हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। ये लिखने मतलब जो मेल भेजा है, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने,
1: क्या लिखते
0: इनके
1: हैं?
0: करीब 3 से 4 मेल हमें मिले हैं और इन्होंने लिखा है, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, और इन्होंने स्पेशली दिन लिखा है कि कौन से दिन के कौन से प्रोग्राम इन्हें अच्छे लगे हैं
1: जी।
0: इन्होंने लिखा है कि 8 मई 2026 को कृषि चर्चा में मूंग की देखभाल पर डॉक्टर अनुराधा शर्मा की बातचीत सुनवाई गई थी, वो इन्हें बहुत अच्छी लगी। इस दिन का रामचरितमानस गान भी इन्हें बहुत पसंद आया है। और साथ ही इन्होंने लिखा है कि 8 मई 2026 के दिन ही इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा, जिसमें मालवा उत्सव 2026 पर मुकाम सिंह चौहान द्वारा दी गई जानकारी इन्हें बेहद लाजवाब लगी, और इस दिन का सुनहरे पल कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम में गीत सुनकर आनंद आ गया है और इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिये, अभी जायद का मौसम चल रहा है, इस मौसम में मूंग रद्द हमारे कई किसान भाई लेते हैं
0: जी।
1: और बात करें तो कई जगह PDM 139, ये जो सम्राट किस्म है, IPM 410-3, ये जो शिखा किस्म है, और कई अच्छी उपज देने वाली किस्में जो 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और जो रोग प्रतिरोधी है प्रतिरोधी है, ये बहुत सारे किस्में हैं और बीज निगम में भी ढेर सारे किस्में उपलब्ध हैं। तो आप वहाँ जाकर कृषि विभाग में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और ये कम, लेकिन इसकी कीमत बहुत रहती है, तो आप आर्थिक मुनाफा अधिक ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इनका एक और मेल हमें मिला है, इसमें भी इन्होंने लिखा है कि 7 मई का जो महिला सभा कार्यक्रम था वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में सलाम इंडिया सेगमेंट जो हमने प्रेजेंट किया था वो इन्हें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: गीत भी बहुत अच्छे थे। वो प्रेजेंटर प्रीति जोशी जी को हार्दिक बधाई भी देते
1: हैं। और आपकी बधाई हम उन तक पहुँचा रहे हैं।
0: और साथ ही ये कुछ मतलब आकाशवाणी इंदौर से चाहते है कि युववाणी कार्यक्रम में SMS पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम और पत्रोत्तर कार्यक्रम फिर से शुरू करने की इनकी इच्छा है।
1: आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। युवानी कार्यक्रम के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं असीम कैथवास, हम उन तक आपकी बात पहुंचा देंगे और हमें आशा है कि आने वाले समय में आपकी फरमाइश बिल्कुल शुरू होगी। हाँ, और क्या कहना चाहते हैं?
0: इन्होंने लिखा है कि पहले बुधवार के दिन बुधवारीय पत्रोत्तर क्रम प्रसारित होता था और शनिवार को भी पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत कार्यक्रम होता था। इस कार्यक्रम को भी एक बार फिर से शुरू किया जाए, ऐसा ये चाहते हैं।
1: समय को ध्यान में रखते हुए हमें सभी कार्यक्रमों को नीतिगत रूप से करना पड़ता है और आज की बात है तो 40 मिनट आपके साथ हम रूबरू हैं। आप ये सीधा लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। हमारे पास भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी बैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी और अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जय जवंटी कैबेट जी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार ढाबर जी, ये लिखते हैं कि हम आकाशवाणी इंदौर के नियमित श्रोता हैं और सारा कार्यक्रम हम आपसे सुनते हैं, विशेष करके मनभावन कार्यक्रम जो होता है ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सभी की मेहनत को इन्होंने सलाम किया है और इन्होंने लिखा है अस्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो ग्रुप के कई लोग आपके केंद्र का कार्यक्रम सुनते हैं और आनंदित भी होते हैं।
0: राजीव जी, हम भी यही कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ से प्रस्तुत किए जाएं और श्रोताओं को पसंद आए। एक और मेल हमें मिला है प्रवीण श्रीमाली जी का, इन्होंने कवर कॉलोनी बड़वाह से मेल भेजा है और इन्होंने लिखा है कि 9 मई को प्रातः 8:30 बजे कंपेयर्ड फिल्म संगीत के अंतर्गत बचपन शीर्षक के गीतों को सुनवाया गया था। सभी गीतों का चयन लाजवाब था और गीतों को सुनकर कुछ समय के लिए तो हम अपने बचपन में लौट गए थे। कार्यक्रम की लाजवाब पेशकश पद्मश्री ने की थी तो उन्हें धन्यवाद दिया है इन्होंने। 10 मई को वसुंधरा के अंतर्गत वार्ताकार विवेक चौरसिया की वार्ता जल का संरक्षण पर विस्तृत जानकारी सुनने को मिली जो इनको बहुत पसंद आई। साथ ही 11 मई को प्रसारित गुड मॉर्निंग इंदौर पर नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर जो कार्यक्रम केंद्रित था उसमें सभी महानुभावों के विचार इन्हें बहुत सटीक लगे और प्रस्तुतकर्ता शिखा को ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपके जो विचार हैं आप नर्मदा नदी के किनारे रहते हैं और आपका विचार और ये जो सुना है उसके साथ है, नर्मदा नदी की भी हमें झलक मिल रही है। माँ नर्मदा हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी पवित्र और जीवित देवी मानी जाती है। मान्यता है कि नर्मदा के

0: किया मन भावन चॉइस टाइम कार्यक्रमों की प्रस्तुति बड़ी ही मनोरंजक होती है। सभी प्रस्तोताओं की लाजवाब पेशकश और उनकी मेहनत को ये दिल से सैल्यूट करते हैं। और एक छोटा सा इन्होंने अपने मन की बात करके एक संदेश भी हमें लिखा है कि जल का संरक्षण करें, जल है तो कल है, स्वच्छता ही सेवा है। और साथ ही धन्यवाद और शुक्रिया भी व्यक्त किया है।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, वर्तमान समय में जल संरक्षण की आवश्यकता है और हमें जल संरक्षण करना चाहिए। और जमीन स्तर पानी का जो वाटर लेवल है इतना नीचे चला गया है कि उसको संरक्षण करने के लिए आवश्यकता है। और कई जगह जो तालाब है गहरीकरण हो ही रहा है। और परिक्रमा की बात की इन्होंने, तो हमें चूंकि आप नर्मदा नदी के किनारे रहते हैं तो नर्मदा परिक्रमा, जैसे नर्मदा विश्व की एक ऐसी नदी है जिसकी दोनों तटों पर उत्तरापथ और दक्षिणापथ की परिक्रमा की जाती है, जिसे नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। और यह साधना जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने का मार्ग मानी जाती है।
0: जी,
1: और विजया जी, हमारे पास भी व्हाट्सएप संदेश आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम व्हाट्सएप संदेश ये पढ़ रहे हैं। ये लिख रहे हैं भेरूलाल बाख्तरिया जी धाकड़ जी, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं कि आज हम बद्रीनाथ धाम में हैं और यहीं से मैं आपको व्हाट्सएप किया हूं। यहां पर आकाशवाणी इंदौर से प्रादेशिक समाचार वंदना आज का चिंतन सुना। मोबाइल ऐप के माध्यम से हम उत्तराखंड की चार धाम तीर्थ यात्रा पर आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम सुन रहे हैं और यमुनोत्री गंगोत्री और केदारनाथ के दर्शन कर आज सुबह अभी हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं। अब भारत के प्रथम माना गांव दर्शन करने हेतु जा रहे हैं और वहां से इन्होंने ये एक वीडियो ही भेजा है।
0: क्या बात है हमारे श्रोता ये वीडियो सुन रहे होंगे,
1: बोल रहे हैं जय बद्रीनाथ।
0: जी
1: तो ये श्रोता देखिए
0: बहुत घूम भी रहे हैं
1: और काफी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं
0: और
1: हमारा आकाशवाणी केंद्र न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं। बहुत ही ये खुशी की बात है कि वहां भी आप जो है अपनापन महसूस कर रहे हैं। और इसी बीच अब हम बात करते हैं सरहद पार देश के बाहर, तो ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास व्हाट्सएप किए हैं अशोक मेहंदा जी। ये लिखे हैं आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम बहुत रोचक और मस्ती भरे होते हैं। ये हमारा प्रिय मित्र और बाल सखा है, बचपन से लगभग 70 दशक से जुड़ा हूँ और
0: क्या बात
1: है? जकल मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, यहाँ भी उसी शिद्दत और शौक से रेडियो सुनता हूँ। आपका पत्र कार्यक्रम को आपने इतना सरल रोचक और लोकप्रिय बना दिया है कि लाखों श्रोता इससे जुड़ गए हैं। यहाँ सिडनी में मेरी वजह से पूरा परिवार बेटी दामाद और सभी सहित रुचिपूर्वक सुन रहा हूँ और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम निर्माता और उद्घोषकों को हमारा धन्यवाद, आभार और बधाई इतने रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मेहता जी, आप इतने दूर रहते हुए भी अपने वतन को याद कर रहे हैं
0: और हमसे जुड़े हुए हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल,
0: हाँ जी, एक और मेल आया है हमारे पास। सुदर्शन शाह जी ने ये मेल लिखा है। इन्होंने सभी को जय श्री राधे कृष्णा कहा है और साथ ही इन्होंने कहा है कि 10 मई को कार्यक्रम वसुंधरा के अंतर्गत विवेक चौरसिया जी की वार्ता सुनी। ये वार्ता जल संरक्षण पर आधारित थी और वास्तव में आज हम सभी को जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जल है तो कल है। गिरते भूजल स्तर पर भी विशेष जानकारी दी गई। सफल एवं शानदार प्रस्तुति हेतु प्रस्तुतकर्ता साथी को हृदय की गहराइयों से आभार और
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, साथ ही 11 मई को 7:20 पर स्थानीय गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर सुना। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पर केंद्रित कार्यक्रमों में सभी महानुभावों के विचार जानने को मिले। वाकई में आज के इस दैनिक जीवन को आसान बनाने में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। इतनी सफल और महत्वपूर्ण वार्ता हेतु ये सभी को बधाई देते हैं। और साथ ही इन्होंने लिखा है कि आपके केंद्र से सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, सुनहरे पल चित्रपट संगीत कार्यक्रम भी इन्हें बहुत पसंद है और एक निवेदन भी इन्होंने किया है। आप स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम में हृदय रोग विशेष

0: विशेषज्ञ को बुलाकर इस विषय पर वार्ता अवश्य प्रसारित करें। और ये कहते हैं कि इनकी एंजियोप्लास्टी सर्जरी 2019 में हो चुकी है, तो मेरे जैसे हृदय से संबंधित रोगियों को इसका लाभ मिल सके और हृदय की समस्याओं का निदान मिल सके, ताकि उनका स्वास्थ्य और भी स्वस्थ हो सके।
1: हृदय रोग पर हमने ढेर सारे प्रोग्राम किए हैं
0: जी।
1: हेलो डॉक्टर में भी कार्यक्रम किए हैं, खेती गृहस्थी में भी ये कार्यक्रम, ग्राम लक्ष्मी में भी, और कई जगह ये कार्यक्रम प्रसारित होते रहता है। चर्चा भी हमारे उद्घोषक भाई बहन करते रहते हैं
0: जी।
1: आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है, आने वाले समय में इस पर और भी हम कार्यक्रम करेंगे
0: जी।
1: हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ये लिखते हैं आकाशवाणी इंदौर पर प्रस्तोता राजेश जी द्वारा युवानी कार्यक्रम में, ये राज जी द्वारा युवानी कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई स्वच्छ पर्यावरण पर चर्चा वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक है, ये सुना काफ़ी अच्छा लगा। और सुगम संगीत में 11 मई को प्राची जी के गायन की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर गाई थी। और 12 मई को इन्होंने सुनहरे पल में माजिदा खान द्वारा शानदार गीत जो सुनाए गए श्रोताओं को, ये भी काफ़ी अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए प्रतिदिन नई थीम को लेकर गीत की प्रस्तुतियां तय करें, ज़्यादा मनोरंजक लगेगा
0: जी।
1: नई थीम की इन्होंने बात की है
0: जी।
1: तो ऐसा तो कर सकते हैं, हमारे कई उद्घोषक भाई बहन करते भी हैं
0: जी।
1: आज का ये थीम है, इस पर कई गीत आते हैं, तो और भी मैं इसको आने वाले समय में इसको और भी रोचक बनाएंगे।
0: हम कोशिश करते हैं, इस
1: विचार बताएं
0: जी, हम कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में कि कई बार हमें अलग अलग थीम पर और जो दिन विशेष है उस पर भी हम चर्चा करें, इस गीतकार और संगीतकार पर भी चर्चा करें।
1: और आगे लिखते हैं, विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम में ऑनलाइन फ्रॉड साइबर क्राइम पर प्रोफेसर गौरव रावल जी के साथ जो वार्ता प्रसारित की गई, ये भी काफ़ी अच्छी लगी। और आगे हमारे पास मनीष निमारे जी, ये नवग्रह नगरी तिलक पथ खरगोन से लिखते हैं
0: हाँ जी।
1: इनके साथ और हैं शीतल निमारे जी, खुशी दिव्यांश निमारे जी, लिखते हैं इंदौर परिक्रमा काफ़ी अच्छा लगा और बचपन के आधारित गीत पसंद आया, सभी कार्यक्रम श्रेष्ठ प्रसारित हो रहे हैं। जल को सहेजे यह हमारे लिए आवश्यक है, आज नहीं सहेजा तो कल होने वाली तपन से जल जाएंगे। श्रोताओं से आग्रह है, हम लोग एक अभियान चलावें, हमारे पत्रों में चर्चाओं में आपस आसपास जल बचाव के उपायों पर बातचीत करें और आरंभ हम अपने से करें। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, अगर प्रत्येक आदमी अपने आप से जल संरक्षण करेगा,
0: बिल्कुल
1: हर एक आदमी ठान लेगा कि हमें जल संरक्षण करना है, हमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, हमें खेत का पानी खेत में संचय करना है, तो अगर सभी प्रयास करें तो निश्चित रूप से
0: जल संरक्षण
1: के कार्य बहुत आसानी से किया जा सकता है
0: जी।
1: अगला मेल,
0: एक और मेल हमें मिला है फहीम शेख जी का पत्र, मतलब मेल
1: जी।
0: ये आकाश, ये धर्मपुरी जिला धार से इन्होंने मेल भेजा है। शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान फिजान, सुमेरा कशिश, साइमा हसनैन और खुशी का, सब ने मिलजुल कर लिखा है कि 6 मई को आकाशवाणी इंदौर से रात्रि 10 बजे प्रसारित नाटक एक नाव के हमसफर सुना, बहुत पसंद आया। नाटक में सभी पात्रों ने अपने किरदार को बखूबी निभाया था। और साथ ही इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी इंदौर के कुछ पुराने अनाउंसर जैसे शारदा साइमन और विजय राय की आवाज़ सुनकर सप्ताह में केवल एक बार प्रसारित होने वाले मनभावन कार्यक्रम की याद ताजा हो गई।
1: क्या बात।
0: और साथ ही 9 मई को आकाशवाणी इंदौर से प्रातःकालीन बेला में सुनहरे पल की प्रस्तुति में बड़े ही खूबसूरत गीत प्रस्तुत किए गए, जिससे इनकी सुबह सार्थक हो गई। और 8:30 बजे प्रसारित फिल्म संगीत में बचपन पर केंद्रित गीतों को सुनकर बचपन से जुड़ी अनगिनत यादें ताजा हो गई। और प्रभावशाली और सशक्त पेशकश के लिए इन्होंने प्रस्तुतकर्ता को दिल से बधाई दी है।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बचपन ताजी हो गई।
0: बिल्कुल,
1: और हमें भी अपना बचपन याद आ गया।
0: बिल्कुल,
1: आपने लिखा, प्रतिक्रिया व्यक्त की, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत से लिखने वाले हैं कृष्णपाल सिंह चौहान, श्रीमती तारा देवी, नवोदित सिंह, वैभव पाल सिंह एवं धुरबी एवं प्रद्युम्न सिंह चौहान। ये लिखते हैं आपके केंद्र से।

0: प्रसारित सभी कार्यक्रम शानदार और लाजवाब होते हैं। पिछले हफ्ते आपका पत्र कार्यक्रम काफी अच्छा लगा, जिसमें आप जोरदार आवाज एवं निराले अंदाज में पत्रों को पढ़े। आपकी पूरी टीम
1: जी
0: को इन्होंने बधाई दिया है और सुधी श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी दिया है। 8 मई को इन्होंने लिखा है कि मुकाम सिंह चौहान जी द्वारा जो परिक्रमा प्रस्तुत की गई काफ़ी अच्छा लगा, और 12 मई को जो विज्ञान पत्रिका में गौरव जी ने साइबर सेल के बारे में कैसे सावधान रहना है ये जानकारियां हमें मिली, काफ़ी अच्छा लगा
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल,
1: अगला मेल हमें मिला है जिला हिंगोली महाराष्ट्र से। इन्होंने लिखा है शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े ने। इन्होंने 6 तारीख को जो आपका पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आपके साथ महिमा जी ने शिरकत की थी, उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो आपको धन्यवाद देते हैं।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका धन्यवाद हम महिमा जी तक पहुँचा रहे हैं।
1: साथ ही इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक होते हैं और विविध भारती चैनल के प्रोग्राम भी लाजवाब होने लगे हैं, लेकिन इनकी एक छोटी सी शिकायत है कि इनका कहना है कि कुछ प्रेजेंटेटर को छोड़ दिया जाए तो मनपसंद में, मनभावन कार्यक्रम में और चॉइस टाइम में सिर्फ कुछ लोग एक या दो खत को ही शामिल करते हैं, तो अधिक से अधिक खत शामिल करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं के पत्र मनभावन कार्यक्रम में और चॉइस टाइम कार्यक्रम में पढ़े जा सके।
0: बिल्कुल, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। और देखिए, हम आकाशवाणी के 90 साल के अवसर पर कई कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमने पिछले दिनों जो है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ जो है हमने तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता भी किया, आपको सुनवाया भी। और देखिए, जब 9 दशक रेडियो का हो जाता है तो इसमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी याद आते हैं, और हम लोग मना रहे हैं। और देखिए, एक हम आपको सुनवा रहे हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक, आज
3: अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: तो ये आवाज सुनी और देखिए ये जो 9 दशक में
2: जी,
1: आपको याद होगा
2: बिल्कुल
1: हम लोग रेडियो से कमेंट्री सुनते थे, क्रिकेट कमेंट्री सुनते थे, काफी अच्छा लगता था
2: जी। मैं राजेश जी आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, आपने बहुत अच्छा आकाशवाणी के 90 वर्ष के बारे में जो प्रोमो हमने हमारे सभी श्रोताओं को सुनवाया, साथ ही मैं चाहती हूँ एक संदेश भी हम सुनवा दें, उसके बाद हम अगले मेल की तरफ बढ़ते हैं।
3: सर 50,000 एडवांस।
4: और इतना कैश तो हमने ही
5: नहीं, और आज बैंक भी बंद है।
6: इलाज है, डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढोल।
5: लेकिन
6: अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है,
7: आपने क्योंकि RBI करना है।
8: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
9: और को भी सिखाओ।
2: तो राजेश जी संदेश के बाद कुछ और मेल भी हैं और पत्र भी हमारे पास हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी।
1: तो मैं पत्र किन का आया है ये लिफाफे में?
2: हाँ हाँ जी
1: जी,
2: गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से पत्र भेजा है अनिल कोचाले ने।
1: और क्या लिखे हैं
2: इन्होंने? लिखा है कि कार्यक्रम में सभी को इन्होंने

0: में नमस्कार लिखा है। साथ ही इनकी एक शिकायत है कि बहुत सारे लोग कार्यक्रम में मतलब फरमाइशी जो कार्यक्रम होते हैं फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम, उसमें इनका पत्र शामिल नहीं करते हैं, तो कृपया इनके पत्र शामिल किए जाएं। और साथ ही इनका कहना है कि हमारे जो फ़ोन नंबर हैं वो कई बार बंद होते हैं, ख़राब होते हैं, तो उन पर भी प्रॉपर ध्यान दिया जाए, ताकि अगर किसी श्रोता को डायरेक्ट हमसे बात करनी हो तो वो इन फ़ोन नंबर्स के ज़रिए बात कर सके।
1: बिल्कुल, इसके लिए हम BSNL का जो महाप्रबंधक है उनको हम सूचित कर देंगे
0: जी।
1: और ये बात तय है कि कभी कभी फ़ोन में गड़बड़ी होती है, हमारे कई श्रोता जो है वंचित हो जाते हैं
0: जी, जी, जी।
1: और दूसरी इन्होंने क्या शिकायत की?
0: दूसरा इन्होंने कहा कि फरमाइशी फिल्मी गीतों के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कई बार इनके पत्र शामिल नहीं होते हैं,
1: इसलिए शामिल नहीं होते हैं कि कई बार आपकी हैंडराइटिंग पता नहीं चल रही थी। बहुत मुश्किल से विजया जी आपके पत्र पढ़े हैं, तो बिल्कुल आप साफ सुथरे आवाज में लिखें। आपका पत्र जो है स्पीड पोस्ट से आया है, इसलिए घूमने का कोई सवाल नहीं होता है, आपका कई जगह शामिल होते हैं। हमें लिखे हैं, एक और हमारे पास व्हाट्सएप संदेश आया है, अपना विचार व्यक्त किए हैं। तुम रखवाला हो जो गुरुजी हम मेरा, म्यारा हृदय ज्ञान दियो गुरुजी म्यारा, आड़ी बाटी जाओ मक जान मत दीजो, भूलिया क्या राह बताब जो। ये इन्होंने लिखे हैं, दुर्गेश जी ने जो लिखे हैं पंक्तियां लिखे हैं सिंगा जी महाराज को याद करते हुए, हमारे निमार क्षेत्र में काफी बड़े संत हुए और वास्तव में इनको याद करना और इनके जो बताए गए जो
0: रास्ते
1: हैं इन पर चलना बहुत बड़ी बात है। अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को भी सुधारेंगे। और इनका मेल तो आपने पढ़ ही लिया
0: जी। और एक और मेल हमें मिला है, खरगोन मध्य प्रदेश के श्रोता हैं और हुकुमचंद जी कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव काव्यांशी और प्रभा कटारिया के साथ कृतिका ने ये मेल हमें लिखा
1: जी,
0: है।
1: क्या लिखते हैं?
0: इन्होंने लिखा है कि 9 मई को सुनहरे पल कार्यक्रम के अंतर्गत मल्हार फिल्म का गीत बजाया गया था, बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, ये इन्हें बहुत अच्छा लगा। बरसात और माया फिल्म के गीतों को भी सुनवाया, जो सुबह सुबह बड़ा रोमांटिक माहौल हो गया था, इतने सुंदर गीत सुनवाए तो धन्यवाद लिख रहे हैं ये। साथ ही इन्होंने 10 मई को वसुंधरा कार्यक्रम के अंतर्गत जल संरक्षण पर विवेक जी की वार्ता इन्हें बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगी। साथ ही इस कार्यक्रम में छोटी सी चिड़िया की कहानी और जल देवता पुस्तक के बारे में जानकारी भी सुनने को मिली, इन्होंने धन्यवाद लिखा है। और मातृ दिवस के अंतर्गत सुनहरे पल कार्यक्रम के अंतर्गत शक्ति साकल्ले जी ने माँ पर बनी फिल्मों के गीतों को सुनाकर इस दिन को सार्थक कर दिया, उनकी इस सुंदर लाजवाब प्रस्तुति के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया है। साथ ही दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम भी इन्होंने रात्रि में सुना, एक से बढ़कर एक गीत और कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। 11 मई को गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम के अंतर्गत पंकज शर्मा जी, दीपक जी और हर्षा पालीवाल जी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को मिली, सबका धन्यवाद दे रहे हैं। और 12 मई को सुनहरे पल कार्यक्रम में ताजमहल, माया और पाकिजा जैसी फिल्मों के गीत सुनाकर माहौल खुशनुमा किया।
1: और देखिए पाकिजा के जितने भी गीत हैं
0: बहुत ही
1: आज भी प्रासंगिक हैं, और कब ये फिल्म बनी थी और आज भी लोग कितने शिद्दत और के साथ सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो देखिए और आज जो नए नए जो गीत बनते हैं इसकी जो आयु होती है बहुत कम होती है
0: जी।
1: तो हम अपनी सभ्यता को याद करें और हम पुरानी जो हमारे संस्कार हैं उस संस्कार को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो संस्कार आगे और टिकाऊ होगा
0: जी।
1: जी आगे
0: साथ ही इन्होंने एक सुझाव भी लिखा है कि MH हॉटलाइन कार्यक्रम सप्ताह में 3 दिन देकर अगर 3 दिन मनमोहक मतलब मनमोहक ये जो हमारा मनभावन कार्यक्रम होता है उसे प्रसारित किया जाए तो श्रोता दोनों कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं।
1: जी, इनकी चालाकी हम समझ रहे हैं। देखिए कई ढेर सारे एक ही श्रोता के ढेर सारे पत्र आते हैं
0: जी, जी, जी,
1: और कुछ नए श्रोता मिले और कुछ नए विचार करें तो और
0: अच्छा लगेगा,
1: क्योंकि एक ही श्रोता का 10 बार नाम लेना विभिन्न कार्यक्रमों में ये भी उचित नहीं है।
0: हाँ, साथ ही एक सुझाव और दे रहे हैं कि 22 मई को आकाशवाणी अपना स्थापना दिवस मना रहा है, अगर इस अवसर पर आप श्रोताओं के लिए कोई कार्यक्रम रखें तो बहुत अच्छा।

0: अब बिल्कुल बिल्कुल आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। 22 मई 1955 को हमारा केंद्र की स्थापना हुई थी
1: जी।
0: और देखिए 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ
1: जी,
0: तब पूरे प्रदेश में हमारा आकाशवाणी इंदौर केंद्र ऐसा था कि सूचना शिक्षा मनोरंजन की जो दुनिया में अपना खूब देश के में एक अलग पहचान बनाई। यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ करता था, नंदा जी, भेरा जी, काना जी, खेती गृहस्थी कार्यक्रम जो होता था, राम राम हो, नंदा जी राम राम हो,
1: लोग उनके आवाज से पहचान जाते थे, पहचान जाते थे करता है और क्या कार्यक्रम।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे मौके पे हमारे श्रोताओं ने विचार व्यक्त किया है कि स्थापना दिवस में हमें भी जोड़ें
1: जी, बहुत अच्छी बात।
0: बिल्कुल
1: है,
0: बहुत अच्छी बात है। और हम कोशिश करेंगे कि इस बार 22 मई को हम तो मनाएंगे ही, आप भी आए मनाएं, और जो नहीं आ पाए, जो जहां भी मनाएं, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी हम लाइव फोन इन के माध्यम से जोड़ेंगे, ताकि न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से पूरे विश्व फलक पर ये संदेश जाए
1: जी।
0: अगला,
1: अनिल बामनिया जी ने पत्र भेजा है हमें लाबरिया भेरू इंदौर से। उनके साथ प्रमीला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और पूरा बामनिया परिवार है। और इन्होंने सभी को प्रशंसा लिखी है, सभी को नमस्कार किया है और कहा है कि 7 मई को मन भावन कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया। इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम में भी मुकाम सिंह चौहान जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी और हमें इस गतिविधि से जानकारी भी मिली कि क्या हुआ है इंदौर में। साथ ही 11 मई को आकाशवाणी से गुड मॉर्निंग इंदौर इन्होंने सुना, शिखा जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। चॉइस टाइम कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा और प्रीति उपासनी ने सभी पत्रों को पढ़ा और अधिक से अधिक पत्र शामिल किए, इसके लिए उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रंजीत सिंह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हमारे पास आपका पत्र ये लिखे हैं और व्हाट्सएप किया है इन्होंने
1: जी।
0: लिखा है इन्होंने 29 अप्रैल 2026, वंदना कार्यक्रम 7:20 पर साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र सुना और 30 अप्रैल 2026 को 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम के अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा का महत्व और घरेलू उपचार इस विषय पर वैद्यचंद शर्मा से ब्रजेश जोशी जी की बातचीत सुनी और उसके बाद लोक संगीत सुना, काफी आनंद आया। 2 मई 2026 को विकसित होता भारत ये नया कार्यक्रम शुरू किया गया, आधे घंटे का कार्यक्रम होता है। ये पूरा हम 2047 तक भारत को कैसे विकसित बना सके, विभिन्न विषयों पर और विभिन्न क्षेत्रों में इस पर हम चर्चा प्रसारित करते हैं और पूरे सप्ताह में एक दिन होता है। और पिछले सप्ताह जो इन्होंने सुना कि भारत को दुनिया का पूर्ण बास्केट, फूड बास्केट बनाकर रखेंगे, ये संदीप कुमार सिंह जी जो कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर के ये कृषि वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं, इनकी जानकारी सुनी बहुत अच्छी लगी। और मिट्टी परीक्षण और जल की आवश्यकता, जल संरक्षण इस विषय पर हमने कार्यक्रम सुना, काफ़ी अच्छी लगी। और कृषि विपणन और डिजिटल मंडी प्रबंधन विषय पर बिना राठौर जिसे ब्रजेश जोशी की जो बातचीत हुई ये भी काफ़ी अच्छा लगा। अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन ये कार्यक्रम हमने 3 मई 2026 को सुना, काफ़ी अच्छा लगा। साप्ताहिक कार्यक्रम 6 मई को सुना, 7 मई को साहित्यिक कार्यक्रम सुना और 10 मई को वसुंधरा कार्यक्रम के अंतर्गत जल संरक्षण विवेक चौरसिया जी से सुना। गुड मॉर्निंग खंडवा भी हमें काफ़ी अच्छा लगा और परिमान चौहान जी की ये भी बातचीत सुनी, काफ़ी अच्छी लगी। और महिला सभा के कार्यक्रम काफ़ी अच्छे लगे। खेती गृहस्थी में रविंद्र भारती जी से जो हमने सुना, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें, ये भी काफ़ी अच्छा लगा। आपके केंद्र से लोकगीत का जो प्रसारण होता है, चूंकि हमारे मिट्टी से जुड़ी ही है, ये काफी आनंद आता
1: जी,
0: है।
1: जी जी जी,
0: बहुत बहुत,
1: बहुत लंबी और विस्तृत,
0: काफी इन्होंने लंबा पत्र लिखा है। और अगला,
1: एक और मेल हमें मिला है सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से और सूरज कुमार ढाक से साक्षी, ज्योति और ऋतुराज अचोले ने हमें ये मेल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित कार्यक्रम वंदना, मन भावन, खेती गृहस्थी, युवाणी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और सबको इन्होंने धन्यवाद कहा है।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास देश पांडे जी हमारे पास पत्र लिखकर ये व्हाट्सएप किए हैं, लिखे हैं, मैं आपका पत्र कार्यक्रम

0: बराबर सुनता हूँ।
1: 22
0: मई को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मेरी ओर से आकाशवाणी परिवार को इन्होंने शुभकामनाएं दी है। हम आपको और बतला दें कि हम कोशिश करेंगे कि 22 मई को एक लाइव फोन करें, फोन इन कार्यक्रम करें और हम सभी श्रोताओं को
1: उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे।
0: जब हम हमारे साथ हमारे श्रोता भी मनाएंगे तो और खुशी होगी।
1: जी, मैं जल्दी से एक और मेल अभी हमें मिला है।
0: जी,
1: ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा, इन सब ने मेल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और हम आपके कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर सुनते हैं। खेती गृहस्थी कार्यक्रम हमारा पसंदीदा कार्यक्रम है और सभी को धन्यवाद ये लिखते हैं।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विजया जी, घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है विदा लेने के लिए।
1: जी,
0: हम अगले सप्ताह बुधवार को फिर मिलेंगे 7:20 से 8:00 के बीच। तब तक हम लेते हैं विदा। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आपका पत्र कार्यक्रम। आपका पत्र कार्यक्रम में आपके पत्रों का जवाब देने के लिए हमारे बीच थे कार्यक्रम प्रमुख राजेश जी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 8 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मॉनसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोनाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमापार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरूद्व भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट UG के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने सातवें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किये। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे

0: आते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 प्वाइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath of office in secrecy to Mr. Rangasamy. More from our correspondent.
4: इंस्टॉल

0: श्रोताओं, सुपर 30 फिल्म का ये गीत आपने सुना। ये फिल्म गणितज्ञ आनंद कुमार के जीवन पर आधारित एक बेहद प्रेरणादायक और भावनात्मक बायोपिक थी, जिसमें ऋतिक रोशन ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। विकास बहल द्वारा निर्देशित यह फिल्म शिक्षा के महत्व और वंचित बच्चों के सपनों को उड़ान देने की कहानी है। ऋतिक रोशन का बिहारी लहजा इस फिल्म का मुख्य आकर्षण रहा है। गोबर, कीचड़ और गटर के इर्द गिर्द रहने वाले बच्चे, गरीबी की मार झेलने वाले बच्चे जो कि आईटी और प्रवेश परीक्षाओं का सपना भी नहीं देख पाते थे, ऐसे बच्चों को मुफ्त में शिक्षित करने और उनके खाने पीने का खर्चा एक ऐसा इंसान उठाता है, और उस इंसान के प्रति सम्मान तब और बढ़ जाता है जब यह पता चलता है कि वह खुद गरीबी की मार झेल रहा है। बिहार के रहने वाले आनंद कुमार ने यह अद्भुत काम किया और उनके द्वारा तैयार किए गए बच्चे आज ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। सच मायनों में आनंद कुमार सही मायनों में सुपर हीरो है। यह बात साबित करते हैं कि सुपर हीरो बनने के लिए बेहतरीन लुक्स नहीं, काम मायने रखता है। गणितज्ञ आनंद कुमार के जीवन पर घटी इन्हीं घटनाओं को लेकर ये फिल्म बनाई गई थी सुपर 30, जिसका गीत अभी हमने आपको सुनवाया था। और श्रोताओं, अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की पूर्व पायलट कुंजन सक्सेना, जो कि देश की पहली महिला एयरफोर्स पायलट रही है। उनके जीवन पर आधारित 2020 में आई फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। दोस्तों, गुंजन सक्सेना की कहानी वास्तविक जीवन संघर्ष और लिंग पर आधारित भेदभाव को दर्शाती है। कारगिल गर्ल के नाम से मशहूर गुंजन को 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अनुकरणीय साहस दिखाने के लिए शौर्य वीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये फिल्म एक नारीवादी पिता और उसकी साहसी बेटी की मार्मिक कहानी है। पितृसत्तात्मक मानसिकता और भेदभाव के खिलाफ जंग छेड़ती ये फिल्म एक ऐसे खतरे को पहचानती है जिसको हमने 1999 में निपटा था।
1: खुद को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछ।

दोस्तों, अब बात करते हैं मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित और दीपिका पादुकोण द्वारा अभिनीत फिल्म छपाक की, जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित एक सशक्त और भावनात्मक फिल्म थी। ये फिल्म उनके अटूट साहस, संघर्ष और न्याय की लड़ाई को दिखाती है, जो एसिड हमले की भयावहता के बावजूद भी हार नहीं मानती। यह एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण फिल्म थी, जो एसिड अटैक पीड़ितों के दर्द और उनके हौसले को सामने लाती है। एक ऐसा ईमानदार प्रयास इस फिल्म के जरिए किया गया, जिसमें इसकी प्रामाणिकता और दमदार अभिनय के लिए देखा जाना चाहिए। दोस्तों, मेघना गुलजार ने फिल्म को बिना किसी मेलोड्रामेटिक बनाए हुए उसे बहुत ही संवेदनशीलता से पेश किया। ये फिल्म समाज को एक जरूरी संदेश देती है और तेजाब की बिक्री पर नियम कानूनों पर सवाल उठाती हुई नजर आती है। यह सर्वाइवर की मानसिकता पर केंद्रित है, न कि केवल विक्टिम पर। दीपिका पादुकोण ने इसमें मालती के किरदार को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। उन्होंने दर्द, संघर्ष और दृढ़ता को बिना किसी ग्लैमर के जीवंत किया। विक्रांत मैसी ने भी एक समझदार और सहायक पत्रकार की भूमिका में प्रशंसनीय काम किया।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना छपाक फिल्म का गीत। और श्रोताओं, अब बात करते हैं नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित एक ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म की, जिसका नाम था दंगल। ये फिल्म 2016 में आई थी, जो पूर्व पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों गीता बबीता के वास्तविक जीवन संघर्ष पर आधारित है। इस फिल्म में आमिर खान का बेहतरीन अभिनय और सशक्त कहानी, जो कि महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित, ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स हिंदी फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म में महावीर फोगाट की भूमिका आमिर खान ने निभाई थी। एक कड़क और केयरिंग पिता की भूमिका में अपना शानदार अभिनय उन्होंने किया। इसके लिए उन्होंने अपना वजन भी बढ़ाया और घटाया भी। कुश्ती के दृश्यों को बेहद बारीकी और तकनीकी तरीके से इस फिल्म में फिल्माया गया था, जो किसी भी भारतीय फिल्मों में अब तक का सबसे बेहतरीन

चित्रण माना जाता है। इस फिल्म का एक डायलॉग आप सभी को याद होगा कि मारी छोरियां छोरों से कम है के, इस संवाद के साथ लड़कियां लड़कियों का लड़कों के बराबर होना साबित करता है। दोस्तों, यह केवल एक फिल्म नहीं थी बल्कि भावनाओं, संघर्ष और जीत की एक प्रेरणादायक दास्तान थी। एक ऐसी कहानी जो पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती देता है। नितेश तिवारी ने निर्देशन के दृश्यों को बहुत वास्तविक रखा। आइए इसी फिल्म का ये बहुत ही प्रसिद्ध गीत सुनवाते हैं।

श्रोताओं, अब बात करते हैं एक बेहद प्रभावशाली और भावनात्मक जीवनी आधारित थ्रिलर फिल्म की, जिसका नाम है नीरजा। ये फिल्म 2016 में आई थी, जो 1986 में पेन एम फ्लाइट 73 के अपहरण के दौरान 359 यात्रियों की जान बचाने वाली 23 वर्षीय एयर होस्टेस नीरजा भनोट के अदम्य साहस को सलाम करती है। सोनम कपूर ने इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था और राम माधवानी के निर्देशन में इसे साल की सबसे यादगार फिल्मों में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये फिल्म नीरजा के डर पर जीत और कर्तव्य के प्रति समर्पण का सम्मान करती है। निर्देशक राम माधवानी ने एक ही स्थान पर घटित होने वाले इस घटनाक्रम को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत किया। सोनम कपूर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय इस फिल्म में किया था और नीरजा की मां के रूप में शबाना आजमी का अभिनय बेहद भावुक और दमदार माना जाता है।

श्रोताओं, अब बात करते हैं भारतीय धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित एक बेहद प्रेरणादायक और भावनात्मक बायोग्राफिकल फिल्म भाग मिल्खा भाग की, जो कि 2013 में आई थी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई, जिसे उनके शानदार अभिनय, दमदार पटकथा जिसे प्रसून जोशी ने लिखा था, और बेहतरीन संगीत के लिए आलोचक और दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। ये फिल्म देश प्रेम, संघर्ष और जीत की कहानी है। दोस्तों, फिल्म अपनी भावनाओं को एक सफर पर ले जाती है। ये फिल्म एक खिलाड़ी की कहानी है, बल्कि एक इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का जश्न है। इस फिल्म में फरहान अख्तर ने बहुत समर्पण के साथ अपने किरदार को निभाया था।

श्रोताओं, ये सच है कि बॉलीवुड की फिल्में कभी हमें हंसाती है तो कभी रुलाती है, कई बार बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। कई बार इन फिल्मों की कहानियों से हम खुद को कनेक्ट करते हैं। तो ऐसी ही कुछ फिल्में जो सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, आज इस कार्यक्रम में हमने ऐसी फिल्मों के गीत सुनवाए और हमें उम्मीद है कि आपको ये गीत पसंद आए होंगे। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सवेरे के 9 बज चुके हैं, अब वक्त है आपको लोक संगीत सुनवाने का। तो आइए इस कार्यक्रम में सुनिए आनंदीलाल भावेल के गाए लोकगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली रचना भीली गीत, जिसे प्रस्तुत किया है आनंदीलाल भावेल और साथियों ने।

आनंदीलाल भावेल के गाए मालवी लोकगीत आप सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में, और इसी क्रम में सुनिए अगली पारंपरिक भीली लोक रचना।

0: सर 50,000 एडवांस।
1: और इतना कैश तो हमने ही लाया।
2: और आज बैंक भी बंद है।
3: इलाज है, डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढोल।
2: लेकिन
3: अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहना है कि
4: डिजिटल पेमेंट अपनाओ,
5: औरों को भी सिखाओ।
6: लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कलाकार हैं आनंदीलाल भावेल। इनकी आवाज में सुनिए कार्यक्रम की अंतिम रचना।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आनंदीलाल भावेल के गाए लोकगीत, और इसी के साथ लोकगीतों का यह कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं संध्या दवे। इनकी आवाज में सुनिए कार्यक्रम की पहली रचना। कार्यक्रम का पहला भजन लीजिए सुनिए, जिसे लिखा है परमानंद ने।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं सुजाता वैशंपायन के गाए कुछ भक्ति गीत। लीजिए इस क्रम में सुनिए कार्यक्रम की पहली रचना।

ब्रह्मानंद की लिखी ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थी सुजाता वेशमपायन। कार्यक्रम सुगम संगीत, इसी क्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं इन्हीं की आवाज़ में मीराबाई की लिखी भक्ति रचना। तबले पर संगत कर रहे हैं दीपक व्यास और कीबोर्ड पर भावेश सोनी।

सुजाता वेशमपायन की गायी भक्ति रचनाएं आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में। इसी क्रम में सुनिए कार्यक्रम की अंतिम रचना। रचनाकार है नारायण स्वामी।

सुजाता वेशमपायन की गाई भक्ति रचनाएं अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। तबले पर संगत कर रहे थे दीपक व्यास और कीबोर्ड पर भावेश सोनी। श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कुछ और रचनाएं आप सुन सकेंगे शाम 6:30 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। कलाकार होंगी एक बार फिर सुजाता वेशमपायन। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विदुषी किशोरी अमोनकर का गाया राग ललित। तबले पर संगति प्रदीप दीक्षित की, विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है।

0: संगति कर रहे थे प्रदीप दीक्षित। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध थी। इस रचना के साथ ही शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगी। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
1: लीजिए प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा, वाचन स्वर नवनीत चौबे। अनूपपुर जिले में मानव और हाथियों के बीच होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा गजरक्षक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसके माध्यम से अब ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। वन मंडलाधिकारी डेविड वेंकट राव चनाप ने बताया कि यह ऐप हाथियों की रियल टाइम लोकेशन और उनके व्यवहार की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों और उनके जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जैसे ही हाथी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, यह ऐप वनकर्मियों और क्षेत्र के पंजीकृत ग्रामीणों को SMS, वॉयस कॉल और सायरन के माध्यम से तत्काल सचेत कर देगा। जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। इसी उद्देश्य से जिले में मई माह में 2400 घंटे सुमन हेल्प डेस्क एवं इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर जैसी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को हर समय त्वरित स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में घर घर जनगणना कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी हर्षल पंचोली ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 शिक्षकों की 1 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन 18 मई तक आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जनजाति युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा और शोध के अवसर प्रदान करना है। जिले में गेहूं की खरीदी जारी है। जिले में 15 अप्रैल से शुरू हुई उपार्जन प्रक्रिया के तहत अब तक 355 किसानों से 971 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए कुल 1367 किसानों ने पंजीयन कराया है। अनूपपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगा दी गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जनजातीय कार्य विभाग के नियमित और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज विशेष सुनवाई शिविर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य कर्मचारियों के लंबित पेंशन, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, एरियर एवं GPF भुगतान जैसे प्रकरणों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना है। शिविर के दौरान विशेष रूप से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लंबित भुगतान प्रकरणों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विकास खंड कोतमा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया कला के प्रगतिशील किसान तारन सिंह ने आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। वे वर्षों से पारंपरिक रोपाई विधि से धान की खेती करते थे। वर्ष 2024-25 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित आत्मा योजना के अंतर्गत आयोजित किसान मेले में उन्होंने धान की सीधी बुवाई DSR तकनीक की जानकारी प्राप्त की और अपने खेत में सीड ड्रिल मशीन द्वारा धान की बुवाई कराई। जहां पारंपरिक रोपाई में प्रति हेक्टेयर लगभग 12 से 15 हजार रुपए तक का खर्च आता था, वहीं सीधी बुवाई में यह लागत बहुत कम होकर लगभग 1200 रुपए प्रति हेक्टेयर रह गई। जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के नव निर्मित क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया। उन्होंने ICU कक्ष, नेत्र कक्ष, बेड की उपलब्धता एवं चिकित्सा उपकरणों की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों से मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जिले के सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अनूपपुर में 3 मतदान केंद्र और कोतमा व राजेंद्रग्राम में 1-1 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस चुनाव में 122 प्रत्याशियों में से मतदाताओं ने अपनी अपनी पसंद के 22 सदस्यों का चुनाव किया। अनूपपुर जिला न्यायालय में 302 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ संतोष सिंह परिहार ने बताया कि मतदान शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। विगत दिनों जिले के क्षत्रिय समाज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान कोतमा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भगवान परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण समाज ने जैत हरि अनूपपुर अमरकंटक में शोभा यात्रा निकालकर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और उनके बताए गए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अनूपपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा का था और वाचन स्वर नवनीत चौबे का।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। श्रोताओं, अब वक्त है आपको सजीव फोन इन कार्यक्रम सुनवाने का। कार्यक्रम का नाम है MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: हैप्पी बर्थडे माय डियर।
1: टांगुन,
0: अरे ये क्या?
2: एब्सोलून,
1: मेरी नई स्कूटी के लिए।
3: ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी।
1: मतलब?
0: सुनो, ऑनलाइन लेंडिंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा।
1: दादू बन गई सयानी,
4: गिफ्ट नहीं खोलेंगे
1: स्कूटी।
5: RBI कहता है इंसिस्ट।
6: जानकार बनिए,
7: सतर्क रहिए।
6: MH Hotline कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को विजया जैन का प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आज का कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। और इससे पहले कि आपके फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो, एक बार फिर हमारे नए श्रोताओं के लिए हम नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 2710223 और 2710224, इंदौर का STD कोड 0731। और हमारा निवेदन हमेशा की तरह हमारे सभी श्रोताओं से कि जिन श्रोताओं के फोन कॉल हमारे इस कार्यक्रम में लग जाते हैं, कृपया थोड़ा सा अंतराल रखें। कम से कम एक महीने से डेढ़ महीने का अंतराल आप रखें, ताकि हमारे ज़्यादा नए श्रोता इस कार्यक्रम को सुन पाएं और कार्यक्रम में वैरायटी भी आपको सुनने को मिले। तो चलिए आज देखते हैं कि हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो।
8: हेलो।
6: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
8: नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल बोलता हूँ, राजाराम नगर देवास से।
6: राजेश अग्रवाल जी, कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
8: ये आज दीदी महान गायक मनहर उदास जी का जन्मदिन है।
6: हाँ हाँ,
8: मतलब 82 वर्ष के हो गए वो।
6: और अच्छा।
8: कोई मतलब उनकी जन्मदिन के उसमें एक गीत ये सुनवा दीजिए जो उनका शुरुआती गीत था, विश्वास पिक्चर का।
6: अच्छा, विश्वास फिल्म का गीत सुनना है आपको।
8: हाँ हाँ, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, सुमन कल्याणपुर और मनहर उदास जी की आवाज में।
6: ओके ओके ओके।
8: और ज्यादा लंबी बात नहीं करे श्रोताओं से, ये मैं कहना चाहूंगा।
6: जी जी जी बिल्कुल, ज्यादा लंबी बात ना करें। और थोड़ा सा श्रोता जिनका कॉल एक बार इस कार्यक्रम में लगता है ना, मेरा उनसे निवेदन भी है कि वो थोड़ा अंतराल रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा नए श्रोता हमसे जुड़ सके, है ना?
8: बहुत सारे बार बार लगा रहे फोन।
6: जी जी, नहीं हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम तो सिर्फ निवेदन कर सकते हैं। देखिए, जितना वैरायटी आप रखेंगे उतना आप सबको प्रोग्राम सुनने में मजा आएगा, है ना?
8: लंबी बात नहीं करें ज्यादा।
6: जी जी जी बिल्कुल, आपका गीत तैयार है, चलिए आप तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन में आपका स्वागत करते हैं। कौन बोल रही हैं?
1: जी नमस्ते मैम, मैं
0: नमस्ते
1: ना
0: जी।
1: रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू गुप्ता जी देवास से बात कर रही हैं। कौन सा गीत सुनेंगी रानू जी आज आप?
1: मूवी का नाम है दाग द फायर और
0: दाग द
1: गाने के बोल
0: फायर।
1: हैं प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो।
0: बहुत अच्छा गीत चुना आपने। मूवी देखी थी आपने ये?
1: हाँ काफी अच्छी मूवी है।
0: ओके, किस तरह की मूवीज पसंद करती हैं आप देखना?
1: वैसे तो मुझे रोमांटिक मूवी ज्यादा पसंद है, बट कभी कभी
0: अच्छा
1: लड़ाई वाली भी देख लेती हूँ।
0: अच्छा तो ऐसी कौन सी मूवी है रोमांटिक जो आपको सबसे ज्यादा याद रहती है, और ऐसी कौन सी लड़ाई वाली फिल्म है जो आपको मतलब याद रहती है, अगर मैं उसकी बात पूछूं तो?
1: देखिए मुझे सबसे अच्छी मूवी अगर लगी तो दुल्हन हम ले जाएंगे, सलमान खान करिश्मा कपूर वाली।
0: ओके ओके, अच्छी मूवी थी वो भी।
1: उसकी स्टोरी
0: और
1: बहुत अच्छी लगी मुझे।
0: जी, और अगर लड़ाई झगड़े की बात करें तो?
1: लड़ाई झगड़े का ऐसा मतलब नहीं है, बट मुझे मतलब पद्मावती बहुत अच्छी मूवी लगी।
0: हाँ नहीं, वो एक्चुअली क्लासिकल मूवी थी और स्टोरी
1: हाँ
0: काफी
1: उसकी स्टोरी
0: उसकी
1: अच्छी
0: यथार्थ
1: थी।
0: की
1: जी जी
0: स्टोरी थी। बिल्कुल सही बात है। चलिए, आपका
1: जी
0: गीत
1: जी
0: हमें मिल चुका है तो
1: ओके ओके
0: आपको, आप तक पहुंचा दें आपकी पसंद का ये गीत, है ना?
1: ओके
0: चलिए सुनते हैं आपके साथ हम भी।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन,
1: आदरणीय दीदी को सादर सब प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार। और एम एच हॉटलाइन में आपका स्वागत है। कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, राजू जी आगरा से बात कर रहे हैं आप। ओके, कौन सा गीत
1: जी,
0: सुनेंगे आज आप?
1: आज तेरी मेहरबानी फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनना था दीदी।
0: अच्छा, तेरी मेहरबानी फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनना है आपको। क्या करते हैं राजू जी आप?
1: जी, ब्रांड पर्सन हूँ मैं, घर पर।

0: रहता हूँ और रेडियो सुनने का मेरा बचपन से शौक है।
1: अच्छा अच्छा, तो रेडियो के कार्यक्रम निरंतर सुनते हैं। कितने सालों से रेडियो सुन रहे हैं आप?
0: रेडियो से दीदी मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ जब ये फोन की टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी और पत्रों के माध्यम से कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे।
1: जी जी जी जी जी।
0: और अभी तो हमारा एक ब्रज रेडियो सुल्तान मिस्टर
1: आप थोड़ा सा रेडियो सेट दूर रखिए ना अपने से, थोड़ा सा रेडियो सेट दूर रखिए ताकि वो आवाज में जो पीछे गड़बड़ आ रही है ना वो आपको अच्छे से सुनाई दे। अच्छा अच्छा, नहीं पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। ठीक है चलिए कोई नहीं। गर्मी कैसी है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, आगरा में?
0: गर्मी दो तीन दिन से थोड़ी थोड़ी अब बढ़ती दिखाई दे रही है, बीच में तो बहुत ठंडा मौसम हो गया था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
0: तेज हवाएं चली थी तो मौसम बहुत ठंडा हो गया।
1: तो ध्यान रख रहे हैं ना गर्मी के मौसम में आप अपना खुद का भी और अपने परिवार का भी?
0: बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
1: चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए आपका गीत मिल चुका है, शब्बीर कुमार की आवाज में है गीत, आप तक पहुंचाते हैं तेरी मेहरबानियां फिल्म से। ओके
0: जी, थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।

0: हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या
1: एप्सिलॉन?
2: मेरी नई स्कूटी के लिए।
3: वो बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी।
2: मतलब
0: सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स से अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा।
2: दादू बन गई सयानी,
1: गिफ्ट नहीं खोलेंगे
4: स्कूटी।
3: RBI कहता है इंसिस्ट,
5: जानकार बनिए,
1: सतर्क रहिए।
5: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में श्रोताओं, हम एक बार आप सभी को फिर याद दिला देते हैं कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224, इंदौर का STD कोड 0731, और आकाशवाणी इंदौर आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं, और साथ ही अगर आप गूगल पर आकाशवाणी इंदौर लाइव सर्च करते हैं, टाइप करते हैं, तब भी आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे अगले कॉलर कौन हैं।

0: हेलो।
1: हाँ, एमएच हॉटलाइन।
0: हाँ जी, एमएच हॉटलाइन में आपका स्वागत है। कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: इंदौर से, दुबे के बगीचे से महेश रायकवार बोल रहे हूँ मैडम।
0: हाँ जी, महेश रायकवार जी, आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: मैडम, सच्चा झूठा फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: सच्चा झूठा फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, और सब ठीक है घर में?
1: हाँ, घर में सब बढ़िया है मैडम।
0: चलिए, बिल्कुल आपका गीत मिल चुका है और आप तक पहुँचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू मैडम।
2: यूं ही तुम मुझसे बात

0: हेलो हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन, हेलो एमएच हॉटलाइन में आपका स्वागत है। कौन बात कर रही हैं?
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ, सागर से।
0: सागर से नंदिनी तिवारी जी बात कर रही हैं। नंदिनी जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: मूवी का नाम है जाने होगा क्या और सॉन्ग है पल के उठा के देखिए।
0: पल के उठा के देखिए। नंदिनी क्या करती हैं आप?
1: मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया है।
0: किस में फाइनल कर रही हैं आप?
1: जी मैं बीएससी।
0: अच्छा, बीएससी फाइनल कर रही हैं आप। तो एग्जाम्स हो चुके हैं आपके कि अभी बाकी होना है?
1: जी
0: एग्जाम्स हो चुके हैं आपके।
1: जी
0: क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके बीएससी में?
1: बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री।
0: अच्छा, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री। तो आगे क्या करने का इच्छा है आपकी?
1: अभी फिलहाल मैं देखते हैं, नर्सिंग करेंगे।
0: अच्छा, नर्सिंग करने की इच्छा है। ओके, तो अभी इस वक्त सागर में गर्मी के क्या हाल है?
1: गर्मी तो बहुत हो रही है, 41 पे जा रहा है।
0: तो अभी आप रेगुलर मतलब सागर से ही पढ़ाई कर रही हैं कि कहीं बाहर पढ़ाई कर रही हैं?
1: मैं सागर से ही कर रही हूँ।
0: अच्छा, और कौन कौन है आपके घर में?
1: मम्मी पापा मेरे दो भाई हैं।
0: अच्छा, तो कॉलेज टाइम के बाद क्या करती हैं घर में? हेल्प करती हैं मम्मी वगैरह के कामकाज में?
1: काम करते हैं, सुबह से भी करवा लेते हैं, खाना वगैरह भी बना लेते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ आप मम्मी की हेल्प भी करते हैं, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है आपका, तो बिल्कुल बहुत स्कोप भी है सब्जेक्ट्स में। तो बिल्कुल अच्छा करिए और बहुत आगे बढ़िए। चलिए, आपकी पसंद का गीत मिल चुका है, सुनवाएं आपकी पसंद का गीत आपको।
1: ओके
0: ओके, थैंक यू फोन करने के लिए।

0: हेलो हेलो, एम एच हॉटलाइन में स्वागत है आपका। कौन बात कर रहे हैं?
1: हेलो।
0: हेलो,
1: मैं
0: हाँ, कौन बात कर रहे हैं?
1: महाशिकर बात कर रही हूँ, श्रीनगर
0: अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? तीन
1: से, श्रीनगर जिला महोबा।
0: अच्छा, महोबा से बात कर रही हैं। कौन सा गीत सुनना है आज आपको?
1: हम साथ साथ फिल्म का, छोटे
0: हम साथ साथ फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: भाइयों के बड़े भैया।
0: अच्छा, आज बने हैं किसी के सैया। तो शादी है क्या घर में किसी की, बड़े भाई की या
1: नहीं
0: किसी की? अच्छा, तो
1: नहीं तो
0: ये गीत अपने भाई के लिए सुनवाने वाले हैं कि और किसी को सुनवा रहे हैं?
1: हाँ, भाई को।
0: अच्छा, भाई को। बड़े भाई साहब हैं आपके,
1: हाँ
0: तो झगड़ा वगड़ा भी करते हैं आप उनसे कि
1: नहीं
0: नहीं करते हैं? डांट पड़ती है कि नहीं उनसे, गलत काम करते हैं या कभी ऐसा कुछ होता है तो?
1: हाँ पढ़ती है।
0: पड़ती है। अच्छा, तो फिर सुनते हैं कि नहीं भैया, भाई साहब की बात आप
1: हाँ सुनते हैं, पढ़ाई
0: सुनते हैं? पढ़ाई करते हैं कि क्या करते हैं आप?
1: करते हैं।
0: पढ़ाई करते हैं और साथ साथ में गाने भी सुनते हैं।
1: हाँ
0: चलिए, बिल्कुल, आपका गीत मिल चुका है और आपके साथ आपके बड़े भाई साहब को भी सुनवाते हैं ये गीत, ठीक है?
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: सारनाथ वाराणसी से बाबू यादव जी बात कर रहे हैं, बड़ी दूर से फोन लगाया है आपने।
1: जी दीदी
0: जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे
1: आज हमको सुनवा दिए दीदी। मैं खिलाई तू अनाड़ी का गाना है।
0: हाँ हाँ,
1: चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।
0: अच्छा, बहुत अच्छा गीत है। ये फिल्म देखी थी आपने?
1: नहीं दीदी, पिक्चर तो मैं बहुत कम देखता, इतना टाइम
0: अच्छा,
1: नहीं मिलता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: घर पर ही देख लेता हूँ।
0: जी जी जी, क्या करते हैं वैसे आप?
1: मेरी दुकान जनरल स्टोर की सारनाथ में।
0: अच्छा, सारनाथ में आपकी दुकान है? किसकी दुकान है आपकी?
1: जनरल स्टोर की।
0: अच्छा, जनरल स्टोर की। तो सारनाथ में तो बहुत सारे टूरिस्ट बहुत आते होंगे।
1: जी दीदी,
0: तो
1: बिल्कुल,
0: बड़ा धार्मिक माहौल रहता होगा वहाँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सारनाथ और वाराणसी, और ये तो बड़ी धार्मिक जगह है, तो यहाँ पर दर्शन के लिए काफी,
1: यहाँ से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में काशी विश्वनाथ जी भी हैं।
0: हाँ जी जी जी जी,
1: तो इसलिए हमेशा भीड़ रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप बहुत ही पवित्र धरती पर, पवित्र नगरी में रहते हैं, और गाना भी बड़ा अच्छा चूज किया है आपने, तो सुनवाए आपको आपकी पसंद का गीत।
1: दीदी दो लाइनें जाए तो कहना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल कहिए।
1: कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता।
0: क्या बात है।
1: किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता।
0: वाह वाह।
1: और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना।
0: जी।
1: जहाँ दरिया समंदर से में दरिया नहीं रहता।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही अच्छी शायरी आपने पढ़ी है। शौक रखते हैं आप शायरी का भी?
1: जी बिल्कुल दीदी, बहुत शौक रखता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, शौक बरकरार रखिए ताकि उम्र हमेशा जवान रहे। और घर में भी सुनाते हैं कि नहीं अपनों को, अपने वाले लोगों को?
1: मैं तो दुकान पर, लेकिन घर में सब लोग सुन रहा है।
0: अच्छा अच्छा, सभी सुन रहे हैं। बिल्कुल
1: लोग सुनते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो के नियमित श्रोता हैं, काम भी करते हैं और गाने भी सुनते हैं। चलिए, आपका गीत मिल चुका है, आप तक पहुँचाते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनवा दें।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बात कर रही हैं?
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं सपना बात कर रही हूँ, गुना से।
0: सपना जी गुना से बात कर रही हैं। अच्छा, क्या करती
1: जी
0: हैं सपना जी आप?
1: हाँ मैम, मैं जॉब करती हूँ महिंद्रा फाइनेंस में।
0: अच्छा, महिंद्रा फाइनेंस में जॉब करती हैं। ओके, क्या टाइमिंग रहते हैं आपके जॉब के?
1: जी
0: जॉब टाइमिंग क्या रहता है आपका?
1: मेरा तो है 10:30 से 5:30, बट अभी
0: ओके
1: क्या है, मेरे भाई की शादी थी तो बिजी हूँ थोड़ा, इसलिए।
0: अच्छा, तो छुट्टियों पे हैं अभी मतलब।
1: जी जी
0: ओके, तो चलिए, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप? कौन सा गीत
1: हेलो,
0: सुनना चाहेंगे? कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है।
0: अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? मैं पूछ रही हूँ कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप? हेलो, आप रेडियो सेट के अगर आसपास हैं तो थोड़ा सा दूर हो जाएं। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ, आ रहा, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
1: जी,
0: हाँ बताइए, गीत कौन सा सुनेंगे आप ये बता दीजिए, फिल्म का नाम और गीत के बोल।
1: गीत तो मैं भूल ही गई आपसे बात करते करते।
0: अच्छा, मुझे कुछ कहना है ऐसा कुछ आप बता रही थी शायद।
1: जी, जब से देखा है तेरे हाथ
0: अच्छा,
1: का
0: मेरी आवाज सुनकर आप भूल गई कि कौन सा गीत सुनना है। क्या बात
1: जी,
0: है, काफी व्यस्त दिख रही हैं आप, मुझे ऐसा लगता है। और कौन कौन है आपके घर में?
1: मेरे दो भाई हैं, एक मैं हूँ और मम्मी है।
0: अच्छा, तो आप छोटी हैं भाइयों से?
1: नहीं, मैं बड़ी हूँ।
0: अच्छा, आप बड़ी हैं। तो घर पे झगड़ा करती हैं भाई बहन? भाई लोगों से झगड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं भाई बहन?
1: हाँ बिल्कुल करती हूँ, मेरी
0: अच्छा
1: चलती है वैसे तो।
0: अच्छा आपकी चलती है ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी से डांट वाट खाती है कि नहीं कभी, कि नहीं मम्मी भी आप ही को सपोर्ट करती है?
1: पहले तो बहुत कूटा है उन्होंने, लेकिन अब नहीं कूटती।
0: अच्छा, पहले बहुत कूटा है तो अब आप बदला ले लेती है शेर को सवा शेर बनकर।
1: जब से मेरे पापा की डेथ हो गई 4 साल हो गए, जब से वो कुछ नहीं बोलती है,
0: अच्छा अच्छा
1: मतलब
0: अच्छा
1: ऐसा।
0: अच्छा ओके ओके ओके, चलिए कोई बात
1: जी
0: नहीं। घर में कभी बड़ों का छोटों का ये एक तो एक्चुअली देखिए ये तो प्यार वाली केमिस्ट्री है, आपस में झगड़ा भी उन्हीं से
1: जी
0: होता है जिनसे प्यार होता है। तो चलिए, आपकी पसंद का गीत मिल चुका है तो आप बिल्कुल
1: ओके जी
0: हमेशा घर में हंसती रहे, मुस्कुराती रहे और ये गीत भी सुने,
1: जी
0: है ना?
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: ग्राम सुराना, जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहे हो?
0: अच्छा, शेख हैदर खान जी, कौन सा गीत सुनना है आज आपको? कौन
1: हेलो, फिल्म
0: सा गीत सुनना है आज आपको?
1: का नाम है मेरा गांव मेरा देश।
0: मेरा गांव मेरा देश, इसका कौन सा
1: ये
0: गीत
1: लता जी
0: लेंगे?
1: की आवाज में गीत है। सोना ले जा रहे, चांदी ले जा रहे, दिल कैसे दे दूं।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया गीत चुना है आपने। फिल्म देखी थी आपने?
1: हाँ
0: फिल्म देखी थी क्या आपने?
1: हाँ देखी थी ना।
0: अच्छा
1: फिल्म विनोद खन्ना, आशा पारेख, लक्ष्मी छाया और ये विनोद खन्ना की फिल्म थी।
0: फिल्में देखने का शौक है मतलब आपको?
1: हाँ फिल्म तो मैडम देख लेते हैं, पुरानी कभी आती अच्छी तो। हाँ
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और गर्मी कैसी है अभी इस वक्त रतलाम में?
1: रतलाम में तो मैडम बहुत टेम्परेचर है, कल भी मतलब 46 था।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो ध्यान रख रहे हैं कि नहीं अभी अपना और परिवार का?
1: अरे मैडम अभी क्या है, अभी तो फिलहाल मैं खेत पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ।
0: हाँ,
1: पानी चल रहा है खेत में तो। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं आप?
1: हाँ ये मतलब कुछ शरी वरी बो रखी है अपने भैया स्वास्थ्य,
0: अच्छा
1: बस उसको पिला रहा हूँ मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए गाने भी सुनिए, ठंडक मिलेगी गर्मी के मौसम में। अगर अच्छे ठंडे ठंडे गीत हो तो बड़ा अच्छा लगता है।
1: ओके ओके, थैंक
0: चलिए,
1: यू, है ना।
0: ओके, थैंक यू जी।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार, कौन सा बात कर रहे हैं?
1: कहते हैं ना दौलत की तमन्ना है,
0: हाँ।
1: ना दौलत की तमन्ना है, ना शोहरत की आरजू, और आपसे बात हो जाए तो यही सबसे बड़ी जुफ्तजू।
0: वाह वाह वाह, क्या बात कही है, बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ शुरुआत की है आपने। अब ये बताएं कि कौन बात कर रहे हैं आप?
1: जी जी।
0: और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी जी, मैं ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान ईडन गार्डन अशोक वाटिका से मजनू दीवाना बोल रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, मजनू दीवाना जी, बिल्कुल आपकी शायरियाँ भी बिल्कुल दीवानों जैसी ही थी।
1: और आपकी भाभी जान ने फोन लगाया था पेड़ में चढ़ करके, फिर उन्होंने मुझे फोन दे दिया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप?
2: कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
2: मैडम जो आपसे बात हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज में वो जादू है कि सुनते ही रहे आप।
0: बहुत धन्यवाद धन्यवाद, दोनों हस्बैंड वाइफ पूरे शायराना अंदाज में हैं आज।
1: कहते हैं दीदी जान की दिल की लगी नहीं बुझती,
0: जी जी जी,
1: बुझती है हर चिंगारी, हर चीजों से अजीज है लगती हमको दीदी जान आपकी यारी। और ये जो है इंदौर का मैं मजनू दीवाना हूँ, ये मेरे
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बातें करते हैं आप। चलिए सबसे पहले गीत बता दीजिए।
1: हाँ, फिल्म का नाम है डॉन और उस गीत के बोल है ये मुंबई नगरिया तू देख बबुआ,
0: क्या बात है,
1: कल्पा नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ,
0: क्या बात है क्या बात है,
1: ये मुंबई नगरिया तू देख बबुआ।
0: बढ़िया, बड़ा अच्छा गाया भी आपने, बड़ा खूबसूरत गाया है। और चलिए आपकी सुर में हम भी सुर मिलाते हैं और आपको सुनवा देते हैं ये गीत,
1: जी, है ना? दिल से नमस्कार आपको,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है

0: हेलो हेलो,
1: हाँ, मैं श्रीनिवास देशपांडे बोल रहा हूँ।
0: श्रीनिवास जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनना है आज आपको?
1: हाँ, मेरे महबूब का
0: मेरे महबूब का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: याद में तेरी दाग,
0: अच्छा, याद में तेरी जाग जाग। चलिए जल्दी से पहुंचाते हैं।
1: मेरा नाम याद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ जी, मुझे जी।
1: आपका कदम में मेरा नाम आया तो आपको
0: अच्छा
1: बहुत
0: अच्छा
1: बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, आज आपका नाम भी हमने लिया है। चलिए बिल्कुल, ऐसे ही हमें पत्र डालते रहिए और गाने भी सुनते रहिए।
1: बिल्कुल
0: चलिए सुनिए आपकी पसंद
1: बिल्कुल
0: का गीत।
1: बहुत धन्यवाद।
0: हाँ जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो हेलो एमए
2: हेलो,
1: छोटलाइन।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: हेलो नमस्ते, आवाज नहीं आ रही आपकी?
1: हाँ,
2: कौन
1: मेरी
2: है?
1: आवाज आ रही है आपको?
2: आ रही, पहले
1: हाँ
2: नहीं आ
1: जी,
2: रही
1: हाँ
2: थी।
1: जी, ओके ओके। कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं आप कौन?
1: हेलो,
2: हेलो, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं विजया जैन बात कर रही हूँ।
2: अच्छा, नमस्ते, अनिल भंडारे से बोल रहा
1: हाँ
2: हूँ।
1: हाँ अनिल
2: नमस्ते।
1: भंडारी। नमस्ते जी, नमस्ते। बिल्कुल, आपका कौन सा
2: ओके,
1: गीत है
2: आप
1: आज आपका?
2: वो मेरे फैमिली का गाना बजाया था, वो जाइए कहाँ जाएंगे वो
1: अच्छा,
2: गाना
1: जाइए,
2: बजा
1: आप
2: दो।
1: कहाँ जाएंगे? ठीक है ठीक है, अनिल भंडारी जी, ठीक है। आपकी आपका स्वास्थ्य ठीक है? घर में सब मजे
2: अच्छा
1: में?
2: ठीक है, हम क्या करें, पुराने गाना सुन के अपना जीवन
1: जी, बिल्कुल
2: खुशियों
1: बिल्कुल।
2: बिताते हैं हम
1: पुराने
2: लोग।
1: गीतों की
2: जय श्री
1: मिठास
2: राम।
1: ही
2: आपका
1: इतनी है
2: कार्यक्रम,
1: कि
2: आपका
1: बिल्कुल
2: कार्यक्रम सुनते हैं
1: जी,
2: मजा आता है, पुराने गाना
1: बिल्कुल
2: सुना दो
1: बिल्कुल।
2: आप हमारे फरमाइश से
1: चलिए, तो
2: खुशी होती
1: जल्दी
2: बहुत।
1: से आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। आपका गीत मिल चुका है, आप तक पहुंचाते हैं। फोन करने के लिए
2: ठीक हो
1: धन्यवाद भंडारी जी।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव बोल रहा हूँ।
0: सूर्य प्रताप यादव जी एमपी से बात कर रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: मैम, हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जल्दी से गीत बता दीजिए अपना।
1: फिल्म का नाम है 20 साल बाद और गाने के बोले हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत है। मूवीज़ वगैरह देखने का शौक भी रखते हैं?
1: नहीं मैम, मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है।
0: अच्छा, ओके ओके ओके।
1: मैम, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा
0: हाँ जी, बिल्कुल, बोलिए बोलिए।
1: कि हमारे श्रोता जो कॉल करते हैं, अच्छी बात है,
0: हाँ,
1: लेकिन सभी श्रोताओं से मेरा एक निवेदन है कि कृपया नाम बदल कर कॉल ना करें। अभी जो फीमेल श्रोता का कॉल आया था, उन्होंने नाम बदल के कॉल किया था।
0: अच्छा। देखिए, हम तो हमेशा अनुरोध करते हैं कि जिन्होंने एक बार कॉल किया है वो थोड़ा गैप रखें, अंतराल रखें, ताकि नए श्रोता जुड़े उससे। और
1: नहीं,
0: अब
1: पहले
0: हम
1: उन्होंने वास्तविक नाम से कॉल किया था, फिर उन्होंने नाम बदल के भी कॉल किया था।
0: अच्छा
1: मैं
0: अच्छा
1: उनका नाम
0: हाँ
1: तो नहीं लूंगा, पर सभी
0: हाँ नहीं,
1: श्रोताओं से
0: ठीक है,
1: मैं,
0: अगर वो सुन रहे हैं और समझ जाए तो
1: हाँ
0: अच्छी बात है। किसी को इंसल्ट करना हमारा भी इंटेंशन नहीं है, लेकिन हम
1: बिल्कुल
0: भी
1: मैम,
0: यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नए श्रोता जुड़े, ताकि कार्यक्रम में भी विविधता आए और विविधता आने के साथ साथ सुनने में मज़ा भी आए आपको, है ना?
1: जी।
0: तो बहुत अच्छी बात है, आपका अनुरोध
1: बस
0: मुझे लगता है
1: यही
0: सबको
1: निवेदन है,
0: मानना
1: श्रोता
0: चाहिए।
1: मेरी बात को अन्यथा ना ले, मैंने तो
0: नहीं
1: केवल
0: नहीं
1: एक
0: ठीक
1: निवेदन
0: है,
1: किया
0: कोई
1: है।
0: बात नहीं, आप सबको अपनी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो चलिए, मैं जल्दी से गीत सुनवा देती हूँ, क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है।
1: जी
0: फ़ोन
1: धन्यवाद
0: करने के
1: मैम।
0: लिए धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें अपने दोस्त विजया जैन को। नमस्कार, हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। तो हमेशा जुड़े रहिए हमसे और आकाशवाणी इंदौर से। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन,
0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हमारे फ़ोन नंबर है 2660902। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ जी,
0: कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुने।
1: जी हाँ, मैं रजनी बोल रही हूँ भिंड जिले से।
0: बताएं वहाँ पर क्या हाल चाल है भिंड के।
1: बढ़िया है।
0: आज कार्यक्रम है फ़ोन करें गीत सुने, क्या सुनना चाहेंगी?
1: आप एक काम करिए, मुझे ये गीत सुना दीजिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
0: अच्छा, ये वाला गीत सुनना चाहेंगी ताकि थोड़ी सी ठंडक आपके
1: गाना सुनने में, नहाते में गाना की याद भी आ जाती है
0: जी। चलिए,
1: मतलब हमेशा का सदाबहार गीत है।
0: सदाबहार गीत है, हाँ सही बात आपने कही। चलिए,
1: तो मिल जाएगा कि फिल्म का नाम बताना पड़ेगा?
0: नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। ये सदाबहार गीत आपने पसंद किया है।

0: हेलो।
1: हेलो मैडम, सीपरी जिले के रामखेड़ी गांव से मोतीलाल परिहार बात कर रहा हूँ।
0: मोतीलाल परिहार
1: जी मैडम।
0: क्या करते हैं वहां पर? खेती किसानी?
1: जी मैडम, खेती करते हैं और आपके प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, रेडियो भी सुन लेते हैं। जी बहुत अच्छे कार्यक्रम लगते हैं आपके। जी
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: है बात आपकी, गीत हमारे फोन करे गीत सुने
0: तो
1: और।
0: आप फोन अक्सर लगाते रहते हैं क्या?
1: जी मैडम 15-20 दिन में लगाते ही रहते हैं।
0: जी
1: और मैडम बढ़िया हो आप।
0: जी सब बढ़िया है। हम
1: सावन भादो फिल्म का सुनवा दीजिए, मेरे नैना सावन भादो।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम। मैं छोटू चक्रधारी बोल रहा हूँ, करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। यहाँ
0: बिलासपुर में क्या करते हैं आप?
1: हमारा सिलाई से जुड़ा काम है, इसी में लगे रहते हैं। सिलाई
0: काहे से जुड़ा काम है?
1: सिलाई
0: सिलाई से जुड़ा काम है। आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है?
1: क्या
0: जी
1: है, घर में ना अंदर में टावर नहीं आता, इसलिए हो गया।
0: अच्छा, क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: आज
0: हाँ
1: हमको सुना दो, तलाश फिल्म का गाना,
0: कौन सा?
1: नई वाला तलाश, जिसमें आमिर खान और रानी मुखर्जी गाने
0: गाना, गाने के बोल तो बताएं।
1: बोल है। जिंदगी के सफर में ऐसे कई कुछ गाना है, पाना है क्या और खोना है क्या, जिंदगी के जुए में पाना है क्या और खोना है क्या, ऐसे टाइप था गाना।
0: पाना है क्या, खोना है क्या? चलिए ठीक है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी, मैम हम ग्राम जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं।
0: संगीता पटेल छतरपुर से।
1: जी
0: क्या हाल है छतरपुर के?
1: अच्छे हैं मैम। कभी बादल होते हैं, कभी धूप निकलती है। जी
0: तो आप छतरपुर में ही रहती हैं या आसपास किसी गांव में?
1: नहीं, छतरपुर के पास में महाराजपुर है, उसके पास में है पुर,
0: महाराजपुर के पास है पुर,
1: जी ग्रामपुर।
0: ग्रामपुर।
1: जी
0: तो
1: मैम
0: कुछ बताएं अपने गांव के बारे में, कितना बड़ा गांव है।
1: जी मैम, हमारा गांव वैसे तो गांव ही है हिसाब से, ठीक है, 3-4 हजार की आबादी है जी,
0: अच्छा,
1: और खेती किसानी होती है यहाँ पर जी।
0: बताएं क्या सुनाएंगी आज।
1: जी मैम, फिल्म का नाम तो याद नहीं मैम, और वो गाना के बोल है कि सॉरी दीदी अब ना करेंगे हम तो सॉरी।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं राजेश अग्रवाल, राजाराम नगर, देवास से। जी
0: देवास से बोल रहे हैं
1: जी
0: राजेश अग्रवाल जी। पसंद बताएं क्या सुनेंगे।
1: ये आराधना पिक्चर का गीत है, रूप रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, किशोर दा की आवाज में है।
0: चलिए सुनिए आपकी पसंद का गीत।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते
1: देवीदास कुशवाहा ग्राम पोस्ट गमवारी चला जिला टी गमवारी से।
0: कुशवाहा जी और बताएं अपने बारे में, आपके क्या हाल है?
1: आपसे बात पहली बार कार्यक्रम आपका सुनता हूँ मैं कंटिन्यू।
0: कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप लगातार?
1: मध्य प्रदेश का कार्यक्रम मैं सबसे ज्यादा सुनता हूँ, सबसे ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, अपने मन पसंद ही अपनी तरह को।
0: साफ सुनाई देता है आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश?
1: हाँ।
0: अच्छा तो चले आज हम क्या सुनवा दें आपको?
1: फिल्म का गाना सुनना है दीदी।
0: कौन सी?
1: मुस्कान फिल्म का गाना सुनवा दीजिए।
0: कौन सा?
1: मुस्कान का जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार। नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताएं अपना।
1: मैं महाशी घर सिनेमा जिला महोबा से बोल रहा हूँ। मैं
0: कौन?
1: महाशी घर सिनेमा जिला महोबा से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: अभी 6th क्लास में है। हाँ
0: कौन सी क्लास? 5th क्लास में?
1: नहीं,
0: अच्छा, बहुत छोटे हैं आप तो। फोन आपने लगाया है कि किसी और ने?
1: मेरे बाबा ने लगाया है। हाँ
0: बाबा ने लगाया है। बाबा यानी दादा?
1: पापा।
0: पापा ने लगाया है। तो आपके स्कूल की छुट्टियां लग गई?
1: हाँ लगते
0: तो रेडियो सुनते हैं आप?
1: हैं। हाँ सुन लेते हैं कभी कभी।
0: सुन लेते हैं कभी कभी। चलें तो बताएं आज क्या सुनेंगे आप।
1: वो हम साथ साथ पिक्चर का,
0: कौन सा गाना?
1: छोटे भाई होते बड़े भाई।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्ते मैडम। पिंडरी
0: नमस्ते।
1: जिला मंडला से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
0: सुमत कुमार जैन
1: जी, पिंडरी जिला मंडला जी।
0: जी, क्या करते हैं मंडला में आप?
1: मैं रिटायर्ड टीचर हूँ मैडम।
0: अच्छा, रिटायर टीचर हैं। अच्छा, कहाँ आप मंडला से ही रिटायर हुए?
1: नहीं, पिंडरी मेरा कस्बा है, छोटी बस्ती है पिंडरी,
0: अच्छा, वहाँ से हुए।
1: व्रती नगरी है पिंडरी, एन समाज की, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ मैडम।
0: तो आजकल क्या दिनचर्या है आपकी?
1: दिनचर्या बस यही है कि घर नौकर बन गया हूँ घर का।
0: नौकर बन गए
1: सब्जी लाना
0: जी।
1: और घर के घरेलू कार्य को करना। तो तनख्वाह तो घर में कोई देता नहीं है, सरकार की तनख्वाह मिलती थी। श्रीमती कहती है कि मैंने एक दिन बोला कि नौकर बना लिए यार तुम लोगों ने, तो कहती अब घर का काम नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो मैंने कहा भाई तुम तनख्वाह थोड़ी दे रहे हो।
0: और पत्नी इतने सालों से जो कर रही थी घर का काम, तो आप दे रहे थे क्या उनको तनख्वाह?
1: अरे वेतन लाके सीधा उन्हीं के हाथ में देता था
0: तो
1: मैडम।
0: वेतन कौन सा, वो अपने पे खर्चा कर रही थी है ना,
1: अरे
0: परिवार चला रही थी। ऐसे ही आप भी जो कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं उनका। आप घर का काम मिलजुल कर होता है, अच्छी बात है ना कि आप शासन से रिटायर हो गए। वो तो कभी भी रिटायर नहीं होंगी घर के कामों से, तो आपको
1: वो
0: तो
1: तो गृह
0: सहयोग
1: मंत्री
0: करना
1: है
0: चाहिए,
1: मैडम,
0: आपको समय मिला है।
1: वो तो गृह मंत्री है, जो कहेंगे तो वो करना पड़ेगा
0: करिए सहयोग,
1: जी।
0: ऐसे ही मिलजुल कर काम करने से ही तो परिवार चलता है और प्रेम
1: जी
0: बना रहता है, अपनत्व बना रहता है।
1: बहुत सुंदर।
0: बताएं क्या सुनेंगे आज?
1: रोटी फिल्म का सुना दीजिए, ये पब्लिक है सब जानती है जी। और मैं अपने छोटे कर्म अपने दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ मैडम, कि कमला प्रसाद शर्मा सर्रई वाली है, कृपाल पटेल है, मोहम्मद मोहराली है, जे लोग बहुत प्रयास करते रहते हैं लेकिन फोन नहीं
0: चलिए
1: लगता। राधे श्याम केवट है, परेशान है
0: ठीक है, सुनिए
1: ठीक है
0: सब
1: मैडम।
0: लोग ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी। चंद मान नामदेव बोल रहा है, ग्राम पोस्ट देरी जिला छतरापुर से। फोन का गीत सुना है कि
0: फोन करें, गीत
1: धनवान
0: सुने कार्यक्रम है। धनवान
1: फिल्म का सॉन्ग सुना दीजिए,
0: का कौन सा?
1: ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं।
0: चलिए सुनिए आपकी पसंद का गीत।
1: नमस्ते मैडम।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालवी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
0: इंद्रभान सिंह।
1: जी। आपका कार्यक्रम में जुड़ा मैडम, ये लाइव वाला कार्यक्रम है कि रिकॉर्डिंग वाला है?
0: ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम चल रहा है।
1: जी मैडम, अपने पसंद के गीत भी बताता हूँ। फिल्म का नाम है सनाफ सरदार और गीत के बोल भी है सनाफ सरदार टाइटल सॉन्ग।
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग। जी हाँ।

0: फोन करें, गीत सुने।
1: ये सर सारी सारी रात तेरी याद सदाए, अजी बस शुक्रिया फिल्म है सर 1958 की।
0: आप अपना नाम तो बताएं पहले।
1: मैं गोविंद जलोदिया, खाते गांव
0: से।
1: हाँ आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं छाया पाठक।
1: अच्छा, तेरी बात हो रही नहीं है।
0: सारी सारी रात
1: तेरी याद सदाए,
0: फिल्म का नाम, इसकी फिल्म का नाम बताएं आप।
1: भैया बंद कर दे जरा। हाँ बोलिए।
0: हाँ फिल्म का नाम क्या है इसका?
1: हाँ ये है मतलब अजीबत शुक्रिया।
0: अजीबत शुक्रिया ये फिल्म का नाम है?
1: हाँ 1958 में पिक्चर आई।
0: चलिए सुनिए आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ, नाम बताएं अपना।
1: मैडम, राहुल सिंह ठाकुर सुहागपुर एमपी से बोल रहे
0: सुहागपुर एमपी से। अच्छा,
1: हैं जी। चाय
0: क्या करते हैं वहाँ?
1: की दुकान है मैडम जी?
0: अच्छा, तो अभी आप दुकान पर बैठे हैं।
1: जी दुकान पे है
0: अच्छा, आपकी पसंद बताएं आज क्या सुनेंगे?
1: जी, जो है नगीना फिल्म का गाना सुन रहा मैडम जी।
0: कौन सा?
1: मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा जी। बहुत
0: अच्छा, तो
1: दिन से लगाने की कोशिश में मैडम जी, मतलब 1 साल के बाद में आज लगा फोन
0: एक साल के बाद?
1: जी। नहीं
0: नहीं, मेरी तो आपसे बात हुई है इससे पहले। अच्छा,
1: नहीं हो पाई मैडम जी, नहीं है, आज पहली बार बात हो रही, वो भी काम वालों कैसे धोखे से लग गया, हम तो ट्राई कर रहे थे दुकान
0: धोखे से लग गया।
1: जी। हाँ मतलब लगा रहे थे तो लग गया, वैसा कहने का मतलब जी।
0: चलिए, तो आप अपने
1: जी
0: ग्राहक की छोड़ के फोन लगा रहे थे, अपने ग्राहक की छोड़कर फोन लगा रहे थे, ग्राहकों की सेवा छोड़ करके। तो और कोई भी आपकी दुकान पे काम करता है साथ में?
1: नहीं, दुकान पे तो हम अकेले हैं मैडम
0: तो वहीं पर रेडियो भी सुनते हैं।
1: जी। रेडियो तो मैं बहुत दिन से सुनते हैं मैडम जी, कम से कम आज मेरे को होगा तो 20-25 साल होगा जब से सुन रहे हैं रेडियो जी।
0: चलें, सुने आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।

0: रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करेंगी सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम में उन्होंने कहा कि परीक्षण के बाद पूरे विश्व ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति के अंतर्गत प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निवेशकों और उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में 18 मई से 5 जून तक ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम होंगे। इनमें 5वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इनमें भोपाल में किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन आम सभा संबंधी कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को देना आवश्यक होगा। भोपाल में सिटी बसों के लिए 26 नए रूट तय किए गए हैं। सबसे लंबा रूट 68.5 किलोमीटर का सीहोर से रातापानी का तय किया गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर-17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त जावेद खान। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डिस्को डांसर फिल्म का एक गीत। अनजान ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने को पसंद किया है। उपाध्याय नगर देवास से लिखने वाले हैं मुरली लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, मधु महाराज, राकेश अग्रवाल। सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी। रूपक हेड़ी देवास से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल निरंजन माली और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। गंगोड़ी जिला उज्जैन से लिखने वाले हैं गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम, दशरथ मालगाम और लोकेंद्र वर्मा। इसी गाने को पसंद किया है जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बब्बू वर्मा, कालू वर्मा और उनके कालू भैया और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। और ये खत आया है, कहाँ से आया है, इसमें इन्होंने लिखा सिंहपुर बाड़ा से लिखा है राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने ये गाना सुनना चाहा है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शांति नगर उज्जैन से लिखने वाले हैं असलम खान दुलावत, शबीना दुलावत, फिरदौस पलक, अफशां और आयान दुलावत और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस गाने को सुनना चाहे। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने किशोर कुमार की आवाज में। गाने को पसंद करने वाले हैं नाज मंजिल मेहोल सीतामढ़ी बिहार से। लिखने वाले हैं अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम रुबीना वसीम आरिज वसीम अरहान बाबू हमजा बाबू मुजम्मिल बाबू हुमेरा सुमेरा अबीहा शाहीन नाज नूरी नाज बच्चू शेख और चीना शेख। इसी गाने को पसंद किया है कोकिलवारा से ओराई ज़िला मुजफ्फरनगर से। लिखने वाले हैं मोहम्मद फैसल शेख नुसरत जहां नाज शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शाहनवाज परवेज़ मसरत जहां नाज और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है विद्यानगर तेंदुखेड़ा ज़िला दमोह से। लिखने वाले हैं ओम प्रकाश नेमा किरण नेमा आकाश नेमा विकास नंदिनी शिवाश और समस्त नेमा परिवार। सुनते हैं ये गाना, आवाज़ किशोर कुमार की है, फिल्म का नाम है परिचय। गुलजार ने इस गाने को लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म आरजू से, आवाज मोहम्मद रफी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है। इस गाने को पसंद किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से लिखने वाले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, पटेल नगर मलोड पंजाब से लिखने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गायकवाड़ राहे, सरिता गायकवाड़, सिद्धांत गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़ सुखी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से लिखने वाले हैं शैलेश गायकवाड़, वैशाली श्वेता सुमित गायकवाड़, कुमारी ध्वनि गायकवाड़ परी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नमक हलाल से, आवाज़ आशा भोसले की है, अनजान ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है औरंगाबाद से, लिखने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर से, लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राव, उषा राव, अमित कुमार राव, हैप्पी राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से लिखने वाले हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ये खत आया है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं रामचंद माखीजा काफिर, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत।

अगले गाना लिया है हमने फिल्म जानवर से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जय किशन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से, लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के सदस्य। अगला गाना इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छोटी बलिया करजन मुंबई से, लिखने वाले हैं अहमद भाई फूल वाले, इकबाल भाई फूल वाले, नूरेशा बेगम फूल वाले और कॉपस हैदा नई दिल्ली से, लिखने वाले हैं नसरीन आज़ाद, आमना असमा परी और इमरान अहमद और दूसरे साथी। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गांधी बाग अकोला से, लिखने वाले हैं रमेश काटनकर, वैशाली काटनकर, सरोज चौक अमरावती से, लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा बेगम, हादिया खान, असमा सालिया और शोएब खान। सुनते हैं ये गाना।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म जावाज से, आवाज़ें हैं मनहर उदास और साधना सरकम की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है पटेल नगर मलोट से, लिखने वाले हैं रमेश कुमार जाजोरिया और ये पाकिस्तान रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से लिखने वाले मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गुड़, मोहम्मद शादाब खत्री और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। ये खत आया है, इसमें लिखाई थोड़ी साफ नहीं है, जितने नाम मुझे समझ में आ रहे हैं, अनिल, नेहा, सीमा, सबीहा, फजल, सुषमा और बाकी के नाम मुझे इसमें समझ में पढ़ने में मुश्किल हो रही है। तो ये पत्र आया है गुमाश्ता नगर स्कीम 71 से। तो आपसे निवेदन है कि अगली बार जब भी आप खत लिखें तो थोड़ा संभल कर शब्दों को थोड़ा ऐसा लिखें कि हमें पढ़ने में आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, सुनिए।

0: मालवा की शान।
1: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत,
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: बड़े अच्छे लगते हैं
6: क्या
5: ये धरती ये नदिया ये रहना
6: और
7: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
9: इस समय आप हैं हमारे साथ।
10: जी हाँ मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ। मालवा की शान
9: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत।
10: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
11: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: प्रेमचंद की लिखी कहानी जादूगर को सलाम की 13वीं कड़ी।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को।

0: श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 13वीं यानी अंतिम कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आत्मा राम का नाट्य रूपांतरण। वैदिक ग्राम में महादेव सुनार एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। सुबह से शाम तक वो अपनी अंगीठी के सामने बैठा खटखट किया करता। आस पड़ोस के लोग इस आवाज के अभ्यस्त हो चुके थे। महादेव के परिवार में पुत्र, बहुएं, पौत्र सभी लोग थे, परंतु उसका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। ऐसा उसके व्यावसायिक जीवन के बारे में भी कहा जा सकता है। वो भी तनावग्रस्त ही था। काम तो सबसे खरा करता था, फिर भी आए दिन लोगों की खरी खोटी सुनता था। ले देकर उसका अगर कोई था तो वो था एक तोता। उससे वो बड़ा ही प्रेम करता था। प्रतिदिन प्रातःकाल वो उसका पिंजरा लेकर तालाब की ओर निकल पड़ता था।
1: अजी उठो जी, भोर हो गई है। अरे उठो, महादेव सुनार का तालाब की ओर जाने का समय हो गया है।
2: अरे भगवान, अंधेरे में इसका जर्जर शरीर और पोपले मुंह को क्यों दिखाना चाहती है? ऐसा लगता है पिशाच राज के दर्शन हो गए। सारा दिन खटपट और सुबह को ये सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता।
1: इतना बेईमान है ना, हर गहने में अपना टांका रखता है।
3: पता नहीं अब किस मोह माया में अटका है।
4: सतगुरु दत्त शिव दत्त दादा।
5: माँ माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो।
1: मार कर टांगे तोड़ दूंगी, चल हट। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का।
5: माँ बहुत भूख लगी है, दूध ही दे दो।
1: ठहर जा, मेरे दो हाथ हैं, हाथ पांव मत फुला मेरे, चुपचाप खड़ा रहे यहीं पर।
2: अरे सुनती हो, मेरा गमछा कहाँ है?
1: तुम्हें कोई चीज मिली है आज तक? जो मिलेगी वही सूख रहा है रस्सी पर।
4: सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता। अरे बहू, ओ बहू, अरे चाय बन गई क्या?
6: बाऊजी अभी देर लगेगी।
1: अब बच्चों को कुछ खाने को दूं या इनकी चाय बनाऊं? इन्हें भी सुबह से खाने पीने के सिवाय कुछ नहीं सोचता।
4: चलो ठीक है, जब तुम्हें फुर्सत हो तो दुकान पर ही कुछ खाने को भेज देना।
7: महादेव जी, परसों अपनी औरत के कान का बुंदा ठीक होने के लिए दिया था, हो गया क्या?
4: हाँ हाँ हो गया भाई, यहीं तो रखा था। ये लो।
7: वजन तो बराबर है ना?
4: अरे बिल्कुल बराबर है। लो सामने है, देख लो, तुम्हारी ही आंखों में फेर है।
7: मेरी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो तुम्हारे पास आया। लो अपने पैसे।
4: सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता। अरे बहू, अरे बहू, चाय नहीं बनी अभी तक? कैसी बहुएं हैं, सुबह के समय ससुर को एक प्याला चाय भी नसीब नहीं है। अरे गलती इनकी नहीं है, अरे मेरे बेटे ही इनके गुलाम हैं, उन्होंने ही इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। ये हालत तो जब है जब मैं ही कमा कर देता हूं। निकम्मी औलाद, कुछ कमाते थमाते है नहीं, और रात को दो छटाक पीकर चैन भी नसीब नहीं होने देते। सारा दिन मेरे सिर पर नाचती है, उन्हें अलग संभालो।
2: हाँ जी बाबू, महादेव जी, मेरी अंगूठी तैयार हो गई।
4: भाई तुम्हारी पुरानी अंगूठी को गला कर तुम्हारे हिसाब से तैयार करने में बहुत मेहनत लगी। ये लो देखो।
2: ये क्या किया? इससे तो मेरी पुरानी अंगूठी अच्छी थी।
4: तो

0: सारे तोते, एक तू ही मेरा है सतगुरु दत्त शिव दत्ता।
1: हर हर महादेव। क्या हाल है बच्चा?
0: घोर कलयुग है, घोर कलयुग है महाराज। आओ बैठो। अच्छा। अरे चुन्नू, ओ चुन्नू, अरे कोई है क्या? देखो साधु बाबा बैठे हैं ड्योढ़ी पर। अरे कुछ खाने को भेज दो, सुबह से शाम हो गई। एक प्याला चाय बस तालाब पर पंडित जी के साथ पी थी, पूरा दिन गुजर गया।
2: ये लो पकड़ो, घर में एक काम है, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, लत्ते धो, औलाद संभालो, सब धंधे पे लो और इनकी चेचे भी सुनो।
0: ए दाता, ये तूने क्या घृणित जीवन दिया है। वक्त पर अन्न तो जानवर का भी हक है, इतना करता हूं इनके लिए, ये सब क्या मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा? लानत है ऐसे भोजन पर, मेरी गैरत मुझे धिक्कार रही है, नहीं करना मुझे भोजन। लो बेटा मिट्टू, मेरे प्यारे तोते, तुम तो हरी हरी मिर्च खाओ, पानी, हाँ लो पानी भी डाल देता हूँ, लो पी लो।
3: महादेव जी, इतनी रात गए यहाँ घर के बाहर बैठे हैं, ठंड बहुत है, अंदर चले जाओ।
0: अरे घर की कलेशों से तो मैं और मेरा मिट्ठू बाहर ही भले। सतगुरु दत्त शिव दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्ता। राम राम राम राम राम, जय सिया राम जय सिया राम, सतगुरु दत्त शिव दत्ता। चलो भाई मिट्ठू को उठाता हूँ। अरे भाई मिट्ठू, भोर हो गई। मिट्ठू मिट्ठू, अरे पिंजरा खुला है, मिट्ठू कहाँ उड़ गया? मिट्ठू मिट्ठू, मेरा मिट्ठू, मिट्ठू बेटा, मिट्ठू बेटा, कहाँ चला गया मिट्ठू? क्या करूं, किससे पूछूं? यहां तो कोई दिखता भी नहीं। हे भगवान, ये किसकी बदमाशी है? मेरा मिट्ठू, अरे अरे बहू बहू, अरे मोहन, चुन्नू। सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ना जाने कहां छुप गया, ना जाने कहां छुप गया। सतगुरु सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, शिव दत्त दाता। अरे वो रहा, हाँ वो रहा, अरे अब तो आजा मेरे मिट्ठू, आजा आजा आजा आजा बेटा आजा। अरे कहाँ जाके बैठा है? अरे पेड़ पर मत बैठ, आजा आजा आजा आजा आजा, आजा पिंजरे में आजा, आजा आजा आजा। अब पकड़ लूँगा, पकड़ लूँगा इसे। अरे अरे ये तो फिर उड़ गया। सतगुरु दत्त शिव दत्ता।
4: अरे देखो तो महादेव को, इस बुढ़ापे में तोते से कितना मोह लगाए बैठा है। अरे तोता है, उड़ गया तो उड़ गया।
5: अरे बुढ़ाऊ, ये तोता नहीं, उसकी आत्मा है। अरे जन्म मरण का साथी है, देखते नहीं उसकी क्या हालत है?
6: जन्म मरण का साथी, देखते नहीं उसकी क्या हालत है? घर में इतने नाती पोते, बेटे, बहुएं होते हुए भी ना समय पर खाना है ना चैन की।
7: खेतों से फुर्सत मिल गई जो महादेव का किस्सा लेकर बैठे हो, भागो यहाँ से, क्या चिल्लपो मचा रखी है।
0: सुबह से दोपहर हो गई लेकिन ये मिट्ठू पकड़ में नहीं आया। अरे मेरे बेटे, अरे मेरे मिट्ठू, अब तो आ जा। ओ शिव दत्त, आ जा। क्यों भैया, ये आम के पेड़ की फुनगी पर बैठे क्या बतिया रहे हो?

0: आजा आजा मेरे भाई, पिंजरा खाली है। अरे अरे उड़ क्यों रहा है? अरे मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना, मुझे नहीं पहचानते क्या? अच्छा लो, मैं एक काम करता हूं, मैं पेड़ की ओट में आ जाता हूं। हाँ, हाँ, मैं पेड़ की ओट में आ जाता हूं, तुम चुपके से पिंजड़े में आ जाना। हाँ, लो मैं पेड़ की ओट में आ गया। ओ शिव दत्ता, सुबह से ये समय आ गया, अरे ना खाने का ना पीने का, तलवों से आग निकल रही है और सिर में चक्कर पर चक्कर आ रहे हैं। सतगुरु दत्त शिव दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्ता। मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़। ये तो फिर उड़ गया, उड़ गया।
1: शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता तो कभी पिंजरे के द्वार पर आ बैठता, अपनी दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। चारों ओर घोर अंधेरा छा गया। तोता ना जाने पत्तों में कहां छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना ही पिंजरे में ही आ सकता है। फिर भी वो उस जगह से हिलने का नाम नहीं लेता था। तोता ही वो प्राणी था जो महादेव को चेतन रखता था। उसका हाथ से निकलना मानो जीवन ही लुप्त हो गया हो। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा थका मांदा बीच बीच में झपकियां ले लेता था और क्षण भर में चौंक कर आंखें खोल देता, और इस गहन अंधकार में महादेव की ध्वनि सुनाई देती, सतगुरुदत्त शिव दत्त दाता। आधी रात गुजरी कि अचानक एक आहट हुई। देखा दूर वृक्ष के नीचे एक धुंधला सा दीपक जल रहा है। देखा कई आदमी बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और चिलम पी रहे हैं। तंबाकू की महक ने उसे उत्तेजित कर दिया और वो ऊंची ध्वनि में बोला, सदगुरु दाता शिव दत्त दाता। उसकी आवाज ने इस गहन सन्नाटे में बंदूक की गोली जैसी आहट का काम किया। सारे चिलमबाज भाग खड़े हुए।
0: ये कौन है, इतनी रात गए? अब ठहरो, ठहरो। अरे लगता है ये सब चोर हैं। अरे चोर, अरे चोर, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। ये दीपक जल रहा है यहीं पर तो ये। अरे ये कलसा कैसा रखा है? अरे अरे ये तो अशर्फियां, अशर्फियां। क्या करूं? एक काम करता हूं, पहले ये दीपक बुझा दूं, कलसा उठाता हूं। बहुत भारी है। अब इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूं। कहीं चोर वापस आ गए और मुझसे मोहरे छीन ली तो? नहीं नहीं नहीं नहीं, क्या करूं मैं? हाँ ऐसा करता हूं, गड्ढा खोद कर इन मोहरों को यहां दबा देता हूं। हाँ, और कुछ कुछ अपने साथ कमर में बांध लेता हूं। इन मोहरों से अब पक्का मकान बनवाऊंगा, सर्राफे की एक बड़ी सी दुकान खोलूंगा। सब रिश्तेदार मेरे तलवे चाटेंगे। नहीं नहीं नहीं, तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। हाँ, तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा, ब्रह्म भोज करवाऊंगा, शिवालय और कुआं भी बनवाऊंगा। हाँ, अरे पर लोग तो सुधार लू कम से कम। रोज कथा सुनूंगा और किसी भी साधु संत को अपने दर से भूखा नहीं जाने दूंगा। लेकिन लेकिन कहीं चोर आ गए तो मैं भागूंगा कैसे?

0: कैसी कल्पना कर रहा था मैं। अरे ओहापो में सुबह हो गई। अरे मिट्ठू कहाँ है? सतगुरु शिव दत्ताता, सतगुरु शिव दत्ताता, राम के चरण में चित्त लागा, राम के चरण में चित्त लागा। अरे अरे मिट्ठू, अरे मेरे तोते, आओ आओ आओ आत्मा राम। तुमने कष्ट तो बहुत दिया, राम के चरण में चित्त लगा। मिट्ठू मिट्ठू, हमारे दिन बदल गए बेटा, अब तेरा पिंजरा सोने का बनवाऊंगा। सोने का बनवाऊंगा तेरा पिंजरा। चलो घर चलते हैं। इस कलसे को नांद में छिपाकर कोयले से ढक देता हूं और कोठरी में रख देता हूं। हाँ, सुबह सबसे पहले अब मैं पुरोहित से मिलूंगा। हाँ हाँ, ये ठीक है।
1: अरे पुरोहित जी, पुरोहित जी,
2: कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। अरे जजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता।
1: अरे पाए लागन पंडित जी।
2: अरे ये मंगल मूर्ति कहाँ से यहाँ पहुँची? क्या है जी, क्या बात है, क्या कहते हो? अरे जानते नहीं है, सब आए हम पूजा कर रहे हैं।
1: महाराज, आज मेरे घर पर सत्यनारायण की कथा है।
2: महादेव, महादेव के द्वार कथा है? ये तो बढ़िया साधारण घटना है। अरे ये तो उतनी ही विश्वसनीय है जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकलना। आज क्या है
1: जी? कुछ नहीं पुरोहित जी, बस यूं ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, सुनो, महादेव सुनार के घर आज सत्यनारायण भगवान की कथा है। सभी आमंत्रित हैं, कथा के बाद भोजन की भी व्यवस्था है। सुनो सुनो सुनो गांव वालों, सुनो,
4: अरे सुनार के घर, महादेव के घर सत्यनारायण की कथा और ऊपर से भोज।
5: अरे पूरे गांव को बुलाया है
6: भाई, आज रेत में दूब कैसे उगी?
5: ये तो वही बात हो गई कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल रहा है।
1: भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी है, कितने खरे का खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मेरे मुंह की कालिक को मिटाना चाहता है। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूं कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा पूंजी मैंने मार ली हो, जिसके खरे माल को खोटा कर दिया हो, वो आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहां ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से एक महीने तक जब भी जी चाहे आप आए और अपना हिस्सा चुकता कर ले, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं।
5: हम कहते नहीं थे
4: भैया, क्या खाकर मरेगा, कहां से चुकता करेगा, हजारों का जोड़ बन जाएगा।
7: अरे महादेव जी, जो जीते हैं उनका तो समझ में आता है, लेकिन जो परलोक सिधार गए उनकी वसूली कौन करेगा?
1: अरे उनके घर वाले तो होंगे ना।
5: अरे भाई, गड़े मुर्दे क्या उखाड़ना, बीत गई सो बात गई, अब किसे याद है क्या क्या वसूलना।
4: अरे भैया, सत्यनारायण की पूजा अर्चना और भोग चल रहा है, यही क्या कम है? महादेव, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनवाने के लिए तुम्हें सोना दिया था?
1: हाँ।
4: और तुमने कई माशे तोल में उड़ा दिए थे, याद है या नहीं?
0: हाँ पुरोहित जी, अच्छी तरह से याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा?
4: यही कोई 50 रुपए।
0: तो ये लीजिए 2 मोहरे।
5: ये तो सरासर बेईमानी हुई, बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा।
4: बेचारे से पैसे ऐंठ लिए,
5: पूरे ठग ठग। हाँ जी, नाम के ही पंडित जी हैं, नारायण का भी डर नहीं, नियत ऐसी खराब। राम राम राम राम राम।
0: मालूम होता है आप सभी लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके बाद तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरा उद्धार करें, मेरा उद्धार करें।
5: देव जी ने यार उद्धार करें। सोचने वाली बात है।
8: माता बंधु त्रिविनाशे पूर्णमदा रावे त्वाहादि अभयवदा।
9: 1 माह बीत गया, लेनदारी के नाम पर महादेव से मिलने कोई नहीं आया। महादेव को चोरों के भय से रात को नींद नहीं आती थी, अब वो कोई काम नहीं करता था। रहा सहा नशे का चस्का भी जाता रहा। उसके द्वार पर जो भी साधु भोगी आते, उनके सत्कार में महादेव का दिन गुजरने लगा। दूर दूर तक आसपास के गांवों में महादेव की कीर्ति फैलने लगी। 1 माह बीत गया, एक भी आदमी इस एक काम में हिसाब करने या लेने नहीं आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। आप वेदी ग्राम जाइए तो दूर से ही एक सुनहरा कलश दिखाई देता है। वो ठाकुर द्वारे का कलश है, उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। तालाब की मछलियां कोई नहीं पकड़ता। समीप ही किनारे पर एक विशाल समाधि है। समाधि पर आत्मा राम का स्मृति चिन्ह है। उसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कोई कहता वो रत्न जड़ित पिंजरा स्वर्ग को चला गया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे से आवाज आती है।
0: सतगुरु दत्त शिव दत्ताता, सतगुरु दत्त शिव दत्ताता, सतगुरु दत्त।
9: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जादूगर को सलाम की 13वीं यानी अंतिम कड़ी। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कड़, अशोक शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय और मोइन शमसी। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की 13वीं कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
3: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम में उन्होंने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरे विश्व ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश के 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835,67,00,000 रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। 3 मई को ही नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है। अब पुनः परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा, ना ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। प्रदेश भर में गर्मी का कहर जारी है। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने आज इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम सहित 12 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। यह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। एक बज चुके हैं, लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।
1: सखियों, हम फिर से हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा के साथ। इस समय मैं धम्ममित्रा आपके साथ हूँ। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। सखियों, शुरू हो चुकी हैं बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ। बच्चों की ही क्यों, हमारी भी। रोज रोज का एक सा रूटीन, सुबह सुबह टिफिन बनाना, बॉटल, स्कूल ड्रेस की तैयारी से कुछ दिन की राहत। मुझे लगता है यही बेस्ट टाइम है वो काम करने का जिन्हें आप काफ़ी समय से प्लान कर रही थी और हो नहीं पा रहे थे। ये जो कुछ समय मिला है बच्चों के साथ साथ आपको भी, उसे आप बेहतर यूज़ करें और बनाएं यादगार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। सखियों, टूर प्लान करें, कैंपिंग करें पूरी प्लानिंग के साथ। दूरबीन साथ लेकर जाएं, प्रकृति के बीच पेड़ पौधे, तरह तरह के पक्षियों को देखें, उनकी आवाज़ को सुने, पहचाने, महसूस करें। पेड़ पौधों को पहचान कर बच्चों को बताएं। सखियों, प्रकृति के साथ बिताए पल हमें प्रकृति से जोड़े रखते हैं। इस दौरान बस ये याद रखें कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, ना पेड़ पौधों को तोड़ें, ना ही उन पर कुछ लिखें। सखियों, कहीं दूर नहीं जाना है तो एक शॉर्ट रोड ट्रिप ही प्लान करें। सब साथ में हो, स्नैक्स हो, म्यूजिक हो और बाहर सुंदर नज़ारे। सखियों, ये आपस में जुड़ाव का एक बेहतर तरीका है। पिकनिक भी प्लान कर सकते हैं, दोस्तों को भी शामिल करें उसमें। सच मानिए, जितने लोग उतना मज़ा। सखियों, बच्चों को प्लानिंग के साथ साथ तैयारी में भी शामिल करें। ऐसा करने से उनमें एक जिम्मेदारी का भाव भी जागता है। सखियों, जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं खुशी तो उसी में मिलती है, इसलिए कुछ क्रिएटिव करें, वो भी अपने मन का। सखियों, कुछ भी कह लो पर बच्चों को छुट्टी का असली मज़ा तो दादा दादी या फिर नाना नानी के साथ बिताए पलों में ही मिलता है। उनका प्यार दुलार, दादी नानी के हाथ के स्वादिष्ट व्यंजन, उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, किस्से कहानियाँ हमारे जीवन में अपार खुशियाँ भर देते हैं। सच कहूँ तो ये पल दुर्लभ और अनमोल होते हैं। क्यों ना इन छुट्टियों में इन पलों को संजो लें और यादगार बना लें।

0: सखियों, महिला सुरक्षा आज के समय में बहुत संवेदनशील विषय है। अपने रोजमर्रा के जीवन में सभी महिलाएं सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का सामना करती हैं। इसी संदर्भ में हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंटवार्ता, महिला सुरक्षा चुनौतियां और सावधानियां। इस भेंटवार्ता में एएसपी ग्वालियर विदिता डागर से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम के इस भाग में, जहां आज हमारा विषय है महिला सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा समाज की प्रगति का मूल आधार है, क्योंकि सुरक्षित नारी ही परिवार, समुदाय और राष्ट्र को भी मजबूत बनाती है। कार्यक्रम में इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईपीएस विदिता जी, जो ग्वालियर जिले में एएसपी के पद पर कार्यरत है। उनके बेटी के पेटी जैसे अनूठे प्रयोगों से प्रेरित होकर ये साक्षात्कार ग्वालियर जिले में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों, रणनीतियों और जागरूकता पर केंद्रित है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहला सवाल, हमारा जो शहर है ग्वालियर, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में वर्तमान में क्या चुनौतियाँ हैं और इसको लेकर आपके विभाग की क्या रणनीतियाँ हैं?
2: देखिए, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, बट यदि हम आज की इस युग की बात करें, जिसे हम डिजिटल युग कहते हैं, जहां पर सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन साथ ही विडंबना ये भी है कि शायद जो काम की चीज़ें हैं वो जनता तक, महिलाओं तक खासकर नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे युग में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अवेयरनेस की है। अवेयरनेस इन रिलेशन टू व्हाट लॉज आर देयर रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी, कैसे महिलाएं किसी भी स्थिति में किस व्यक्ति को कांटेक्ट करें, किस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करें, और यदि वो नहीं कर पा रही हैं तो अपने लेवल पर वो किसी भी सिचुएशन से कैसे डील कर सकती हैं। आई फील कि दैट इज़ द बिगेस्ट लैकुना जो आज के समय में किसी भी शहर में है। यदि हम मेट्रो सिटीज़ की भी बात करें, यदि हम टायर टू टायर थ्री सिटीज़ की भी बात करें, तो ये चैलेंज आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है। और यदि हम पुलिस विभाग के प्रयोगों की बात करें, हमारे कार्यक्रमों की बात करें, तो आई वुड लाइक टू टेल कि एक जो हमारी स्पेशल ब्रांच रहती है कम्युनिटी पुलिसिंग की, उसमें फोकस जो हमारा रहता है, पुलिस विभाग का रहता है, वो इन्हीं चीज़ों पर रहता है कि हम कम्युनिटी के अलग अलग वर्गों के बीच में जाएं। साथ ही जो महिला सुरक्षा विंग है उसका फोकस स्पेसिफिकली विमेन और जितनी भी हमारी बालिकाएँ हैं, बच्चियाँ हैं, स्कूल्स कॉलेजेस जाने वाली बच्चियाँ हैं, उन पर रहता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग और जो हमारा क्राइम अगेंस्ट वेमेन विंग है, वो दोनों बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, समय समय पर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, मुस्कान अभियान चलाया जाता है, साथ ही मैं हूँ अभिमन्यु अभियान चलाया जाता है, साइबर स्पेस की सुरक्षा को लेकर, कैसे खुद को साइबर वर्ल्ड में सुरक्षित रखें उसको लेकर अभियान चलाए जाते हैं। तो समय समय पर पीएचक्यू लेवल से भी अभियान चलाए जाते हैं, जिला स्तर पर हम लोग भी हमारे जिले की क्या समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग अभियान चलाते हैं। जैसा अभी आपने बताया, बेटी की पेटी भी हमारा एक ऐसा ही अभियान था, जिसमें हम स्कूल्स, कॉलेजेस और ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर महिलाओं, बच्चियों का ज़्यादा आना जाना रहता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर जहाँ पर बहुत सारी कोचिंग्स का क्लस्टर है, वहाँ पर हम एक बेटी की पेटी लगाते हैं, जिसमें जो भी बच्चियाँ हैं, महिलाएँ खासकर, वो अपनी शिकायतें लिखकर डाल सकती हैं। क्योंकि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि एक हिचक रहती है पुलिस तक जाने में, कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा डर भी रहता है कि हमारी बात को कितना सीरियसली लिया जाएगा, क्या हमारी बात सुनी जाएगी, क्या हमें जज तो नहीं किया जाएगा। तो इन सब परिस्थितियों से डील करने के लिए हमारे द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था, जिसमें आप अपनी एनोनिमस शिकायतें भी डाल सकते हैं, और नियमित समय पर इन पेटियों को पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा ही खोला जाता है और उन पर फिर कार्यवाही की जाती है।
1: बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये आपके विभाग का। ये अवेयरनेस की बात आप अभी कर रहे थे, सोशल मीडिया एक टूल है आज के समय में, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए?
2: सबसे पहले तो वेन एवर वी गो टू स्कूल्स और कॉलेजेस, तो हम सभी को यही बताते हैं कि सोशल मीडिया बुरी चीज नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज इट एंड हाउ मच वी यूज इट। बहुत बारी जैसे यदि हम पढ़ाई की ही बात करें, तो इतनी सारी कोचिंग्स ऑनलाइन हैं, इतने सारे ट्यूटर्स ऑनलाइन हैं कि जो टायर थ्री सिटीज़ हैं, जो बहुत छोटी छोटी शहर हैं, वहाँ पर भी बच्चे पढ़ने के लिए जब यूट्यूब का, इंटरनेट का यूज़ करने लगते हैं, तो दे सरपास देयर ओन एक्सपेक्टेशंस, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उसी तरीके से यदि हम पॉजिटिवली सोशल मीडिया को यूज़ करने लगें, थोड़ा सा हम केयरफुली अपना माइंड अप्लाई करते हुए यूज करें तो इट कैन बी अ वेरी गुड टूल फॉर आर ओन डेवलपमेंट। साथ ही सोशल मीडिया का यूज़ पुलिस कैसे करती है, यदि इस बारे में हम बात करें तो आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, चाहे स्कूल गोइंग बच्चे हों, कॉलेज वाले बच्चे हों या फिर हाउसवाइफ्स हों, सबके पास मोबाइल है और सबकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, सब यूट्यूब पर हैं, सब फेसबुक पर हैं, सब इंस्टाग्राम्स पर हैं। तो ऐसे में पुलिस के द्वारा जो हमारे पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स रहते हैं, समय समय पर हम उसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ डालते हैं, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और रील्स के माध्यम से भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, छोटी सी वीडियोस बनाकर भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर की जाती है। जैसे अभी नए कानून आए हैं, आईपीसी सीआरपीसी को रिप्लेस किया गया है बीएनएस और बीएनएसएस के द्वारा, तो क्या चेंजेस आए हैं, क्या विक्टिम सेंट्रिक प्रोविजंस आए हैं, महिलाओं के लिए ऐसी और क्या नई चीज़ें आई हैं, तो उन सब के बारे में भी छोटे छोटे फोटोज वीडियोज पोस्टर्स बना के इन पर डाले जाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो यदि हम अपने इन छोटे से प्रयासों के माध्यम से थोड़े से जनता को भी यदि हम अवेयर कर पाए तो आई थिंक इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, माइंडफुल यूज सोशल मीडिया का एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। विदिता जी, अगला प्रश्न मैं करना चाहूंगी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विषय में, जो सुरक्षा का संकट है वो वहां पर भी होता है इक्वली, इसको लेकर पंचायत स्तर पर कोई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं क्या?
2: ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं शासन की तरफ से, अलग अलग विभागों की तरफ से, वो शहरी क्षेत्र तक ही लिमिट हो जाते हैं। इस बारे में जो हमारा सोचना है वो ये है कि समस्याएं तो महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भी आती हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा समस्याएं आती हैं, क्योंकि अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो शहरी क्षेत्रों से बहुत कम है। तो ऐसे में हमारे द्वारा लगातार जन संवाद किया जाता है, जहां पर हमारे थाना प्रभारी, हमारी महिला पुलिस अधिकारी समय समय पर किसी ना किसी गांव में जाती हैं, वहां पर जन संवाद का आयोजन करती हैं, जिसमें हम पंचायत के सदस्यों से आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर महिलाएं, बच्चियां, बच्चे सभी आए और उनसे ये जो निरंतर समय पर, निरंतर अंतराल पर जो ये संवाद रहते हैं, उसमें हम उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। उनसे ये पूछा जाता है कि क्या वो अभी किसी ऐसी समस्या को फेस कर रही हैं, क्या ऐसे कोई गुंडे बदमाश हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं आसपास, क्या कोई अवैध शराब का कारोबार चल रहा है जिससे वो या उनके परिवार वाले पीड़ित हैं। साथ ही जो पुलिस के द्वारा अभियान चलाए जाते हैं उनके बारे में भी उन्हें जानकारी देते हैं, जो नए नए प्रावधान आते हैं ऐसे जन संवाद में हम उनकी जानकारी भी उन्हें देते हैं। तो ये बिल्कुल पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, ग्रामीण अंचल में जाके, जो भी हमारे गाँव रहते हैं उनकी पंचायत में जाके हमारे द्वारा ये कार्यक्रम किए जाते हैं, और इसके जरिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बिल्कुल आखिरी उस व्यक्ति तक, आखिरी उस महिला तक पहुंच सकें जिसको पुलिस स्टेशन के नाम सुनकर ही जिसे डर लगता है, जो शायद कभी आए भी नहीं होंगे, जिन्हें शायद कभी जरूरत भी नहीं पड़ी होगी और शायद वो कभी अपने जीवन काल में आएंगे भी नहीं पुलिस थाने, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो दूर दराज क्षेत्र में निवासरत है।
1: विदिता जी, मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको पता है एक हेल्पलाइन नंबर है, सब उसको जानते हैं, लेकिन जब कभी व्यवहारिक जीवन में ऐसा महसूस होता है कि कोई इस तरह का संकट है तो आप ये भूल ही जाते हैं कि कहीं आपने सेव किया है वो हेल्पलाइन नंबर और प्रेस करना है उसको। मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियों में हमें हमारी युवतियों को या जो भी महिलाएं हैं समाज में, प्रशिक्षण और सेल्फ डिफेंस का कोई प्रोग्राम जो उनको सिखाया जाए तो वो चीजें शायद ज्यादा काम आएंगी। ऐसा कोई सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम या प्रशिक्षण की योजना है आपके विभाग में?
2: पुलिस विभाग का पीएचक्यू स्तर से एक सृजन कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम एनजीओज के साथ टाई अप करते हैं और फिर ये एनजीओज अलग अलग क्षेत्र में जाकर ऐसी कम्युनिटीज को चुनते हैं जहां पर स्कूल नहीं भेजा जाता है बच्चों को, जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पर शासन के कार्यक्रमों के प्रति या फिर पुलिस के कार्यक्रमों के प्रति कोई भी अवेयरनेस नहीं है। अभी हाल ही में हमारे द्वारा माधोगंज क्षेत्र में एक एनजीओ के साथ मिलकर एक ऐसा ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हम ऐसे बच्चों को जिनको स्कूल में होना चाहिए, उन बच्चों की हम 15-20 दिन की क्लासेस लेते हैं, जिसमें हम उनको आउटडोर क्लासेस भी लेते हैं, इंडोर क्लासेस भी लेते हैं। आउटडोर क्लासेस में उनको थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, इंडोर क्लासेस में उनको थोड़ा बहुत जो भी हमारे नए लॉज हैं उनकी जानकारी दी जाती है, और अलग अलग विषयों पर भी उनकी क्लासेस ली जाती हैं। तो ये ऐसे कार्यक्रम सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सभी जिलों में हो रहे हैं और निरंतर अंतराल पर हो रहे हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़ को चुनकर इसमें भागीदार बनाया जाता है।
1: अच्छा, लॉज तो विदिता जी पहले से बहुत ज़्यादा हैं ही, हमारे पास एनफ है। इम्प्लीकेशन को लेके आपको भी लगता है सशक्त होना चाहिए हमारे सिस्टम को?
2: लॉज हमारे पास है, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है, बट आई फील कि लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण बहुत बारी हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ जो घटना हुई है क्या वो अपराध है, क्या वो अपराध की श्रेणी में आ रहा है। जैसे स्टॉकिंग की यदि बात करें, तो यदि हम आज के बच्चों से पूछेंगे कि कितनी लड़कियों को अवांछित मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, हम अपना इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे, हमें भी हजारों में मैसेजेस मिलेंगे। वो भी डिजिटल स्टॉकिंग है। यदि कोई बार बार हमें मैसेज कर रहा है, हमारे मना करने के बाद भी मैसेज कर रहा है, वो भी स्टॉकिंग है और वो भी लॉ के परव्यू के अंडर आता है। तो आई फील कि अवेयरनेस सबसे जरूरी है। जब तक व्यक्ति को ये पता नहीं होगा कि उसके साथ जो घटना हुई है वो अपराध की कैटेगरी में है कि नहीं है, तब तक वो पुलिस के पास नहीं आएगा, और जब तक पुलिस को उस चीज की जानकारी नहीं लगेगी, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगी। तो आई फील कि अवेयरनेस ही वो टूल है जिसके जरिए हम अपनी जनता को सबसे ज्यादा सशक्त बना सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनमें युवतियां भी हैं, युवक भी हैं, दोनों ही पक्ष आपको संदेश देना चाहती है इनको महिलाओं की सुरक्षा के विषय में?
2: जो भी श्रोता आज मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को यही बताना चाहूंगी, यही कहना चाहूंगी कि सपने देखने चाहिए हमें, और बहुत बड़े सपने देखने चाहिए। और केवल सपने देखने नहीं हैं, जितने बड़े सपने हैं उनको पूरा करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी है। और ये विश्वास हम आपको दिला रहे हैं, ग्वालियर पुलिस आपको दिला रही है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपको एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए वो ग्वालियर पुलिस आपको देगी। पूरा प्रयासरत है ग्वालियर पुलिस कि आपको एक सुरक्षित वातावरण मिले जिसमें आप मेहनत कर सकें और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें।
1: जी, जाहिर सी बात है आपके संदेश को सुनकर जो हमारे श्रोतागण हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, उनको आलंबन मिल रहा होगा। लेकिन सैड ट्रुथ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, बहुत ज्यादा सिस्टम में उनका विश्वास नहीं है और वो नियमों और कानूनों की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते। तो मुझे लग रहा है कि ये अवसर उनको भी एक संदेश देने का है, अगर आप देना चाहें।
2: देखिए, मदद करना हमारा कर्तव्य है। जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उस व्यक्ति को, उस फरियादी को, उस आवेदिका को, आवेदक को हम संतुष्ट कर कर भेजें। उसके अलावा भी सुओ मोटो कई बारी हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी घटनाएं संज्ञान में आती हैं कि असामाजिक तत्व असामाजिकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं या ऐसी घटनाएं कारित कर रहे हैं जिससे क्षेत्र में उनका भय बना हुआ है। आप लोग भी निश्चिंत रहिए, अभी नहीं तो कल नहीं तो परसों पुलिस आप तक जरूर पहुंचेगी और आपके जो भी कर्म है उनकी जो भी लीगल सजा है वो आपको जरूर मिलेगी।
1: बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, और अब इसी के साथ हम साक्षात्कार को विराम देंगे। आपने इतने संवेदनशील विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सखियों, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता, महिला सुरक्षा चुनौतियां और सावधानियां। एएसपी ग्वालियर विदिता डागर से बात कर रही थी डॉक्टर विभूति सिंह। सखियों, आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत की जो अंग्रेजी में लिखे गए भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक थे, आर के नारायण। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ था, जो अब चेन्नई है। नारायण जी ने अपने जीवन काल में 2000 से ज़्यादा उपन्यास, कहानियाँ व नाटक लिखे। उनकी लेखन शैली ने भारतीय जीवन के सार को बड़ी ही सरलता और गहराई से छुआ था। उनका पहला उपन्यास था स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक ने स्वामीनाथन नामक चरित्र का परिचय कराया, जो मालगुड़ी नामक काल्पनिक कस्बे का एक शरारती और सहज लड़का था। इस उपन्यास के सफलता के बाद उन्होंने कई अन्य रचनाएं लिखी, जिनमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द गाइड और द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी शामिल है, जिस पर धारावाहिक भी बना था और लोगों ने उसे काफी पसंद किया था। उनकी लेखन शैली जो सरलता और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ से परिपूर्ण थी, भारत और विदेश दोनों जगह पाठकों ने उन्हें खूब सराहा। मालगुड़ी डेज, लघु कथाओं का एक संग्रह जो मालगुड़ी में जीवन की सादगी और सुंदरता को दर्शाता है। इसमें प्रेम, विरह और मानवीय संबंधों को भी शामिल किया गया। आर के नारायण जी की प्रत्येक कहानी भारतीय संस्कृति और मानव स्वभाव के अनूठे पहलू को दर्शाती है। नारायण की असाधारण परिस्थितियों में आम लोगों को चित्रित करने की क्षमता ने उनके लेखन को अत्यंत प्रासंगिक बनाया। नारायण जी का भारतीय साहित्य पर प्रभाव अतुलनीय है। उन्हें अंग्रेजी में आधुनिक भारतीय लेखन के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उनकी अंतिम रचना दादी की कहानी 1992 में 80 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई, जो कहानी कहने के प्रति उनके अटूट जुनून को दर्शाती है। अपने अंतिम वर्षों में भी नारायण जी भारतीय साहित्य में एक प्रिय व्यक्तित्व बने रहे। सखियों, आर के नारायण को साहित्यिक प्रतिभा के कारण उन्हें अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1964 में पद्म भूषण, सन 2000 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले। नारायण को रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा 1980 में A.C. बेसन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आर के नारायण जी का निधन 13 मई 2001 को चेन्नई में हुआ। उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

सखियों, गर्मियां आते ही हम आम, तरबूज, खरबूज को खूब मजे से खाते हैं, जो हमारे शरीर में पानी की कमी को तो दूर करते ही हैं, साथ ही ताजगी भी महसूस कराते हैं। पर सखियों, गर्मियों में एक और फल लाभकारी है, वो है बेल। सखियों, इसके गूदे से एक ताजगी भरा स्वादिष्ट पेय तैयार किया जाता है। सखियों, इसमें फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम व विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम से भरपूर होने के कारण बेल का शरबत धमनियों के कार्य को बेहतर बनाता है और हृदय संबंधी कार्यों में सुधार करता है। सखियों, बेल का रस पेट संबंधी समस्याओं के लिए एक बेहतरीन पाचक टॉनिक है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाते हैं। इसका रस भूख को बढ़ाता है, थकान दूर करता है और शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। सखियों, हीट स्ट्रोक में भी ये बहुत फायदा करता है, इसलिए सखियों, हो सके तो बेल का प्रयोग इन गर्मियों में ज़रूर करें, ताकि आप स्वस्थ रहें, ताजगी भरा महसूस करें। इसी के साथ अपनी सखी धम्म मित्रा को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: संगीत आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है जिसमें आप सुनेंगे प्रमोद कुमार जोशी के गाए लोकगीत। पहले चौकड़िया फिर गारी इसके साथ दादरा। तो सुनते हैं प्रमोद कुमार जोशी को।

प्रमोद कुमार जोशी के गाए इस दात्रा गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है और जिसमें आप सुनेंगे स्वाति पाराशर के गाए भजन।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

और कार्यक्रम का अंतिम नगमा प्रेम पुजारी फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, नीरज का गीत और संगीत एसडी वर्मन का।

0: लता मंगेशकर के गाए इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ पर देश के उस अडिग संकल्प को याद किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरी दुनिया ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिखाया कि कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों के दौरान अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। गुजरात और असम की हालिया यात्राओं में यह बदलाव पहली बार देखने को मिला, जबकि एसपीजी की सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले की तरह बरकरार हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों बिना नई खरीद किए जहां संभव हो सके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने की उनकी 7 अपीलों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। साथ ही सभी मंत्रियों और निगम मंडल के अधिकारियों को भी कम से कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर के मुंगवानी गांव में लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में एक साथ 1,835 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल में कल एक दिवसीय इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुई, जिसके बाद फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। कॉन्क्लेव में फ्रांसीसी कंपनियों और प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू समेत कुल 8 लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता के केजीपी 12 के चारों शावकों कल सुबह एक मांद के पास मृत और शत विशत हालत में मिले। महज एक महीने पहले 11 अप्रैल को जन्मे इन शावकों को आखिरी बार 11 मई की शाम जिंदा देखा गया था। शुरुआती जांच में आशंका है कि किसी दूसरे जंगली जानवर ने इन्हें मारा है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। वन विभाग ने बताया कि शावकों की मां पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। कूनो के बाकी सभी चीतों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम जयपुर पहुंची और राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी कई लोगों से पूछताछ की। आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। एमसीएक्स वायदा बाजार में सोना करीब 6% उछलकर करीब 1,62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 6.4% की बढ़त के साथ करीब 2,96,000 रुपये प्रति किलो का कारोबार कर रही है। दरअसल सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसकी वजह से बाजार में यह भारी उछाल आया है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग के 11 जिलों के साथ साथ भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी अगले 4 दिन तक लू चलने की चेतावनी दी है। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि निमाड़ समेत कई जिलों में शाम का मौसम पलटा और तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश में मौसम का यह मिला जुला मिजाज देखने को मिल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर उमंग ऐप पर परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। तो ये था हमारे समाचार इस बुलेटिन के, और अगला बुलेटिन सुनिए शाम को 7:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में NDA की सरकार

0: बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रेजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक

0: बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। पहली फरमाइश है पप्पी लहरी और आशा भोंसले की आवाज में गाया हुआ प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म के इस गीत की। गीत इंदिवर का और संगीत पप्पी लहरी का। इस गीत की फरमाइश भेजी है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, मुस्तफा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक और मीका बिरक। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

घंटाघर चौक खंडवा से ये संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। आप सब ने पसंद किया है प्रेम गीत फिल्म का ये नगमा, आवाज़ जगजीत सिंह की, गीत इंदिवर का और संगीत जगजीत सिंह का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अगली फरमाइश भेजिए बनियापारा धमतरी से, छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बीवी स्वाति माखीजा, छुटकी शरद डुडवानी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लीवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दंतरिंगी से भागवत वर्मा, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश और राजदीप राशेश, साथी राशि राजेश। आप सबने पसंद किया है काश फिल्म का ये गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की, फारूक कैसर के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा राम तेरी गंगा मैली फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। इस गीत को पसंद किया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसार, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरे विश्व ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों के दौरान अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। गुजरात और असम की हालिया यात्राओं में यह बदलाव पहली बार देखने को मिला, जबकि एसपीजी की सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले की तरह बरकरार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। साथ ही सभी मंत्रियों और निगम मंडल के अधिकारियों को भी कम से कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर के मुंगवानी गांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में एक साथ 1,835 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल में कल एक दिवसीय इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुई, जिसके बाद फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। कॉन्क्लेव में फ्रांसीसी कंपनियों और प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू समेत कुल 8 लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम जयपुर पहुंची और राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग के 11 जिलों के साथ साथ भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी अगले 4 दिन तक लू चलने की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर 6:30 और 7:15। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित किया जाएगा। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर आराधना कुमारी से ली गई भेंटवार्ता, विषय है मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक। साथ ही सुनिएगा बुंदेली समाचार और लोक रंग।

सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8 बजे। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 10 बजे सुनिएगा वसीम खान का लिखा नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित गिरिराज का सितार पर बजाया राग रागेश्री। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे प्रमोद कुमार जोशी के गाए लोकगीत।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार युवा साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा युवा प्रोग्राम युवावाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज,
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा, और स्वागत करते हैं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है बुधवार और आज हम लेकर आए हैं आज का स्पेशल सेगमेंट एक ही फिल्म से, और उसके साथ राज हम आज बहुत सारी बातचीत भी करने वाले हैं श्रोताओं से। क्यों?
0: बिल्कुल, क्योंकि आज का जो युवाणी प्रोग्राम होने वाला है वो बिल्कुल खास होने वाला है, और हम हमारे श्रोताओं को आज एक नए मेहमान से मिलवाने वाले हैं जो आज स्टूडियो में मौजूद है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम कुछ खास है क्योंकि आज हम दोनों के साथ एक तीसरे मेहमान भी इस वक्त हमारे स्टूडियो में शामिल है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उत्सव में अंतर्गत यूथ इनिशिएटिव प्रोग्राम के अनुसार देवी हिल्या विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययन शाला में आयोजित तात्कालिक भाषण में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सजल जैन को आज युवाणी कार्यक्रम होस्ट करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों
0: बिल्कुल ठीक श्रद्धा, तो सजल ये बताओ आकाशवाणी इंदौर आकर कैसा लग रहा है?
2: मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, मतलब ये मेरा पहला ऐसा अनुभव है जो मैं एज अ आरजे और एज अ होस्ट यहाँ पर फील करने वाली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आकाशवाणी इंदौर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप पत्रकारिता की छात्रा हैं, वो कई बार मीडिया पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है, वो समझने को मिलता है, और आज तो आप जो मतलब इस क्षेत्र में कई लोग आना चाहते हैं, आवाज़ की दुनिया में पत्रकारिता करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं टेलीविज़न पर और रेडियो पर भी, तो आपको भी उसी फील्ड में जाना है शायद।
2: जी बिल्कुल राज, आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत समय से कोशिश कर रही थी कि मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, और आकाशवाणी के द्वारा मुझे मिला है, मैं बेहद खुशी महसूस कर रही हूं।
0: क्योंकि आकाशवाणी जो ऐसा माध्यम है, आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो आपको बेहतर कुछ करने का एक अवसर जरूर प्रदान करता है। क्यों श्रद्धा?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और हम भी खुश हैं कि आज तुम हमारे साथ हो।
0: बिल्कुल, तो आकाशवाणी का जो 90 वर्ष का सफर है बिल्कुल निरंतर जारी है, तो हम खैर बातें और ढेर सारी करेंगे आज के प्रोग्राम में, पर आज ये जान लेते हैं कि आज के जो हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न होने वाले हैं वो क्या हैं। तो श्रद्धा बताओ।
1: तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे।
0: बिल्कुल, और आज का दूसरा प्रश्न भी बता ही दो।
2: तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि भारत में चीनी मतलब चाय पत्ती का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है।
0: बिल्कुल ठीक, तो हमारी साथी सजल भी साथ बनी रहेगी प्रोग्राम के, तो आइए प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं, सुनते हैं आज का ये पहला गीत।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की। 13 मई 1905 दिल्ली में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचे। नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। उनके पिता कर्नल जन्नूल अली अहमद असम और पूरे उत्तर पूर्व के पहले इंडिजीनियस व्यक्ति थे जिन्होंने MD की डिग्री हासिल की थी।
7: उनकी माता रुकैया सुल्ताना लोहारी रियासत के नवाब के परिवार से थी, यानी शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रतिष्ठा तीनों का संगम उनके परिवार में मौजूद था।
8: बिल्कुल साथियों, फखरुद्दीन अली अहमद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से प्राप्त की। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट कैथरीन कॉलेज में अध्ययन किया।
6: यही वर्ष 1925 में उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई और आज आप जानते हैं कि नेहरू ने यही उनसे कहा था कि भारत लौटिए, देश को आपकी जरूरत है।
8: बिल्कुल ठीक।
7: और ये मुलाकात सिर्फ एक परिचय नहीं थी बल्कि भारतीय राजनीति में उनके प्रवेश का द्वार बन गई। भारत लौटकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की और 1928 में लाहौर में वकालत शुरू की।
8: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे केवल दर्शक नहीं थे, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें लगभग 3.5 वर्ष जेल में बिताने पड़े। आजादी के बाद उनका राजनीतिक सफर लगातार आगे बढ़ता गया।
6: बिल्कुल, वे असम सरकार में लेबर और फिनांस मिनिस्टर रहे, राज्यसभा सदस्य बने और असम विधानसभा से 2 बार चुने गए। लोकसभा में भी पहुंचे और फूड एंड एग्रीकल्चर, कॉरपोरेशन, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली।
7: इस समय इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ने ही उनके प्रेसिडेंट बनने का रास्ता खोला, क्योंकि उन्होंने बिना किसी लाइसेंस के संजय गांधी को कार बनाने की इंडस्ट्री खोलने की अनुमति दे दी थी, ये कहा जाता है। और तब इंदिरा को लगा कि शायद ये उनके वफादार साबित हो, इसीलिए उन्हें ही चुना गया।
8: बिल्कुल, लेकिन उनके जीवन का सबसे चर्चित अध्याय शुरू होता है वर्ष 1974 में। 20 अगस्त 1974 को इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया। वे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने।
6: लेकिन इतिहास उन्हें केवल राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि 1975 के एक निर्णायक रात से जोड़कर याद करता है। 25 जून 1975 देश राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ चुका था और फिर आधी रात को देश में आपातकाल लागू करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति भवन पहुंचा। कहा जाता है राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना लंबी चर्चा के उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। यह वाक्य उस समय राष्ट्रपति पद की सीमाओं और राजनीतिक दबाव का प्रतीक बन गया। 11 फरवरी 1977 राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का हृदयघात से निधन हो गया। वे अपने कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। फखरुद्दीन अली अहमद का जीवन हमें भारतीय लोकतंत्र के उस अध्याय तक ले जाता है जहां संविधान, सत्ता और नैतिक जिम्मेदारी तीनों के बीच संतुलन की परीक्षा हुई। वे एक सफल वकील, स्वतंत्रता सेनानी, मंत्री और राष्ट्रपति थे, लेकिन इतिहास ने उन्हें सबसे अधिक उस निर्णय के लिए याद रखा जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा बदल दी।
7: तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है बुधवार और आज लेकर आया है हम सभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास फिल्म अपने खास सेगमेंट एक ही फिल्म से में।
1: कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें आप सिर्फ देखते नहीं जीते हैं, और 1999 में आई बादशाह बिल्कुल वैसी ही फिल्म थी। एक ऐसी फिल्म जहां जासूसी भी है, गलत फहमियां भी है, पागलपन वाली कॉमेडी भी, और शाहरुख खान का ऐसा स्वैग जिसने पूरी फिल्म को कल्ट बना दिया।
0: और सच बताऊं, उस दौर में लोगों ने ऐसी फिल्म की उम्मीद की ही नहीं थी, क्योंकि अब्बास मस्तान को लोग सीरियस थ्रिलर फिल्मों के लिए जानते थे, लेकिन उन्होंने अचानक ऐसी कॉमिक थ्रिलर बना दी जिसमें हर 10 मिनट बाद या तो आप हंस रहे होते हैं या किसी नए ट्विस्ट पर चौंक रहे होते हैं।
2: बिल्कुल ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिल्म खुद को कभी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि यही वजह है कि अब उस फिल्म को हम आज के दौर में भी देखते हैं तो नई सी ही लगती है हम सभी को।
1: दोस्तों, कहानी शुरू होती है राज उर्फ बादशाह से, एक छोटा सा प्राइवेट डिटेक्टिव जिसके पास बड़े बड़े सपने हैं लेकिन केस बहुत छोटे आते हैं। कोई खोई हुई बिल्ली ढूंढने आ जाता है, कोई पति पत्नी की जासूसी करवाने आता है, और बादशाह हर केस को ऐसे लेता है जैसे वो इंटरनेशनल एजेंट हो।
0: और इसकी एंट्री लंबा सा कोट, स्टाइलिश चश्मा और चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस, मतलब इंसान कम और खुद को फिल्म का हीरो ज्यादा समझता है।
2: मतलब दोस्तों, अंदर से वो उतना ही गड़बड़ है, वो कई बार खुद को अपने ही जाल में फंसा भी लेता है।
1: और फिर एंट्री होती है सीमा की, यानी ट्विंकल खन्ना। शुरुआत में वो सिर्फ एक आम लड़की लगती है जिसे मदद चाहिए, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि मामला बहुत बड़ा है, और यहीं से बादशाह की जिंदगी पूरी तरह उलट जाती है।
2: बिल्कुल, शाहरुख खान की एक्टिंग की सबसे खास बात यह साथियों कि उन्होंने इस किरदार को पूरी ईमानदारी से जिया है। वे जानबूझकर ओवर द टॉप गए क्योंकि फिल्म की दुनिया में वैसी थी, और शायद इसी वजह से उनका हर एक चेहरे का हाव भाव यादगार सा बन जाता है।
1: दोस्तों, अब आपको एक मजेदार BTS फैक्ट सुनाती हूँ। फिल्म में कई कॉमिक सीन में शाहरुख खान ने खुद इम्प्रोवाइज किया था, खासकर छोटे छोटे रिएक्शन और एक्सप्रेशन। अब्बास मस्तान ने कई बार उन्हें फ्रीडम दी कि जो मजेदार लगे, और उसी वजह से कोई सीन इतने नेचुरल लगे कि आज भी हम उस मूवी को फ्रेश फील करते हैं।
2: दोस्तों, जॉनी लीवर वाले सीन तो सेट पर शूट करना ही मुश्किल हो जाता था क्योंकि कलाकार खुद हंसने ही लग जाते थे।
0: खासकर वो सीन जहां सब लोग अलग अलग पहचान में घूम रहे होते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि असली कौन है, पूरा सीन एकदम कियोस बन जाता है।
1: और इसी मजेदार सफर के बीच आता है फिल्म का पहला धमाकेदार गाना, मैं तो हूं पागल।
3: <ये हाँ। laughs>

0: और दोस्तों अब कहानी में बड़ा मोड़ आता है। बादशाह गलती से ऐसे लोगों के बीच पहुंच जाता है जो उसे कोई बड़ा सेक्रेटरी एजेंट समझ लेते हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि बादशाह भी धीरे धीरे उस झूठ को जीने लगता है।
1: मतलब अंदर से डर रहा है लेकिन ऊपर से पूरा जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश जारी रहती है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने राज, और वहीं से फिल्म सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, उसमें थ्रिल आना भी शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल ठीक, मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश, नकली पहचान, पीछा करने वाले लोग और बीच में फंसा हमारा महान जासूस यानी बादशाह।
0: और श्रद्धा अब कहानी पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुकी है। बादशाह को धीरे धीरे ऐसा एहसास हो रहा है कि मामला उसकी सोच से कहीं बड़ा है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसे खुद नहीं पता कि किस पर भरोसा करे।
1: दोस्तों ऊपर से हर जगह गलतफहमियां, पुलिस भी उसके पीछे, विलन भी उसके पीछे, और कई बार तो खुद की टीम भी कंफ्यूज सी हो जाती है।
2: लेकिन फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है होटल वाले सीन से, जहां हर कमरे में कोई ना कोई छिपा होता है। हर इंसान किसी और को ढूंढ रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है।
0: अरे वो सीन तो आज भी बॉलीवुड की सबसे मजेदार कॉमिक कंफ्यूजन सीक्वेंस में गिना जाता है। दरवाजे खुल रहे हैं, लोग छुप रहे हैं, कोई बाथरूम में फंसा है और कोई पर्दे के पीछे, और बीच में है हमारा बेचारा बादशाह
1: और जॉनी लीवर। मतलब उनका हर एंट्री सीन अपने आप में एक कॉमेडी शो था।
2: बिल्कुल, एक BTS फैक्ट दोस्तों ये भी है कि होटल वाले कई सीन्स की शूटिंग के दौरान कलाकारों को बार बार टेक देने पड़े, क्योंकि कोई ना कोई हंस पड़ता था बीच शूटिंग में। खासकर जॉनी लिवर अपने डायलॉग बोलते समय ना खुद नए नए एक्सप्रेशन जोड़ देते थे, जिसकी वजह से सभी को हंसी आ जाती थी।
0: और आज शाहरुख खान की कॉमिक टाइमिंग यहाँ पूरी तरह चमकती है। वो हर सीन में ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि उनके जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है।
1: दोस्तों मुझे वो सीन बेहद ज्यादा अच्छा लगता है जब बादशाह खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है लेकिन सामने वाला उससे भी बड़ा खिलाड़ी निकलता है।
2: फिल्म के डायरेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्मार्ट थी दोस्तों। अब्बास मस्तान ने कॉमेडी को सिर्फ डायलॉग्स तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कैमरा मूवमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिटिंग से भी कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की है,
0: और यही वजह है कि फिल्म आज भी इतनी एनर्जेटिक लगती है। हर सीन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है।
2: और अगर म्यूजिक की बात करें दोस्तों, तो अनु मलिक ने फिल्म को पूरा 90s वाला फील दिया। पार्टी ट्रैक्स, रोमांस, स्टाइल, हर तरफ फ्लेवर था दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों एक और बात खास है कि इनके लोकप्रिय गीतों में वो लड़की जो सबसे अलग है, बादशाह और बादशाह, हम तो दीवाने हुए, ये सभी गीत शामिल है। और इसमें मेन जो गाने गाए हैं वो अभिजीत भट्टाचार्य ने गाए हैं, उन्हीं की आवाज़ ज़्यादातर गानों में है।
0: अब कहानी और गंभीर हो रही है। बादशाह को पता चलता है कि मुख्यमंत्री की हत्या सिर्फ एक राजनीतिक साजिश नहीं बल्कि बहुत बड़ा पावर गेम है।
1: लेकिन पहली बार बादशाह के अंदर डर भी दिखाई देता है क्योंकि अब ये सिर्फ खेल नहीं रहा।
2: और सीमा भी उससे नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि बादशाह हर चीज को हल्के में लेता है।
0: लेकिन यहीं पर किरदार बदलना शुरू होता है। जो इंसान शुरुआत में सिर्फ स्टाइल मारता था अब सच में जिम्मेदारी महसूस करने लगता है, और इसी मोड़ पर फिल्म थोड़ी धीमी होकर हमें रोमांस का खूबसूरत एहसास देती है। तो सुनते हैं फिल्म बादशाह का सबसे रोमांटिक गाना।

0: और दोस्तों अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे बड़े मोड़ पर। असली विलन सामने आने वाला है। मुख्यमंत्री खतरे में है और बादशाह के पास बहुत कम वक्त बचा है।
1: लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस इंसान को शुरुआत में कोई गंभीरता से नहीं लेता था, वो अब सबकी उम्मीद बन चुका है।
2: बिल्कुल ठीक, और यही फिल्म की जान है, क्योंकि बादशाह कोई सुपर हीरो बिल्कुल नहीं है। वो गलतियों करता रहता है, डरता है, फंसता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है।
0: क्लाइमेक्स में फिल्म पूरी स्पीड पकड़ लेती है। पीछा करने वाले सीन्स, कॉमिक कंफ्यूजन, एक्शन, सब कुछ एक साथ चलता है, लेकिन फिल्म फिर भी अपना हल्का फुल्का मजाक नहीं छोड़ती। वो डायलॉग तो आपने समय सुना ही होगा कि कभी कभी दिल जोड़ने के लिए दिल तोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि दिल तोड़कर जोड़ने वाले को पता नहीं क्या कहते हैं।
1: और यही वजह है कि लोग आज भी इसे बार बार देखते हैं, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट बहुत ईमानदार लगता है।
0: अब एक दिलचस्प फैक्ट, रिलीज के समय फिल्म को कुछ लोगों ने बहुत ओवर कहा था, लेकिन धीरे धीरे यही ओवर द टॉप स्टाइल उसकी पहचान बन गया। टीवी पर आने के बाद नई जनरेशन ने इसे दोबारा खोजा और फिर से कल्ट फिल्म बना दिया।
2: बिल्कुल ठीक। और सजल और श्रद्धा, तुमको क्या एक बात पता है, मतलब ये फिल्म जब आई ना, तो सोशल मीडिया के आने के बाद इस फिल्म के कई सारे मीम्स बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं और आज तक कई सारे देखे जाते हैं चैटिंग्स में।
1: बिल्कुल, आज भी इस फिल्म के मीम्स यूज किए जाते हैं। और दोस्तों, फिल्म का फैशन भी उस वक्त बहुत पॉपुलर हुआ। शाहरुख खान का लेदर लुक, गोल्ड चेन, लंबे लंबे कोट, कॉलेज स्टूडेंट्स उसे कॉपी करते थे और अपना आइडल मानने लगे थे।
0: हाँ, ये कोरियन स्टाइल तो अब आया है, हमारे शाहरुख खान तो पहले ही इसे फॉलो कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: खैर, बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म उस समय इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन बाद में इसकी रिवॉच वैल्यू इतनी बड़ी कि लोग इसे 19 की सबसे इंटरटेनिंग फिल्म में गिनने लगे।
2: सच कहूं दोस्तों, तो आज भी पूरा परिवार साथ बैठकर ये फिल्म आराम से देख सकता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, इस फिल्म में शाहरुख खान को अपने परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था।
0: फिल्म की कहानी 1995 की अमेरिकी फिल्म निक ऑफ टाइम पर आधारित है।
2: बिल्कुल ठीक। और दोस्तों, बादशाह का संगीत की बात तो अभी श्रद्धा कर ही रही थी, तो आपको एक बात और हम खास बता देते हैं कि इसके बोल समीर और जावेद अख्तर ने लिखे थे। इस फिल्म में मुख्य रूप से अभिजीत भट्टाचार्य ने अपनी आवाज दी है, जो शाहरुख खान के साथ हिट साबित होती है।
1: फिल्म के सबसे आइकॉनिक हिस्सों में से एक था उसका लगातार चलता हुआ कंफ्यूजन। कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा, हर कोई नकली नाम इस्तेमाल कर रहा है, और उसी गड़बड़ में कॉमेडी पैदा होती है।
0: और अंत में बादशाह असली अपराधियों तक पहुंच ही जाता है। मुख्यमंत्री की जान बच जाती है, सारे राज खुल जाते हैं, और जो आदमी शुरुआत में सिर्फ दिखावा करता था, वही आखिर में सच में हीरो बन जाता है।
2: साथियों, फिर आता है क्लासिक 90s बॉलीवुड एंडिंग, जहां सब कुछ ठीक हो जाता है और माहौल पूरा सेलिब्रेशन वाला बन जाता है।
0: तो श्रद्धा और राज, तो इसी 90s वाली एनर्जी, उसी पागलपन और उसी यादगार स्टाइल के साथ चलिए सुनते हैं फिल्म बादशाह का टाइटल ट्रैक, बादशाह ओ बादशाह।

0: तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जाने का। लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति पर जाने से पहले अब बारी है कार्यक्रम की शुरुआत में जो हमने दो प्रश्न आपसे पूछे थे, उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके साथ साझा करने का। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न था कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे, और उसका जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर।
1: और दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न था, भारत में चाय पत्ती किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादित होती है, तो उसका उत्तर है असम।
2: साथियों, आज के युवाणी कार्यक्रम में हमारी नई साथी हमारे साथ जुड़ी सजल। तो सजल, आप बार बार आते रहे हैं और बिल्कुल इसी फील्ड में लगातार काम करते रहे हैं, और आने वाले टाइम में आकाशवाणी में आप हमारे साथ मौजूद रहें, ऐसी हम कामना करते हैं।
3: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच राज, आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: और सजल, जैसा कि आपने बताया, आपका रेडियो पर पहला प्रोग्राम था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सजल माइक या कैमरा से एकदम अनजान नहीं है, वो बात करती रहती है। सजल एक बहुत अच्छी डिबेटर भी है, और एक ऐसा ही प्रोग्राम जीत कर वो आज यहाँ पर आई है। तो सजल, तुम बताओ कि रेडियो पर बात करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
1: मैं सच में कहना चाहूँगी कि भले हम यहाँ पर आपको देख नहीं पाते, हमारी ऑडियंस से हम मुलाकात नहीं कर पाते, लेकिन जब हम बोलते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच ही शायद बैठे हैं और हम डायरेक्ट उनसे बात करें, तो ये बेहद ही अच्छा अनुभव रहा।
2: बिल्कुल ठीक सजल, मतलब छोटी सी मुलाकात ही पर मुझे लगता है कि यादगार मुलाकात बन गई हम सभी की।
1: जी बिल्कुल, मतलब ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है कि ये शायद मैंने पहले क्यों ट्राई नहीं किया, अगर मैं पहले करती तो शायद मुझे और अच्छा लगता।
0: और सच बताऊं सजल, तो आज का ये कार्यक्रम था, ये तुम्हारे अलावा हम लोगों को भी बहुत खास लगा, क्योंकि आज हम जो सामान्य तौर

0: पर हम दो को-होस्ट होते हैं, दो कंपेयर्स होते हैं जो इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक तीसरा मेहमान था। हमें बहुत मज़ा आया, माइक पर भी माइक के पीछे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि हमारे श्रोता हैं उन्होंने भी तुम्हारी बातें सुनी हैं और उन्हें भी तुम्हारे साथ आज का एक कार्यक्रम पसंद आया होगा।
1: बिल्कुल ठीक। तो साथियों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद है कि आज का युवाणी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। अब दीजिए अनुमति अपने दोस्त राज,
0: श्रद्धा और सजल को।

अभी सुन रहे थे आप युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाज़ में सुन रहे थे अभी आप ये गाना। फिल्म का नाम था बेशरम, इसे लिखा था राजीव ने और ललित पंडित का संगीत था, और आप इसे सुन रहे थे फिल्म संगीत में आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से।

शंकर महादेवन, शान और महालक्ष्मी अय्यर के स्वर में सुन रहे थे अभी आप ही गाना। फिल्म का नाम था कभी अलविदा ना कहना। इस गाने को लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉय ने।

कल हो ना हो इस फिल्म का ये गाना भी सुना आपने, उदित नारायण, सोनू निगम, शंकर महादेवन, साधना सरगम और सुजाता भट्टाचार्य के स्वर में। लिखा था जावेद अख्तर ने, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। और इसी के साथ फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
0: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी,
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी,
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
0: जी,
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
2: जी,
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
2: तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
2: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
3: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
4: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
5: अब तेरी सारी
6: अब तेरी तुम्हारी बात है, तुम सुना, तुम सुना।
5: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
6: तो कहानी सुना दो भाई।
5: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, खड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकड़, खड़े में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
6: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
5: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
6: हाँ चलो चलो, वहाँ पे
5: चलो,
6: पानी
5: चलो,
6: होगा।
5: चलते हैं।
3: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
7: कौन है
6: दीदी?
7: कौन है
6: दीदी?
5: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
6: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
5: हम थोड़ा पानी पी लें?
8: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
6: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
5: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
8: मैं एक मौसम हूँ, मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो, मैं कौन हूँ?
6: कौन है आप?
8: नहीं समझे?
6: नहीं।
8: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: खा जाते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: अब
2: गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू, यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
0: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहाँ दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो,

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो आइसक्रीम।
2: बच्चों मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
4: लाओ अम्मा,
2: लो।
1: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो नहीं। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो। ए! कौन हो तुम? रुको, जाओ वहीं, रुक जाओ, रुको।
4: कौन हो तुम?
5: साहब मैं एक चरवाया हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
4: क्या सूचना?
5: साहब दुश्मनों के बारे में।
4: अच्छा, यहीं रुको, चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
5: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
5: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
5: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
5: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
0: क्या?
5: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
5: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
5: साहब मेरा गांव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काक्सर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
6: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
2: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
6: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
3: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
6: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
2: जी, यस सर।
6: ये मेज के चारों ओर।
2: जी सर।
6: उधर से। हाँ। जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
2: जी सर।
6: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
2: जी सर।
6: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
2: जी सर।
6: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
2: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
6: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
7: यस सर।
6: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
2: जी जी सर।
6: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
2: सर, जी सर।
6: कोई शक?
2: नो सर।
6: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
7: यस सर।
2: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
8: धीमे बोलो, धीमे।
2: जी,
8: उन्हें पता ना चल जाए।
2: जी सर।
8: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
2: जी।
8: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
2: ठीक सर।
8: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
2: जी सर। जी सर।
8: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
2: जी सर।
8: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे।
2: धीरे धीरे।
8: बस अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू कर।
2: रेंगेंगे। जी सर।
8: कोई भी उठकर नहीं चाहेगा, सब रेंगेंगे। पोजीशन ले ले।
7: हाँ सर।
8: एवरीबॉडी रेडी?
7: यस सर।
8: यस सर। अब हाथ गोला फेंको।
6: गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: आकाशवाणी इंदौर से सुन रहे थे आप एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपके लाए हैं सुजाता वैश्मपायन की गाई कुछ रचनाएं। आइए सुनवाते हैं इनका गाया पहला भक्ति गीत। तबला पर संगत दे रहे हैं दीपक व्यास और कीबोर्ड पर साथ है भावेश सोनी।

ये भक्ति गीत अभी सुन रहे थे आप सुजाता वैशंपायन और के स्वर में, और उनके साथ तबला पर संगत दे रहे थे दीपक व्यास, कीबोर्ड पर साथ थे भावेश सोनी। इन्हीं के स्वर में लीजिए सुनिए एक और रचना।

ये भक्ति रचना भी आप सुन रहे थे सुजाता वैशंपायन के स्वर में। आज हम आपको सुन पा रहे हैं सुगम संगीत में सुजाता वैशंपायन की गाई कुछ रचनाएं। तबला पर संगत कर रहे हैं दीपक व्यास और कीबोर्ड पर साथ है भावेश सोनी। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं की गाई एक और रचना।

ये रचना अभी आप सुन रहे थे सुजाता वैशंपायन के स्वर में। तबला पर उनके साथ थे दीपक व्यास और कीबोर्ड पर संगत दे रहे थे भावेश सोनी। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सरला मिश्रा और संगीता पंडित के गाए कुछ लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सरला मिश्रा और संगीता पंडित की गाई कुछ निमाड़ी लोकगीत। अभी सुन रहे थे आप इन्हीं की गाई रचना। लीजिए प्रस्तुत है एक और मालवी लोकगीत इन्हीं के स्वर में।

ये लोकगीत अभी सुन रहे थे आप सरला मिश्रा और संगीता पंडित की आवाज़ में। आज इन्हीं दोनों के स्वर में हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत में कुछ मालवी लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला और अंतिम लोकगीत।

0: ये मालवी लोकगीत अभी सुन रहे थे आप सरला मिश्रा और संगीता पंडित के युगल स्वर में। इन्हीं की आवाज़ में आज हमने आपको सुनवाए लोक संगीत कार्यक्रम के कुछ मालवी लोकगीत, और इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पे ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 14 मई 2026 यानी कि कल सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है घुटनों की बीमारी से बचाव, खान पान, व्यायाम और सही आदतें। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं एवं प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर संजय रावत ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछ सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 14 मई 2026 यानी कि कल समय होगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731 यानी 0731। तो फोन करना ना भूले। गुरुवार दिनांक 14 मई 2026 यानी कि कल समय है सुबह 10:32 से 11:02 तक। विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz या मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुने हमारा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सूचना समाप्त हुई और आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है आज रात और कल 12 बजे तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में यानी शाम 7:20 से सुनिए ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम, जिसमें आज सुनिए रमा टेमले का कविता पाठ, वार्ता सुनिए कुलडई उद्योग के विषय में डिंपल नागर से स्मिता की बातचीत, सीखिए मैंगो कुल्फी बनाना और सौफ के फायदे हमारे घरेलू नुस्खे में। 8:15 से सुना ना भूलिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत कार्यक्रम का समय होगा 9:15। चर्चा का विषय है ये सुनेंगे आप 9:30 से और 10:00 से सुनिए रूपक ढाई अक्षर प्रेम न्याय ज्ञान। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद राशिद खां का ख्याल गायन, राग होगा सरस्वती। 6:00 का प्रातःकालीन आयोजन वंदना आप सुनेंगे कल 6:05 से। चिंतन सुनिए 6:30 पर, आलेख होगा निहारिका श्रीवास्तव का और वाचक स्वर संजीव कुमार मालवीय के। खेती की बातें इस कार्यक्रम में कल 6:35 पर सुने सोयाबीन बोने से पहले खेत की तैयारी, इस विषय पर जानकारी वाचक स्वर होंगे स्मिता दुबे के। श्री रामचरित मानस गान का प्रसंग आप सुनेंगे 6:40 से। ज्ञान दर्शन में कल 7:20 पर सुनिए कबीर आज भी प्रासंगिक है, इस विषय पर डॉक्टर संतोष चौबे की वार्ता। सदाबहार फिल्म संगीत सुनेगा सुनहरे पल कार्यक्रम में 7:35 से और 8:30 समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग का। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:00 सुनेंगे हम पांची लाल कुशवाह और साथियों के गाए कुछ लोकगीत और सुगम संगीत में अनूप चलोडा की गाई कुछ रचनाएं होंगी 9:15 से। 9:30 सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में एकल पखावज वादन विठल राजपुरा का, राग होगा चौताल। जिले की चिट्ठी का समय होगा कल 10:00 और 10:05 से सुनिए फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये थी आज रात और कल 12:00 तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, प्रादेशिक समाचार सुनिएगा बस कुछ ही देर में हमारे भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ में शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का लेख, आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का बड़ा कदम, काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की, मंत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त, 125 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचे 1,835 करोड़ रुपए और किसानों को बड़ी राहत। खरीफ 2026-27 के लिए 14 फसलों का एमएसपी बढ़ा, 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का एक लेख साझा किया है। इस लेख में पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशनों और बेहतर रेलवे नेटवर्क से हो रहे विकास का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बदलाव पंजाब के लोगों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल रहा है और क्षेत्र में अनेक नए अवसर लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों में अपने काफिले का साइज काफी कम कर दिया है और अधिकारियों को बिना नई खरीद के इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाने की उनकी अपील पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। डॉ यादव ने सभी मंत्रियों व अधिकारियों को भी कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।
1: प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व में जैसे हालात बने हैं ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए, इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है। मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि आपकी गाड़ी घोड़ा कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई के बीच यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। नॉर्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 43 साल में किसी भारतीय पीएम की पहली नॉर्वे यात्रा होगी। इस पूरे दौरे में व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा सहयोग पर अहम बातचीत होगी। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इस सीजन में किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीज को लेकर हुई है। सरकार इस सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल खरीदेगी।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मीट्रिक टन LMT।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सीबीएसई ने आज 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में 85.20% विद्यार्थी पास हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 3.19% कम है। प्रदेश के भोपाल रीजन का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 5.77% कम रहा और यहां केवल 79.43% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो सके। तिरुवनंतपुरम में रीजन 95.62% के साथ देश में सबसे आगे रहा। विद्यार्थी सीबीएसई की वेबसाइट डिजी लॉकर या उमंग ऐप के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी की। डॉक्टर यादव ने प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में अब तक कुल 55,926 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से जमा की जा चुकी है।
1: 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया। आज 34,00,000 महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा, ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर पशुपालन करते हुए जो भी पशु पाल सकते हैं आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो, सरकार आपके साथ खड़ी है।
0: महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बिब्वेवाड़ी इलाके में गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कल रद्द कर दिया गया था। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय छात्रों को मार्कशीट और डिग्री डिजीलॉकर में अपलोड करें, साथ ही हर छात्र को स्वयं पोर्टल पर रजिस्टर कराया जाए। इससे देश के बेहतरीन शिक्षकों से ऑनलाइन पढ़ाई का मौका मिलेगा। मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि 31 मई तक छात्रावासों में किचन नहीं बने तो सीधी कार्रवाई होगी। 15 मई से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना शुरू होगी, जिसमें 4,000 ओबीसी युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी। दिल्ली में पढ़ रहे ओबीसी छात्रों को 10,000 रूपये महीना सहायता योजना का भी व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिये गये। सरकारी काम में नवाचार और बेहतर जनसेवा के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 के आवेदन मांगे हैं। ये पुरस्कार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे और हर पुरस्कार में 1,00,000 रूपये की राशि मिलेगी। 15 जुलाई 2026 तक awards.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 14 मई को ग्वालियर के विभिन्न इलाकों में संपर्क अभियान 2026 के तहत विशेष शिविर लगाएगी। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अशोकनगर में जिला आपदा प्रबंधन द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर व कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को विभिन्न आपदाओं के संबंध में बताया गया। शाजापुर जिले में नेशनल हाईवे 52 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात थाना प्रभारी और एनएचआई अधिकारियों ने पनवाड़ी ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। अपराधों की जांच को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खंडवा पुलिस द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। झाबुआ में जनगणना कार्य को सुचारू और असरदार बनाने तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज कलेक्टर ने जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहडोल जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत खेत, तालाब, बोरी, बंधान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य किए जा रहे हैं। सीहोर जिले में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत 0 से 1 वर्ष के 567 बच्चों का टीकाकरण हुआ। आगरमालवा पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 552G सहित जिले के विभिन्न ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में 18 उपार्जन केन्द्रों पर अब तक 4,537 किसानों से 23,727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। नीमच में कलेक्टर कार्यालय परिसर में कल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। देवास जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी और 23 जून को वापस लौटेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का लेख, आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कदम, काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की, मंत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त, 125 करोड़ बहनों के खातों में पहुंचे 1,835 करोड़ रूपये और किसानों को बड़ी राहत। खरीफ 2026-27 के लिए 14 फसलों का एमएसपी बढ़ा, 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
4: साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

0: ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली सगली बेन नाक साथ सगला भाई नाक भी प्रियंका की राम राम। भाई बेन्ना, आज हम एक ऐसा विषय पर चर्चा करांगा जिन्हें ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। वो विषय है स्वयं सहायता समूह। भाई बेन्ना, घर की लक्ष्मी जब खुद का पैर पर खड़ी हो तो घर का साथ पूरो गांव भी तरक्की करे। अकेले चलनो मुश्किल हो सकतो है, पर जब एक समूह अगर साथ में चले तो पहाड़ जैसी समस्या ना को भी समाधान मिली जाए। यो एक असो जादुई मंत्र है जिन्हें गांव की साधारण भाई बिन्ना कर रोजगार से जोड़ीन आत्मनिर्भर बने दियो है। संगठन में शक्ति है, या कहावत स्वयं सहायता समूह पर पूरी तरह से सटीक बैठ। स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाला जो एक छोटो स्वैच्छिक समूह है, जिसमें कि आमतौर पर 10 से 20 सदस्य रहे, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जो भाई बहना रही इन्हा भी शामिल रही। इन्हा समूह का मुख्य उद्देश्य है कि भाई आपसी सहयोग का माध्यम से बचत करना और साथ ही जो समूह का सदस्य ना है उनका आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना। भाई बहना, आज इन्हा समूह का माध्यम से कई ऐसा कुटीर उद्योग ना फली फूली रहा है, जिकमा की महिला ना सामूहिक रूप से अचार पापड़ मसाला उद्योग सिलाई कढ़ाई मशरूम उत्पादन और पशुपालन जैसा कार्य भी करी रही है। इससे गांव ना से जो शहर और रोजगार का ले जो पलायन हुई रो थो भाई बहना जई रहा था वो अब कम हुई गयो है। नहीं तो पहला काम का चक्कर में कि भाई शहर में ज़्यादा अच्छो काम मिली जाएगा या अपना ज़्यादा पैसा कमे लांगा उना चक्कर में भाई बेड़ना गांव ना से शहर की ओर जा रहा था। पर अभी स्वयं सहायता समूह का चलता बेड़ना अपना गांव में ही रीन काम कर ही रही है और साथ ही अपना जो अगर गांव की खेती बाड़ी है उनका भी संभाल ही रही है। और इससे एक लाभ यो भी है कि भाई जो स्थानीय स्तर पर रोजगार को अवसर भी मिल ही रो है। भाई बहना, रोजगार का अलावा जब समूह को कोई भी सदस्य का ऋण की आवश्यकता रहे तो बहुत कम ब्याज पर समूह अपनी जमा राशि में सही ऋण दी दे। जब समूह 6 महीना तक अगर अच्छो काम करी रहे, एक जसो बढ़िया काम करी रहे, तो बैंक भी उना समूह का एक छोटा व्यवसाय का लिए लोन दी दे। बहना, एक सफल स्वयं सहायता समूह जो है हमेशा 5 नियम ना कर मानी चले, या यूं कहा कि उनको पालन कर। विनियम है, एक तो सबसे पहलो जरूरी चीज है नियमित बैठक, साथ नियमित बचत। उकमा अगर तुम एक नियम बने लोगा कि हाँ अपना हर जो महीना में इतनी बचत करनी है तो का नियम से अपना पालन करना है। नियमित लेन देन, सही हिसाब किताब और समय पर ऋण की वापसी, ये सब जो नियम अगर अपन तब निभोगा तो जो तुम्हारा समूह है बहुत ही अच्छी तरह से काम भी करेगा और तुम्हारा आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाएगा। इको फायदो यो भी है कि भाई बहना में जो आत्मविश्वास और नेतृत्व करने की क्षमता है वह भी बढ़ी रही है। ज़्यादा ब्याज से राहत मिली रही है और साथ ही सरकारी योजना ना को लाभ भी बड़ी आसानी से मिली रही है। तब बहना, अपनी आज की इन्हीं चर्चा को संदेश योज है कि भाई संगठन में शक्ति है और बचत में तरक्की है। अगर तुम भी तुम्हारा गांव में बदलाव लाना चाहो तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ीन या समूह बनेन तरक्की की राह पर चलीन अपना सपना ना पूरा करी सकती हो। बात अपन कार्यक्रम में और भी करांगा। अब सुना अपन एक कविता पाठ जो कि साहित्यकार रमा टेमले इंदौर से अपना सामने विभिन्न प्रकार की कविता ना हमारा सामने सुनाएगी, तो सुना अपन उनको यो कविता पाठ।
1: मैं इंदौर से रमा टेमले महिला सशक्तिकरण पे एक रचना सुनाना चाह रही हूँ। नारी सशक्तिकरण से मुझे मिला हौसला, शिक्षाविद होकर मैंने पाया अपना अस्तित्व, मैं आज सशक्त नारी हूँ, मुझे मिला खुला आसमां, मैंने सीख लिया है अपने पंखों से उड़ान भरना भी, मैं शिक्षित होकर आर्थिक रूप से सशक्त हूँ, मैं अपने परिवार की धुरी बन चुकी हूँ, मैं आज सामाजिक राजनीतिक समान अधिकार पा चुकी हूँ, मैं अबला नहीं सबला हूँ, अब मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं, मैं गगन से उड़कर किरण वेदी बनूंगी, मैं अंतरिक्ष में उड़कर जूही चावला बनूंगी, मैं पर्वत शिखर पर तिरंगा लहराने वाली अरुणिमा सिन्हा बनूंगी, मैं अंतरिक्ष में 608 दिन बिताने वाली सुनीता विलियम बनूंगी, मैं सशक्त नारी हूँ, मैं द्रौपदी नहीं कि कोई कृष्ण मेरी अस्मिता बचाए बचाने आएंगे, मैं आज सशक्त सशक्त नारी हूँ, मैं आज सशक्त नारी हूँ। मेरी दूसरी रचना है, छंदयुक्त रचना है, चांद और चंद्रिका की बात है और इसी पे मेरी एक अच्छी सी रचना है। व्योम

सुशोभित। आज है रात रानी, प्रभंजन से सुवास है, चांद पर चंद्र फिर मुस्कुराने लगा, चंद्रिका से मिलन गीत गाने लगा। रात रानी प्रभंजन से सुवास है, वृक्ष लता पुष्प पुलकित संसार है, कायनात समरी नवेली नार है, सोया सपनों की नगरी में संसार है, आशा अमृतमयी मिलन ही सार है, परिवर्तन में जीवन में संचार है, व्यो

राग है, चंद मन भावन माधुर्य से राज है, चंद्र के ही समाया उल्लास है, चंद्रिका से मिलन की लगी आस है, दूधिया ओरणी से तारे खास है, चंद्र जीवन में आया मधुमास है।

लगा। अब मेरी अगली रचना है ग्रीष्म ऋतु पर। ये इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है उसी पे मैंने, और जो पर्यावरण को मानव ने छेड़ा है और ये पानी की जो कमी है, अपन नाले नदियों को नहीं संवार रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, उसी पे से मैंने ये पर्यावरण पे एक रचना लिखी है, पेश करती हूँ। रश्मि भी अचंभित है सूर्य से बेचैन होकर, रश्मियाँ भी अचंभित है सूर्य से बेचैन होकर, धरा सूर्य की अतिश युक्ति से रूप खोकर। आसमां से गगन वर्षा धरती कुमलाई, आसमां से गगन वर्षा धरती कुमलाई, निशब्द रहकर सूर्य कहर सहती आई। जीवन सूर्य तेज से प्रवाहित जग सारा, धरती तपती सूर्य तपन पग पग झुलसा जग सारा। सूर्य ताप क्यों है बढ़ता धरती पर, मानव को समझाए कौन, पर्यावरण परिवर्तन से मानव अब क्यों है मौन। वृक्ष कटे पर्वत श्रृंखलाएं दोहन मानव ने किया, धरा के श्रृंगार पर प्रहार तुमने किया। अब अगन में झुलसे भूमि पशु पक्षी जीव तड़पते हैं, वृक्ष की छाया नीड़ बनाने जीव जंतु तरसते हैं। नदी नाले ताल तलैया जल के स्रोत सूख रहे, पंछी जीव जंतु अब प्यासे जल बूंद ढूंढ रहे। जीव प्रजाति विलुप्त है धरती पर संकट गहराया, आसमा गगन उगले प्राणों पर आसमा अगन उगले प्राणों पर संकट मंडराया। सूर्य क्यों क्रुद्ध है धरा क्यों कुमलाई है, मानव की मनमानी से प्राण संकट पर बन आई है। अब परिवर्तनों से त्रुटियां सुधार हो, हम सभी संकल्प लें तभी सब्ज बहार हो। आगे का बंद है मेरा, सभी पर्यावरण सहेजे सरसब्ज फिर लहराएंगे, पंछी और गोरैया का नीड़ हम बनाएंगे। प्रण करें पंछी को दाना पानी सकोरे सब लगाएंगे, नदियां जल स्रोत की स्वच्छता में हम श्रम हाथ बढ़ाएंगे। जल संग्रह कर प्रकृति जल दोहन से बचाएंगे, जीव पशु पक्षी प्रजाति को हम बढ़ाएंगे। अगली रचना है मेरी एक मलय पवन, ठंडी सी बयार पे मैंने अपने भाव प्रकट किए हैं, तो वो एक गीत ही समझ लीजिए, गीत है एक मलय पवन पे। एक छुअन से महक रहा हूँ, क्या तुम सचमुच मलय पवन हो, क्या तुम वासंती बहार हो या फिर तुम खिली कचनार हो, महका सा सुवास नेड़ हो या फिर तुम मेरी तकदीर हो। सुगंध से भरी सुगंधा हो, झूमती डाल प्रसून की हो क्या तुम पवन गंध वारी हो, एक छुअन से महक रहा हूं क्या तुम सचमुच मलय पवन हो। अचंभित हूँ विस्मित हूँ मैं, आप मुझे अति प्रिय लगती है, जैसे लता वृक्ष और मैं, तुमसे जो सृष्टि सजती है, तुम मेरी कल्पना हो या मलय सुगंध महक समीर हो, तुम हो तो मैं मुस्काता, तुम बहती तो मैं बहता जाता, प्रकृति मुस्काती तुम कोमलता से आकर मुझे छू जाती, एक छुअन से महक रहा हूं क्या तुम सचमुच मलय पवन हो। जलती ज्वाला मेरे दिल में तब तुम ठंडी सी समीर हो, शांत हृदय हो जाता तब तुम छूकर जाती सुगत मीर हो, एहसास हो तुम प्रिय जैसा अपनी लगती मेरी हीर हो, जब मुझसे छल करती हो तुम शरद में शीत लहर सी समीर हो, तन मन सारा भीग सा जाता फिर भी तुम मेरी प्रिय हो, एक छुअन से महक रहा हूँ क्या तुम सचमुच मलय पवन हो, एक छुअन से महक सजाता क्या तुम सचमुच मलय पवन हो। अगली रचना है मेरी सृष्टिकर्ता, जो मानव ने सृष्टि के साथ में छेड़ की है, तो सागर तक उससे नाराज है, प्रकृति की छेड़ है मानव की गलती है। तो इसी पे मेरा एक गीत समझिए, रचना समझिए। समग्र सृष्टि का पालनहार,
मानव को दे सुंदर उपहार, ये प्रकृति है ना, ये धरती मानव को दे सुंदर उपहार, सृष्टि कर्ता की परिकल्पना, अद्भुत धरा नवधुति निर्माण मनु की कल्पना से परे, अंतहीन प्रथ का ओर छोर, दिनकर से अवनी प्रकाशवान, क्षिति मनमोहिनी उर्वरक है, भूगर्भ अनंत भूलोक संपदा, नीर नद जल संरचना, चंचल कलकल अविरल जल, जागृत अनंत जैव विविधता, मलयाचल समीर हिम शिखर, क्षीर सागर अथाह जल राशि, अर्णव अतल को करे न आघात मनुष्य, रसातल पर अनुसंधान किया, अंतर्व्यूहों को भरमाया, उत्तंग तरंगों की गतियां शोध से अक्षम मानो। अर्पण की नारायण ने जो मनु को उर्वी है शाश्वत जीवन का, यह सत्य है, भूलोक बसी असीम ऊर्जा, प्रवल क्षीर सागर वड़वाग्नि ऋषिकेश निद्रा भंग हुई इससे, शिव करे जब तांडव प्रचंड है विशाल रंगमंच ईश का, सृष्टिकर्ता संचालन ईश है। मैं एक रचना, ये राम मंदिर पे है और मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, राम के आगमन की है और लीजिए, गीत है राम पर और राम मंदिर बना है उसी पर। राम के आगमन से जुड़ी जान है, अवध के राज का आग

का आ गया मान है, राम का धाम जो दुल्हनों सा सजा, हिंद के धर्म की केसरी है ध्वजा, है सजी मंजिले दीप मालिका, दीप्त है गर्भगृह राजसी अट्टालिका, भारतीय सभ्यता विश्व की शान है।

भावना, राम है चेतना, आत्मबल आप है, राम से सांस में भक्ति का माप है।

राज है, धन्य है माँ भारती, राम का राज है, मंगलाचर हो बजरे साज है, राम जय घोषित,

0: इतिहास है अवध के राज का आ गया मान है।
1: भाई वरना अभी अपन ना कविता पाठ सुनियो। कवियत्री थ्री रमा टेमले, साहित्यकार इंदौर से। भाई वरना हमारा देश में एक बहुत ही खास परंपरा है कि भाई जब भी अपन कोई काम करा, चाहे गांव का भाई बहन हो या फिर शहर का, कोई भी काम के अगर अपन शुभ शुरुआत करना चाहें तो सबसे पहला हम उना देवता का याद करा, जो है विघ्नहर्ता, जो है सुख का दाता और बुद्धि का देवता। बिल्कुल सही पहचानो तुमने, भी है हमारा गणपति गजानन। तो अपन भी उनका याद करा और सुनायो प्यारो सो लोकगीत जी का गायो है भाई रामचंद्र गंगोलिया और साथी नाना।

0: भाई बिरना अभी अपन रामचंद्र गंगोलिया और साथीना को गायो, यो प्यारी सी अपन ने गणेश वंदना सुनी। और अब कार्यक्रम में अपन सुना वार्ता जी को विषय है किसान अपना स्तर पर बीजो उत्पादन कैसे करें। अब बीजो उत्पादन की बात है तो जो अब सोयाबीन को टेम आने वालों है तो उका बारे में अपना विस्तार से जानकारी दे रिया है डॉक्टर पूनम कुचलन, जो कि है कृषि वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। तो सुनाया वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मेरा नाम पूनम कुचलन है। मैं राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ और मेरे अनुसंधान का विषय बीज प्रौद्योगिकी है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की उन्नत खेती और किसान अपने ही खेत में अच्छी गुणवत्ता वाला बीज कैसे तैयार करें। साथियों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में सोयाबीन प्रमुख फसल है, लेकिन हर साल किसान भाई बहनों को बीमारियों, कीटों, अधिक वर्षा और सूखे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि किसान वैज्ञानिक तरीके अपनाए तो वे अपने खेत में ही उत्तम बीज तैयार कर सकते हैं और अगले सीजन में बीज खरीदने का खर्च भी बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सोयाबीन बीज उत्पादन की पूरी जानकारी। किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत में बीज का उत्पादन करना चाहते हैं तो सबसे पहले खेत का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत के लिए अगले वर्ष का सोयाबीन का बीज स्वयं तैयार करना चाहते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, आप पूरा खेत बीज उत्पादन के लिए उपयोग ना करें। हमेशा अपने खेत का लगभग 10वां हिस्सा यानी 1/10 भाग बीज उत्पादन के लिए अलग से रखें और यह हिस्सा खेत का सबसे अच्छा समतल, उपजाऊ और रोग मुक्त भाग होना चाहिए। मान लीजिए किसी किसान के पास कुल 1 हेक्टेयर जमीन है तो उस 1 हेक्टेयर जमीन से वह 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र लेकर उस एरिया में ही केवल बीज का उत्पादन करे। सामान्यतः 1000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में जितने भी पौधे होंगे उससे आपको 2

0: से 3 क्विंटल बीज सोयाबीन का मिल जाएगा, और यह 1 हेक्टेयर के लगाने के लिए आपको सामान्यतः 65 से 70 केजी का बीज चाहिए होता है, जो कि आपको काफी मात्रा में आपको बीज मिल जाएगा, अच्छा बीज। बीज उत्पादन के लिए ऐसा खेत चुनें जहां पानी का भराव ना होता हो, मिट्टी उपजाऊ और भुरभुरी हो, खरपतवार थोड़े कम आते हो और पिछले साल रोग या कीट का प्रकोप कम रहा हो। खेत की तैयारी करने के लिए आपको हर 3 साल में एक बार गहरी जुताई करना चाहिए और इसके बाद क्रॉस हैरो या पाटा चलाएं। खेत में 5 से 10 टन गोबर की खाद डाले प्रति हेक्टेयर की दर पर, और उन्नत किस्मों का चयन करें। बीज उत्पादन के लिए प्रमाणित और रोग रोधी किस्में ही चुने। मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए सामान्यतः NRC 150, JS 2212, JS 2172, JS 2303 आदि बहुत अच्छी किस्में हैं और ये कम दिनों के पकने वाली है। JS 2172 जो है वो थोड़ी सी 100 दिनों से ज्यादा के दिनों में पकती है, पर उसका उत्पादन बहुत ही अच्छा है। बीज उत्पादन के लिए आपको जब बुआई करते हैं उससे पहले अंकुरण का परीक्षण भी जरूर कर लेना चाहिए। इसके लिए आप किसी खेत में या बालू, एक ट्रे में बालू लेकर के भी उसमें 400 दाने का बुआई कर दें और उसमें 50% पानी डाल दें। उसमें 400 बीजों में यदि आपको 280 पौधा भी उग आया है अच्छे से, तो आपके जर्मिनेशन अंकुरण जो है वो 70% हो गया। तो वैसा बीज को हम अच्छा बीज मानेंगे, वैसे ही बीज को आप अपनी खेत पे लगाएं। बुआई का सही समय ये होता है कि जब मानसून आ गया, 100 मिलीमीटर वर्षा हो गई, तभी आप बुआई करें। और कतार से कतार दूरी आप जो कम अवधि वाली किस्में हैं उसके लिए 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और जो मध्यम अवधि और देर से पकने वाली है उसके लिए 45 सेंटीमीटर रखें, तो आपको पौध की संख्या भी अच्छी मिलेगी और आपको उपज भी अच्छी मिलेगी। बीज उत्पादन के लिए आप रिज फरो या रेज बेड या BBF की पद्धति अपनाएं, यह बहुत ही लाभकारी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं अगली बात बताने वाली हूँ वह बीज उपचार है। किसान भाइयों, बिना बीज उपचार के बीज उत्पादन कभी भी सफल नहीं हो सकता, और बीज को बोने से पहले फफूंदनाशी, कीटनाशी और जैव टीकाकरण बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आप आजकल बाजार में बहुत सारे दवाइयाँ आने लगी है, जैसे एजोस्ट्रोबिन और थायफिनेट मिथाइल और थायमिडेक्सन का एक कम्बिनेशन की जो दवाई आती है जो 10 मिली लीटर प्रति ग्राम लगती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप बीज का टीकाकरण ब्रैडी राइजोबियम जैपोनिकम और PSP कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलो की दर से मिलाएं, जिससे जड़ों में गांठें बनती हैं अच्छी और नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ता है, जिससे आपकी उपज अच्छी होती है। और जो हमारा रिकमेंडेड जो अनुशंसित डोज है जो अपना खेत में खाद लगाने का, वो है 25 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर। इसके साथ ही जिंक और आयरन सल्फेट का भी उपयोग लाभकारी होता है। तो जो हमारी अनुशंसित उर्वरक है वो आप जरूर लगाएं, क्योंकि उसमें आपको उपज अच्छी चाहिए, क्योंकि अगर हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें उपज बहुत अच्छी चाहिए होती है। खरपतवार नियंत्रण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बीज उत्पादन के लिए। बुआई के तुरंत बाद ही प्री इमर्जेंस खरपतवार नाशी का छिड़काव करें, जो डाइक्लोसुलम के नाम से आती है। 26 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करना, इसे लगाना होता है, और ये बुआई के 1 से 3 दिन के अंदर अंकुरण निकलने से पहले ही इसका छिड़काव कर देना चाहिए। खरपतवार के छिड़काव के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे दवा का छिड़काव सुबह या शाम को ही करें, और छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। तेज हवा या बारिश के समय छिड़काव ना करें। रोग और कीट नियंत्रण के लिए भी हमको बहुत ध्यान देना होता है बीज उत्पादन के लिए, क्योंकि सोयाबीन में एंथ्रेक्नोज, पॉड ब्लाइट, चारकोल रॉट, रस्ट और येलो मोजैक वायरस के रोगों का प्रकोप आज के दिनों में बहुत ही आम है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि रोगों से मुक्ति के लिए बीज उपचार करेंगे तो आपको कम से कम 40 दिन तक रोगों का जो विषाणु है वो पौधे को उससे बचा के रखेंगे। इसलिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। और यदि आपको रोग दिखे तो जो अनुशंसित फफूंदनाशी है उसका छिड़काव करें। सूखा और अधिक वर्षा प्रबंधन के लिए यदि खेत में पानी भर जाए तो तुरंत निकासी करें, सूखे की स्थिति में हल्की सिंचाई दें। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि रोगिंग सोयाबीन में बीज उत्पादन के लिए रोगिंग बहुत ही जरूरी है, जो कि खेत से उस पौधों को निकालना जो दूसरे किस्म के हो, या रोगग्रस्त हो, या कमजोर हो, या समय से पहले या बहुत देर से पक रहे हो। रोगिंग 2 बार करना बहुत जरूरी होता है, एक फूल आने के समय जो 30 से 45 दिन के समय में होता है, जिस समय की फूल का रंग यदि बैंगनी है तो सफेद फूल वाले पौधों को निकालना होता है, या सफेद फूल वाले में बैंगनी फूलों को निकालना होता है। दूसरी रोगिंग होती है आपकी 70 से 80 दिन के बाद में, जबकि फली पकने की अवस्था में होती है, उस समय रोए की स्थिति को देख करके और पौधे के पकने की समय को देख करके पौधों को निकालना होता है जो अनवांछित होते हैं। तो बीज उत्पादन के लिए इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कटाई समय पर करें जब 90% फलियां पीली से भूरी या काली हो जाए, और भंडारण इसको ठंडी एवं सूखी और हवादार जगह पे करें। किसान भाइयों और बहनों, यदि आप इन वैज्ञानिक विधियों को अपनाते हैं तो अपने खेत में ही उच्च गुणवत्ता वाला सोयाबीन बीज तैयार कर सकते हैं। इससे उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। इसी संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: भाई बहना, अभी अपन न वार्ता सुनी जिको विषय थो किसान अपना स्तर पर बीजो उत्पादन कस कर, जिका बारा में अपना जानकारी दी रही थी डॉक्टर पूनम कुचलन, प्रधान कृषि वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। बात करना अपन आज घरेलू नुस्खा की। तो भाई बहना, भोजन करने के बाद हम सौंफ और मिश्री को सेवन करा, क्यों? खाली स्वाद का लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये जो छोटा सा दाना है सौंफ का, ये बड़ा ही काम का है। सौंफ न केवल अपनी पाचन क्रिया का दुरुस्त रखे, बल्कि इसमें जो मौजूद विटामिन ए है वो अपनी आँख की रोशनी बढ़ाने का लिए भी बहुत फायदेमंद मान्यो जाए। भाई बिरना, बादाम और मिश्री का साथ सौंफ को सेवन करना से याददाश्त भी बढ़े, साथ अगर तुम एक खाली पेट सौंफ को पानी अगर पियोगा तो उससे खून भी साफ होएगा और साथ तुम्हारा जो चेहरा है ऊपर भी प्राकृतिक चमक आई जाएगी। सौंफ पेट की मांसपेशी ना का लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे जो एसिडिटी या अपच जैसी समस्या ना है उससे तुरंत राहत मिली जाए, और साथ वजन घटाना में भी सौंफ बहुत ही लाभकारक है। तो यो तो थो अपनो घरेलू नुस्खा, और मन करी रियो के कार्यक्रम में अपन एक लोकगीत और सुनीला। तो सुना अपन बेन प्रीति देवले और साथी ना को गायो यो लोकगीत।

भाई बहना, अभी अपन बेन प्रीति देवले और साथी नौक को गायो यो प्यारो सो लोकगीत सुनियो। अब बात करें ना बहना अपन आज घरेलू व्यंजन की। तो आज गर्मी का मौसम, गर्मी को मौसम चली रहे और असम में ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी खानो हर कोई का पसंद रहे और एक घर पर बनानो भी बेहद आसान है। तो इका लिए जो आवश्यक सामग्री है वह है, सबसे पहला तो अपना जो पक्या हुई आम को पल्प निकालना है 1 कप, वो भी में बिना पानी का पिसे हुई। फुल फेट को दूध 1 लीटर, आधा कप चीनी, स्वाद का अनुसार अपन कम ज़्यादा भी करी सकता है। इका अलावा रहेगो में इलायची पाउडर 1/4 चौथाई छोटा चम्मच। अब इका बनाने की विधि है, तो सबसे पहला अपना 1 लीटर दूध का मध्यम आंच पर उबालना है और जब तक कि दूध आधो नहीं हुई जाए, फिर उकमा अपन शक्कर और इलायची पाउडर डाली ना 5 मिनट तक अपन उका और चलाता रहेंगा। अब इकमा कटिया हुई काजू बादाम पिस्ता डाली मिले दांगा और फिर गैस का बंद कर दांगा। इन्हीं पूरी विधि का दौरान दूध का बीच बीच में चलाता रहना ताकि दूध जो है कढ़ाई में नहीं चिपका। इना दूध का पूरी तरह से ठंडो होने का बाद इकमा 1 कप आम को पल्प डाली अच्छी तरह से अपन मिले दांगा और ठंडा दूध में मिलाना है। इन्हीं बात को ध्यान रखना है और बस इना मिश्रण का फिर अपन कुल्फी का सांचा में डालिन 7 से 8 घंटा का लिए फ्रीजर में सेट होने का लिए रखी दांगा। कुल्फी जमने का बाद में जब सांचा का बाहर निकालना है तो थोड़ी सी देर सादा पानी में को डुबइन हथेली का बीच में रगड़िन, फिर धीरे धीरे कुल्फी का अपन बाहर निकाल लांगा और ऊपर से उकमा कटिया हुई पिस्ता से सजेन ठंडी ठंडी कुल्फी को आनंद लांगा। तो इन्हीं तरीके से का बातचीत को भी बखत निकली जा रही है, कार्यक्रम को बखत हुई गयो है। तो अब हूँ हमारी बात का न्याज दो विराम। सब भाई बहना का प्रियंका की राम राम।

अभी सुन रहे थे आप ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में सुनिए सुर्खियों में, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे अपने भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों पर। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शुभमय भट्टाचार्य जी। शुभमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: बड़ी खुशी हूँ।
2: शुभमय, आज के कैबिनेट मीटिंग में जैसा कि हमने देखा, कई ऐसे निर्णय लिए गए और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आगे आने वाले वर्षों में या कहें समय में एक विकसित भारत को बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है फॉर द अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इन्होंने बात की है कि वो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप।

0: और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, स्पेशली वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में भी। तो कैसे आप देखते हैं, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, हमें पता है कि न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि चारों ओर पूरे देश में खास करके, और उड़ान के बारे में भी हम जानते हैं, एयर कनेक्टिविटी के ऊपर काफी बल दिया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको?
1: जैसे आप सही कह रहे थे जी कि ये सिर्फ वेस्टर्न इंडिया नहीं, सेंट्रल इंडिया में आप जैसे जानते होंगे कि रेलवे के लिए नागपुर एक ऐसा जगह है जहां पे भारत के सारे रेल लाइन उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण से आके मिलते हैं, तो सेंट्रल पॉइंट है। इसीलिए अगर हम जिससे कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का आवागमन अगर हम देखें भारत के किसी जगह पे, तो इस क्षेत्र से वो जरूर होके गुजरता है। इसीलिए ये वाला सेक्टर को और ये वाला सेक्शन को कनेक्टिविटी के हिसाब से काफी महत्व दिया गया है और रहा भी है पुराने दिनों में भी और आज के दिन में तो खासकर। तो हम जब कहते हैं कि भारत में सारे प्रोडक्ट्स के मूवमेंट होने चाहिए, इजी मूवमेंट होने चाहिए, तो नागपुर अपने आप में एक चुनिंदा जगह बन जाता है, जिसलिए नागपुर का जो एयरपोर्ट है खासकर कार्गो एयरपोर्ट वो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। आपको पता ही होगा कि ये इंटरनेशनल बोइंग कंपनी ने नागपुर को ही चुना है अपने मेंटेनेंस ऑपरेशंस एशिया में और साउथ एशिया में खासकर चलाने के लिए इसी जगह पे। तो ये एक अपने आप में अपने एक एविएशन हब के रूप से बन गया है और जो आज के कैबिनेट का जो अप्रूवल है उसमें भी इसकी रिकग्निशन है कि एक मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट जो नागपुर में बन चुका है 2009 से ये एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना था और तब से ये चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का और इस एयरपोर्ट का इन सब चीजों को मिलाकर बहुत ही सिग्निफिकेंस है। हालांकि हम पैसेंजर एयरपोर्ट्स की बात करते हैं और लोग जल्दी देखते हैं कि जैसे दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट में मिलियंस ऑफ लोग मूव करते हैं, लेकिन बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो नागपुर एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एयरपोर्ट है।
0: जी शुभ मैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक उत्कृष्ट कह सकते हैं ये उदाहरण है। आइए सुनते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा इस मौके पर।
2: पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीपीपी में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का वो सब काफी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशन है जो कोडी कंप्लायंट रनवे और कई तरह की चीजें।
0: और हम बात करते हैं, अब कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया है आज, न्यूनतम समर्थन मूल्य का 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए विपणन वर्ष 2026-27 को लेकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि हमें पता है कि हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसमें मुख्य तौर पर किसान हमारे रेनी सीजन पर, वर्षा पर कितना ज्यादा वो निर्भर रहते हैं, तो ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और कुछ जो डिसीजन लिए गए हैं इसमें, उसमें सबसे अधिक जो है वो जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है फॉर द सनफ्लावर सीड, जो कि लगभग 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। और उसके अलावा और भी हम देखेंगे कॉटन के लिए और सेसमम के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और 500 रुपए प्रति क्विंटल क्रमशः। तो इसके अलावा और भी कुछ हैं, 14 जैसा कि हमने पहले बात की कि 14 क्रॉप्स हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है, तो कैसे आप इसको देखते हैं और किसानों को कैसे इससे लाभ मिलता हुआ आप देख रहे हैं?
1: खासकर अब ये चीज हम जानते हैं कि इस साल वैसे ही पूरी दुनिया में काफी अफरा तफरी मचा हुआ है और सारे दुनिया में इन्फ्लेशन और डिस्टर्बेंसेस बहुत बड़ी मात्रा में आ गया है। तो वहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर क्षेत्र का जो सिर्फ प्रोडक्शन के हिसाब से ही नहीं साथ में इनकम का भी रचना बहुत मायने रखता है कि क्योंकि हमारे करीब 48% हमारे वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में बने हुए हैं, जिसका काफी ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर में ही रहते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए एक अगर हम देखें कि कितना उनके लिए प्रोडक्टिव रहेगा, उनके लिए कितना इनकम जनरेटिंग रहेगा उनका जो काम काज है, तो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दौर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या देता है कि इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को सरकार ही खरीदेंगी, लेकिन जैसे ज्वार बाजरा रागी मेज अरहर मूंग इन सभी चीजों में बिजनेस पीपल आके ही खरीदते हैं, लेकिन जब रेट एक सरकार की तरफ से तय हो जाता है कि इतने रेट से अगर कम हुआ तो सरकारी एजेंसियां वो चीजों को खरीद लेंगे, तो एक भरोसे का सिक्वेंस बन जाता है फार्मर्स के लिए, उनके लिए कॉन्फिडेंस रहता है कि इतने रेट में हमको मिलेगा। और ये इसका घोषणा होना सही समय पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनको ये प्राइसेस आगे चल के क्या प्राइसेस रहेंगे उस प्राइस का एक अंदाजा बन जाता है, एक क्लैरिटी मिलती है। जैसे आप सनफ्लावर की बात कर रहे थे, साथ में ज्वार की, पैडी वगैरह का तो ऑफकोर्स है क्योंकि पैडी बहुत भारत की विभिन्न जगह पे पैडी का कल्टिवेशन होता है, बाजरा है, लेकिन साथ में जो दाल के जो प्रोडक्शन है, दाल का जो उनका जो रेट्स है, ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है कि उनके ऊपर क्या रेट बनता है, उनको किस रेट में दिया जाता है
0: जी।
1: तो इन सब चीजों का जो रेट का जो राइज है, कितना परसेंटेज किया जा रहा है, उसका कितना बारीकी से करते हैं। खासकर मैं आकाशवाणी के श्रोताओं का आकर्षण करूंगा कि हमारे सारे श्रोता के में खासकर एक बहुत बड़े जो फार्मिंग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इसका अनाउंसमेंट और इसका प्राइस क्या बना बहुत ही मायने रखता है कि कितने परसेंटेज राइज इस साल दिया गया। ये तुलना अगर करें
0: जी जी,
1: तो सरकारी क्षेत्र में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पे कमीशन के अवार्ड से ये इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत बड़े लोगों के पैमाने के ऊपर, लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर, उनके लाइफ के, जैसे कॉटन के प्राइसेस जो है, इन सभी चीजों के प्राइसेस कितना बनेगा, इससे हमारे कृषि क्षेत्र कितने शक्तिशाली रहेंगे, उसमें कितने लोग काम कर पाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, वो सब इनसे जुड़ा हुआ है।
0: जी जी शुभ है। और आइए सुनते हैं मंत्री महोदय ने क्या कहा इस अवसर पर।
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए। और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: तीसरा जो बड़ा फैसला लिया गया आज के कैबिनेट मीटिंग में वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, जिसका कि वित्तीय आउटले अगर हम कहें तो 37,500 करोड़ रुपए है। तो शुभ मैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपने भी अभी चर्चा किया पीछे की, जिस तरह से हम जूझ रहे हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, एनर्जी क्राइसिस खास करके अगर देखें, तो वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर अगर हम इसको देखें तो कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, आइए सुनते हैं कि मंत्री जी ने क्या कहा इस विषय पर।
2: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रॉपरली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे, हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाए। 5,000 रुपीज का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप और पर एंटिटी 12,000 रुपीज का कैप। जहां पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा।
0: तो एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। शुभ, मैं कैसे देखते हैं आप इसको आने वाले समय में, जैसा कि मंत्री जी बात कर रहे थे, ये एक काफी बड़े तौर पर और बड़े पैमाने पर सामने उभर कर आ सकता है एज एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से।
1: मैं सबसे पहले बता दूं कि कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है। कि ये बेसिकली एक कोल से, हालांकि कोल और क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो मोर और लेस वो एक ही चीज से बनता है। कोल गैसिफिकेशन का मतलब है कि इसमें से एक मिक्स्ड गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, व्हाटएवर, इन सबको यूज करने से ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे बेनिफिट मिलता है। तो हम नेचुरल गैस का भी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात की बात

0: कह रही है हम इंपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अफरा तफरी की वजह से गैस नहीं आ पा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और हाइड्रोजन बनाने के लिए हर तरीके में ये बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे ही काम आ सकता है कोल गैस। तो ये कोल गैस जो है इसका टेक्नोलॉजी पता है, इसका टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर करने के लिए हम सोच रहे थे कि करें ना करें। खासकर कुछ महीने पहले तक चल रहा था कि कोल को किस तरीके से काम में लाया जा सकता है, एट ऑल करना चाहिए या नहीं। हालांकि एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोल को अगर यूज करना है और कोल गैस बनाकर, तो वो एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि कोल से जो उत्पन्न होता है जो पोल्यूशन वो काफी हद तक उतर जाता है कोल गैस बनाने से। और जैसे मंत्री जी अभी बता रहे थे कि कोल का हमारे पास चूंकि डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा दिया हुआ है, हमारे पास है देश में, तो हम अगर इसका इस्तेमाल करें तो इससे हम अपने आप को जैसे कहते हैं सेल्फ सफिशियंसी इन एनर्जी में पा सकते हैं। और सेल्फ सफिशियंसी एनर्जी अभी इस दुनिया में ये 21वीं सदी का एक मूल मंत्र बन गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और एनर्जी इस दोनों का मिश्रण देश के लिए एक जैसे कहते हैं एसेंशियल चीज बन गया है। अपने निर्भरता, अपने अपने इकोनॉमी को आगे तेजी से ले जाने के लिए, सब कुछ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें ये जो 37,000 करोड़ का जो कैबिनेट का जो अप्रूवल है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत सारी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट्स में आने के लिए सुविधा होगी। बेसिकली गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं कि आपको हम एक सीड कैपिटल देंगे, एक सपोर्ट देंगे, इसके बेसिस पे आप अपना काम आगे ले जाइए। और अगर हम आगे अगर चले तो दिस गुड बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर।
1: जी जी जी, शुभ है। और एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में आज, गुजरात के अहमदाबाद से ढोलेरा तक एक सेमी हाई स्पीड डबल रेलवे लाइन का एक प्रोजेक्ट भी जिसको मंजूरी दी गई, जिसका कुल लागत मूल्य 20,667 करोड़ रुपए है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, यूनिक भी है, इसलिए कि ये देश का ये पहला ऐसा सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट होगा जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये किया जा रहा है। हम जानते हैं, हम देख भी रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से रेलवे का जाल नेटवर्क जैसा बिछाया जा रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है जो इस मंजूरी मिली है, ये कैसे देखते हैं आप इसको?
0: इसको अगर आप उससे अगर आप लिंक करें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ढोलेरा से आ रहा है, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है। वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपना बेस सेटअप कर रहे हैं। तो ढोलेरा से अहमदाबाद का कनेक्टिविटी हाई स्पीड होना जरूरी था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अहमदाबाद से बॉम्बे तक का बुलेट ट्रेन बन रहा है, तो वो बुलेट ट्रेन से अगर हम मुंबई से अहमदाबाद लोगों का जैसे कनेक्शन रहेगा, साथ में उनको एक इमीडिएट कनेक्शन जरूरत पड़ेगा ढोलेरा तक जाने का, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र की कंपनियां इस रीजन में अपना इन्वेस्टमेंट सेटअप कर रहे हैं। तो ये वाला एक जिसे कहते हैं मिसिंग लिंक या था, जो अभी जिसका पूर्ण किया जाएगा, तो इसका तो बहुत ही इसका कितना महत्व है वो आने वाले दिनों में ही बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा जिस रीजन है इस रीजन में हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बहुत जरूरत है, जिसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है, और इसलिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: शुभ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए हमारे श्रोताओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल के दरवाजे पर फिर किसी ने दस्तक दी, फिर बहारों का मौसम आया है। दिल को भाने वाले नगमे लेकर दिल ने फिर याद किया, प्रोग्राम आया है। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को तृप्ति लटपटे का प्यार भरा नमस्कार। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा।

बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज़ दे लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरे हाथों से लगकर फूल मिट्टी हो रहे हैं, मेरी आँखों से दरिया देखना सहरा लगेगा।

ये एक बात समझने में रात हो गई, मैं उसे जीत गया हूँ कि मात हो गई। मैं अब के साल परिंदों का दिन मनाऊंगा, मेरे करीब के जंगल से बात हो गई। मैं जंगलों की तरफ चल पड़ा हूँ छोड़ के घर, ये क्या कि घर की उदासी भी मेरे साथ हो गई।

रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, सब तेरी ओढ़ने के ही तो तार नजर आते हैं। कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे, आप तो खैर समझदार नजर आते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, करूँ किससे शिकायत उसकी, हर तरफ उसके ही तरफदार नजर आते हैं। एक ही बार नजर पड़ती है उस पर ताबिश, और फिर वो ही लगातार नजर आते हैं।

अब उसका वस्ल महंगा चल रहा है तो बस यादों पर खर्चा चल रहा है। मोहब्बत दो कदम पर थक गई थी मगर ये हिस्र देखो कितना चल रहा है। बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हो, तुम्हारे जहन में आखिर क्या चल रहा है? दिलों को तोड़ने का फन है तुम में, दिलों को तोड़ने का फन है तुम में, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ये ताबिश क्या है बस एक खोटा सिक्का, ये ताबिश क्या है बस एक खोटा सिक्का, मगर ये खोटा सिक्का देखो कितना चल रहा है।

और इसी खूबसूरत नगमे के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। तृप्ति लटपटे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी सुन रहे थे आप कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। श्रोताओं अब एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 14 मई 2026 यानी कि कल सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है घुटनों की बीमारी से बचाव, खान पान, व्यायाम और सही आदतें। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासा और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर संजय रावत ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 14 मई 2026 यानी कि कल समय है सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। इस नंबर के पहले इंदौर का एसटीडी कोड 0731 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फोन करना ना भूले। गुरुवार दिनांक 14 मई 2026 यानी कि कल समय है सुबह 10:32 से 11:02 तक। और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं विविध भारती FM 101.6 MHz पर। सूचना समाप्त हुई। थोड़ी देर में सुनिए समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वर यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ

0: फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टॉक जीरो नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरूआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit,
3: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
3: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
5: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
6: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
1: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी

0: सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95.70 रूपये पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bagged the silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi,

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे अभी आप ये गाना। फिल्म का नाम था सौतन की बेटी, गीत को लिखा था सावन कुमार ने और वैद्यपाल का संगीत था, और इसे आप सुन रहे थे चित्रगीत में। अगला गाना ये आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में, गुलशन बावरा ने लिखा है, आर टी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

ये वादा रहा। इस फिल्म का गाना सुना भी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में। इसे लिखा था गुलशन बावरा ने और आर डी बर्मन का संगीत था।

ये गाना सुन रहे थे आप लता मंगेशकर की आवाज़ में, लव इन टोक्यो फिल्म से हसरत जयपुरी ने लिखा, संगीत दिया शंकर जयकिशन ने, और आपने इसे सुना चित्रगीत कार्यक्रम में। और इसी के साथ चित्रगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही देर में सुनिए चर्चा का विषय है जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: दुनिया की नब्ज पश्चिम एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: सो आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मुज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मुज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरते, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये तीन सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि

0: हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रक्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम जितनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको एसपीआर बोलते हैं वो है लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है
1: जी।
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I'm amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36,000 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि कनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन

0: नई चीज है तो ये होता क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
0: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
2: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हरेक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय ये रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से

0: विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में जहां अभी तक सप्लाई का डिस्ट्रप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफकोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लड़ से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाय चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा।
1: जी
3: तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
4: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
0: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध हैं और लॉन्ग टर्म संबंध हैं, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं। बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
5: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उबरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
6: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है रूपक ढाई अक्षर प्रेम के।
2: नमस्कार, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ये विशेष रूपकात्मक कार्यक्रम ढाई अक्षर।

0: प्रेम अनुभूति का विषय है और अभिव्यक्ति का भी। अनुभूति अपने सर्वोच्च शिखर पर या सर्वाधिक गहराई तक पहुंचकर जिस अनुभव की उपलब्धि करती है, संभवतः वो गूंगे का गुड़ है, किंतु उसके स्वाद की स्वीकृति यदि कुछ कह पाती तो यही कहती, यह पूर्ण है।
1: प्रेमी की प्रेमानुभूति का विषय ये पूर्ण है, अभिव्यक्ति में व्यापक बन जाता है, मानो केंद्रीय अनुभूति बिंदु ही व्यास और फिर वही वृत्त बनकर वृत्ताकार प्रसारित होता जाता है। किंतु हमारा मुख्य विषय मात्रा भेद नहीं, प्रेम है, जिसका मात्रिक रूप जगत, अर्धमात्रिक रूप जीव और अमात्रिक स्वरूप ईश्वर है। भेद भले ही हो, किंतु प्रेम तो भेद नहीं, वेद है।

0: विविध लोक कलाकार, कला प्रेमी और युवाओं की प्रतिभावान टोली जब एकत्रित होती है तो प्रेम मगन होकर गीत के साथ थिरकती दिखाई देती है।
1: पूरा शरीर नाचने लगा,
2: पूरा शरीर नाचने लगा,
1: नाचने

0: जाएगा।
1: प्रेम, दया, समता, उदारता और न्याय वास्तव में इसके मूल में भारतीय समाज का सांस्कृतिक ताना बाना बुना गया और इसमें निहित आनंद को विक्रम बोरलिया ने प्रकट ही कर दिया अपने इस लोक गायन से।

0: तत्संग और तत्संवाद के माध्यम से भी कला प्रेमियों ने प्रेम के मायने बताए। तो दिव्या ने कुछ प्रेम गीत भी सुनाई, उनकी अपनी मनोभावना और बानगी के रूप में उनका गाया ये गीत।
1: मैं ना हमेशा कड़ा पहनती हूँ हाथ में, आज कड़ा निकालती और चूड़ियाँ पहनने का मन हुआ, तो ये भी प्रेम ही है जो आज मेरे मन में था कि वो आवाजें, वो खनकना और सब, तो वो भी प्रेम ही है। तो प्रेम कहाँ, किससे और कब, किस तरह से हम ले लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। चाहे वो मेरी माँ से, मेरा हो, मेरी बेटी से हो या हस्बैंड से हो, प्रेम तो प्रेम है, वो सीमित नहीं है। प्रेम बोलते हैं ढाई अक्षर, ढाई आखर प्रेम के, पर वो ढाई आखर पढ़ लिए तो पंडित हो गए, बस वही प्रेम है। और आज जब यहाँ पर देख रही हूँ सबके आंखों में जो वो प्रेम छलक रहा है, तो वो सब भी प्रेम ही है। और हम जो जुगनू बन के, जो सुरेश भाई बोलते रहते हैं कि हम सब जुगनू हैं और टिमटिमाते हुए तारे बन जाएंगे ब्रह्मांड के, तो वो सब कुछ प्रेम ही है, वो सब प्यार ही और सब इश्क ही है। तो जब मदहोश होकर जब हम होश खो बैठते हैं, उस भाव को एक हम समझ सकते हैं कि हम प्रेमी बन जाते हैं, जो उस आनंद वाले वातावरण में जब हम आ जाते हैं, तो वो प्रेम ही है, इससे बढ़कर तो कुछ नहीं है। तो बस इतना ही है प्रेम।

पूजा राज के साथ दिव्या ने एक युगल गीत सुनाया जिसमें प्रेम की अनुभूति तो हुई ही, ढाई आखर एवं विसर्जन आश्रम का ये संयुक्त आयोजन भी सार्थक सिद्ध हुआ।

0: जैसा कि अभी पहले हमने कहा, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना में प्रेम मूल तत्व के रूप में विद्यमान है। पूजा राज के इस गीत को सुनकर आप भी हमारी हाँ में हाँ मिला देंगी।
1: सखी छाई घटा घने घोर रे, देखो

0: पिया, मोरे पिया को तो दे दो संदेश रे, देखो सावन में नाच रहे मोरे रे, देखो सावन में नाच रहे मोरे रे।
1: कबीर की अवधारणा का सोदाहरण वक्तव्य देते हुए छोटेलाल भारती,
2: प्रेम के बारे में कबीर साहब ने दो पंक्ति में पूरे प्रेम को, जो उसकी प्रेम की प्रागढ़ता है उसको प्रदर्शित किया है। वो पहले तो मैं एक छोटे से शहर से कि प्यार किया एतबार की हद थी, प्यार किया एतबार की हद थी, जान दी मेरे प्यार की हद थी। दूसरा कबीर साहब ने जो प्रेम के बारे में कहा कि कबीरा नदियां प्रेम की जाकी उल्टी धार, कबीरा नदियां प्रेम की जाकी उल्टी धार, जो उभरे सो डूबिया जो डूबे सो पार। ये प्रेम के बारे में और जो सच्चे प्रेम के बारे में इन सब की बात है।

0: जब हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कला प्रेमी है तो सुब्रतो बोस खुद अपनी लिखी गजल को गाकर सिद्ध कर देते हैं।
1: प्रेम के मायने अलग अलग हो गए हैं। जो प्रेम को एक उर्दू में इश्क भी बोलते हैं, तो जो प्यार मोहब्बत में जो मैंने अनुभव लिया आज के जमाने में उस पर लिखा है मैंने।

0: उज्ज्वल स्वामी जी के दीर्घ अनुभव ढाई आखर की कलात्मक अभिव्यक्ति को एक सीख के रूप में हमारे सामने रखते हैं।
1: वास्तव में जो अभी जो दर्द की बात की पार्थ भाई ने, आशकी से दर्द लगता है, डर लगता है। ये जो प्रेम है वो स्त्री पुरुष के प्रेम के संदर्भ में ही हम प्रेम को देखते हैं तो बड़े सीमित कर देते हैं हम प्रेम को। कबीर जब प्रेम की बात करते हैं या जो भी हमारे संत पुरुष प्रेम की बात करते हैं वो तो सीमित अर्थों में नहीं करते हैं। तो ये जो अगर सीमित अर्थ में व्यक्ति विशेष से दिल लगाओगे तो टूटेगा, हमारा भी टूटा है, बहुत बार टूटा है। तो अब बाबा ऐसे ही नहीं बन गए बहुत टूटा, युवावस्था रही दिल। ये दरअसल साइंस जो कहता है, भाई मैं तो साइंस से चलता हूँ, नई रिसर्च ये कहती है ये हार्मोन्स का खेल है मुख्यतः। क्या होता है, हार्मोन्स हैं। तो ये जो प्रेम है वो वस्तुतः प्रेम नहीं है, वो तो एक प्राकृतिक रूप से एक आकर्षण बनाया गया है तो हमको ऐसा महसूस होता है। वो उसी में ये प्रेम और विरह के गीत लिख दिए जाते हैं और हम बड़ा उसमें बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं। प्रेम बेम, कोई प्रेम में हार गया कोई जीत गया ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेम में हार होती नहीं है और प्रेम में कोई आपको ठुकरा भी नहीं सकता है क्योंकि प्रेम में कोई दूसरे की चाह नहीं होती है। इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। प्रेम कोई सीमा नहीं मानता न जानता। प्रेम इट्स ए स्टेट ऑफ योर बीइंग। आप प्रेम की अवस्था में होते हैं। जब क्राइस्ट कहते हैं ना कि प्रेम, तो शत्रु को कह रहे हैं कि इसको क्षमा कर देना, तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये कैसे हो सकता है। हम तो कहते हैं इसको मिटा डालना, खत्म कर देना, विध्वंस कर देना इसका। ये प्रेम की स्थिति है कि हम लोग कहीं ना कहीं जब प्रेम में होते हैं ना तो बेखुदी यानी अपना होश खो दें। जहां कबीर कह रहे हैं प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, खो दिया खुद को, वो अवस्था है। किसी से मांगना, किसी से चाहना, प्रेम क्या, अभी तो याचना कर रहे हैं घुटनों के बल दे के, फूल दे करके कि भाई स्वीकार हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। ये भिक्षु प्रति से प्रेम स्वीकार नहीं होता। मांगना किससे, अरे आप प्रेम से भरे हो तो छलकेगा ही वो। तो आप डरते हैं प्रेम करने से ही डरते हैं। आप किसी से मुस्कुराने भर से डरते हैं तो प्रेम तो दूर की बात है। आप किसी को हक कीजिए, किसी को गले लगाइए, मुस्कुराइए, बच्चे के सर पे हाथ फेर दीजिए। मेरा मतलब यह है कि हम किसी पशु विशेष से नहीं, सभी से प्रेम करें, हर प्राणी से प्रेम करें, पेड़ पौधों से करें। अरे पेड़ों को राखी बांधते हैं हम लोग, भाई बना लेते हैं, गले लगा लो पौधे को, कुत्ते को हाथ लगाओ, जानवरों से प्यार करो। प्रेम एक अवस्था है, अब नफरत कर ही नहीं सकते। बहुत ठोकर खाई लेकिन अब समझ में आता, अब मुझे कोई ठुकरा नहीं सकता, मुझे कोई मेरे भी निवेदन को कोई ठुकरा सकता ही नहीं क्योंकि मुझे किसी से अपेक्षा ही नहीं है, इसलिए मैं प्रेम कर पाता हूँ। आई एम क्वाइट थैंकफुल कि मैं समझ पा रहा हूँ और हमें वहीं आना है।
0: विकास छाजेड़ ने तो आयुर्वेद आधारित वक्तव्य में प्रेम तत्व को खोज लिया उन्हीं की जुबानी।
2: हम समाज व्यवस्था की, मानवता की भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ जैसे देखने को आ रहा है कि हम लोगों का शायद इतना आपस में इतना कोई परिचय नहीं होगा, फिर भी हम बिल्कुल एक विचार को लेकर, एक अपनी जो अभिव्यक्ति है प्रेम की अभिव्यक्ति को ही मैं मानता हूं कि आज सहज रूप से सभी आकर अपने अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मन में बातें आ रही है वो यहाँ बोल पा रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पारस्परिक, यूं कह लें कि जिसमें कोई भी स्वार्थहीन प्रेम यहाँ पर हमारा आपस में प्रकट हो रहा है। और मैं यही विश्वास करता हूं कि जो प्रेम वाकई में स्वार्थहीन है वही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम के लिए कोई स्वार्थ की अपेक्षा नहीं रहती है। और प्रेम हम अपने परिवारजनों से करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं, बहुत लोगों से करते हैं, परंतु प्रेम की अभिव्यक्ति कोई अपेक्षित नहीं रहती कि हम उसकी अभिव्यक्ति करें तो ही वह प्रेम हम इजहार कर पा रहे हैं। प्रेम अपने आप हृदय से, हृदय का एक तरह से ताना बाना जुड़ाव होता है। और ऐसा कहा जाता है क्योंकि आजकल बहुत देखने में आता है कि व्यक्ति आपसे मिलता है तो वो मुस्कुराएगा, यानी कि प्रेम की अभिव्यक्ति तो करेगा परंतु उसकी आंखें उसके साथ तालमेल नहीं खाती है कहीं ना कहीं, तो वो एक विरोधाभास है। और अगर सच्चा प्रेम है तो आपकी आंखें और मुस्कुराहट दोनों का तारतम्य में साथ में रहेगा। और इसी के साथ एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने मन, काया और जो हमारा चित्त है उसका आपस में समावेश नहीं होता है तो आयुर्वेद के अनुसार ये किसी भी रोग का मूल कारण होता है। मतलब जो हम कर रहे हैं उसके बारे में सोच नहीं रहे, मन और आपकी जो शारीरिक प्रवृत्ति है वह अगर उसमें तारतम्य नहीं है तो वही कहीं ना कहीं आपके मतलब रोग का बीजारोपण होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे हम प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, एक प्रकार से तीन प्रकार से हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। एक होता है सबसे पहले मुस्कुराकर, है ना। मुस्कुराने से आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है जो पित्त का रोग रहता है, पित्त क्या होती है, हमारे पेट की गर्मी, वह शांत होती है। ये वर्णित है, इसमें लिखा हुआ है, मुद्रा थेरेपी में भी ऐसा कहा गया है कि कोई रोगी आपके सामने पित्त का हो, यानी कि जिसको गुस्सा आता हो, आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, गुस्सा आ रहा है और उसके सामने मुस्कुराइएगा तो निश्चित रूप से उसका गुस्सा कहीं ना कहीं कम होगा। इसी प्रकार से जो वात का रोग रहता है, जिसमें कहीं ना कहीं दूसरी समस्याएं रहती है जो आपके साइकोसोमेटिक डिजीजेस से भी उससे रिलेटेड है, उसमें भी अगर आपको स्पर्श मिले, स्पर्श भी एक प्रकार से प्रेम की अभिव्यक्ति है, आपने किसी को टच किया तो भी उसके वात रोगों का शमन होता है। और आखिरी क्या होता है, कफ का रोग, सबने सुना होगा कफ का भी रोग होता है, कफ का रोग आलिंगन के द्वारा दूर होता है। तो प्रेम एक हमारी एक मानव जीवन की अपेक्षित जरूरत भी है और उसे हम सहज रूप में प्रकट करें, कोई आवरण नहीं रहे, ऐसा ही मेरा मानना है।
0: कबीर जन समूह की एक ऐसी शख्सियत भी प्रतिनिधित्व कर रही थी जो ढाई अक्षर के इस आयोजन में विविध कला प्रेमी और कलाकारों द्वारा प्रेम की असल पूंजी को बांटने में अग्रणी रहे, और ये हैं सुरेश पटेल।
3: संतों ने, जिसमें खासकर कबीर साहब ने, ये कहा है कि पढ़ पढ़ के पत्थर हुआ, लिख लिख हुआ जो ईंट, कबीरा तुझको प्रेम की आई नए को छीट। उनका तात्पर्य ये था, उस समय काल में भी वो देख रहे थे कि प्रेम, पढ़ पढ़ के लोग बहुत विद्वान हो गए हैं, परंतु उनके दिल में, उनके जो हृदय है वो कठोर है और वो किसी प्रकार की संवेदनशीलता उनमें नहीं है। आज के युग में भी हम जब देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयां हो रही हैं, परंतु संवेदनशीलता गायब होती जा रही है, चाहे वो वनस्पतियों के प्रति हो, पशुओं के प्रति हो, मनुष्यों के प्रति हो, स्त्रियों के प्रति हो। तो हमारा ये बना कि हम ढाई अक्षर प्रेम के मार्फत जब कोई बात किसी कला के मार्फत कही जाती है तो वो ज्यादा संप्रेषित होती है, इसलिए हमने सोचा कि ये बात, जो यदि प्रेम के बारे में बात करना है, न्याय के बारे में बात करना है, ज्ञान के बारे में बात करना है, तो कला के मार्फत इसको कहा जाए। तो विविध कलाओं के द्वारा, कोई चित्रकला से प्रेम को व्यक्त करे, कोई गीत से करे, कोई संगीत से करे, कोई नाटक से करे, ताकि लोगों के अंदर वो चीज संप्रेषित हो। और यहाँ पर ये खुलासा हमने एक स्थान बनाया है, इसमें ज्यादा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ताकि लोग बहुत खुले रूप से अपने दिल की बात कह सके और एक दूसरे से जुड़ सके, क्योंकि हमारा संविधान भी यही कहता है, मनुष्य से मनुष्य को जुड़ने की बात करता है और हमारी पूरी भारतीय संस्कृति की परंपरा ये कहती है कि मनुष्य मनुष्य से जुड़े, इसलिए इसका ये स्वरूप हमने बनाया है।

0: तो ये था स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित विशेष कार्यक्रम, विशेष रूपकात्मक कार्यक्रम ढाई आखिर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे रूपक ढाई अक्षर प्रेम के। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 14 मई 2026 यानी कि कल सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है घुटनों की बीमारी से बचाव, खानपान, व्यायाम और सही आदतें। आप इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासा और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर संजय रावत ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछ सकते हैं। आप ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं और साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। कार्यक्रम को सुनने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं 2710223 और 2710224 पर। इस नंबर के पहले इंदौर का STD कोड यानी 0731 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फोन करना ना भूले। गुरुवार यानी कल दिनांक 14 मई 2026 को समय होगा सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर से आप सुन सकेंगे इस कार्यक्रम को FM 101.6 MHz पर और साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। सूचना समाप्त हुई। श्रोता, रात के 10:30 हुए हैं, ये समय है शास्त्रीय संगीत का। लीजिए प्रस्तुत है उस्ताद राशिद खां का ख्याल गायन, राग है सरस्वती।

अभी सुन रहे थे आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद राशिद खान का ख्याल गायन, राग था सरस्वती। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार सुनिए हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: ओन भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। IPL क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA has approved increase in minimum support prices MSP for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said for grade A paddy the MSP will be 2461 rupees per quintal, for jowar hybrid it will be 4023 rupees per quintal, for bajra the MSP will be 2900 rupees and for tur it will be 8450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi high speed double line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation CBI has arrested five accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The five accused persons in the case, three from Jaipur, one from Gurgaon and one from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of

हेलो।